मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं उठिए जागिए, सुबह की बेला है, सुबह का समय हो रहा है। प्रातःकाल की इस बेला में उस परम पिता परमेश्वर का सबसे पहले आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपको फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन, एक बहुत ही प्यारी सी सुबह दी है, जिसमें ना जाने आज के दिन में कितनी खुशियाँ, कितनी संभावनाएं, कितनी आशाएं और कितनी उपलब्धियां छुपी हुई होंगी। तो ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए, बिछोना अपना त्यागिए, मुंह धोइए और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ और जुड़े रहिए हमारी कार्यक्रमों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर ही उपयोगी होते हैं। फिलहाल कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में आज आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। सुबह की 6 बजने वाले, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों

बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कारेक्काल उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में आज आपके साथ मैं हूं नंदिनी मिश्रा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाचारों के बाद सबसे पहले बात कृषि की, तो आइए सुनते हैं आज की कृषि चर्चा जिसमें शरदकालीन गन्ने के साथ सह फसली खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ल।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां शरदकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं, शरदकालीन गन्ने के साथ सहफसली खेती कैसे करें, इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां किसान भाई शरदकालीन गन्ने के साथ सहफसली खेती करना चाहते हैं, क्या सुझाव हैं?
2: नमस्कार किसान भाइयों, वैसे तो गन्ने की बुआई तीन समय में की जाती है, जो शरद काल में भी और बसंत काल में भी और उसके बाद ग्रीष्म काल में भी गन्ना बोते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो शरद काल में गन्ना बोते हैं उसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है और उसमें चीनी की मात्रा भी सबसे ज्यादा अधिक होती है जो शरद काल के गन्ना, तो इसलिए किसान भाइयों से भी हम लोग भी संस्तुत करते हैं कि शरद काल में अधिक से अधिक गन्ना लगाएं। अब ये बात आती है कि जब शरद काल में गन्ना लगाएं तो वो रबी की फसल का एक नुकसान होता है, तो इसलिए शरद काल की गन्ना जहां भी लगाएं वहां ये जरूरी है कि कोई ना कोई अंतः फसल ली जाए। अब अभी तक हम लोगों ने बहुत काम किया है शरद काल में, और उत्तर प्रदेश में तो शरद काल में काफी क्षेत्रफल बढ़ गया है, लगभग 15% से अधिक क्षेत्रफल इस समय शरद काल में हो गया है। कौन सी फसलें ज्यादा लाभदायक है, जैसे सरसों लगा सकते हैं किसान भाई, तोरिया लगाते हैं, राजमा बहुत अच्छी फसल है जो कि बहुत लाभकारी है, उसके बाद आलू की खेती जो है बहुत अच्छी की जाती है, और मशीन जो है भी ऐसी बना दी गई है कि जिसमें कि आलू और गन्ना दोनों एक साथ हो जाए, तो आलू है, राजमा है, सरसों है, इवन जहां पर शहर के किनारे अगर किसान भाई पास में रहने वाले हैं और चाहते हैं कि हम गेंदा भी लगाएं तो वो भी शरद काल गन्ने में लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से शरद काल के गन्ने में अगर हम अंतः फसली खेती करते हैं तो जो अंतः फसल की है उसकी तो पूरी उपज आती ही है, लेकिन

0: जो किसान भाइयों का लाभ है और इसका बढ़ जाता है, और गन्ने की उपज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। कुछ फसलों में ये पाया गया है कि अगर 10 से 12% गन्ने की उपज कम हुई है, जो दूसरी फसल है उससे इतना लाभ हो गया है कि वो बहुत अच्छा किसान को लाभ मिल जाता है। इसमें लहसुन भी लगाते हैं किसान भाई, वो भी धनिया भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे
1: सब्जियां भी
0: किसान
1: लगा सकते
0: सब्जियां
1: हैं।
0: भी लगाते हैं जिससे गया है। कि खेत का चुनाव में सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर हम पहली जुताई तो मिट्टी पलट हल से करना चाहिए, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, क्योंकि आजकल देखा गया है कि जहां रोटावेटर या अधिकतर किसान करते हैं तो वो 15 सेंटीमीटर के नीचे जो है वो एक हार्ड पैन जो बन जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। तो पहली जुताई जो है मिट्टी पलट हल से जरूर हो, उसके बाद खेत लेवल्ड होना चाहिए, समतल खेत हो जिसमें कि जल निकास की व्यवस्था जरूर हो, पानी कहीं भरता ना हो, मटियार दोमट भी उसमें भाई जो अच्छी रहती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90% से अधिक सिंचित क्षेत्र में ही है तो सिंचाई का प्रबंध तो होगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक मिट्टी पलट हल और समतल करने के बाद 3-4 जुताई के बाद खेत तैयार हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है शरदकालीन गन्ने की बुआई का?
0: शरदकालीन गन्ने की जो इस समय बहुत अच्छा है, इस समय जो है देखिए बरसात खत्म हो गई है और ये पूरा अक्टूबर महीने में बुआई कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तो सबसे सही समय है क्योंकि इसमें कोई भी दूसरी फसल भी ली जाती है, जैसे मान लीजिए चना है, जो मसूर लेना, गन्ने की बुआई के लिए भी सही समय है और जो दूसरी फसल है जो रबी की फसल लेना है उनके लिए भी सही समय 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर बहुत अच्छा समय।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
0: देखा जो लोकप्रिय है जैसे हमारे यहाँ से ही जो संस्थान से COL के जो 16202 अभी पिछले साल नई प्रजाति निकली है किस्म जो है, और उसके पहले COL के 14201, ये शरदकालीन गन्ने के लिए बहुत अच्छी हैं। जो शाहजहांपुर से COS 13235 जो किस्म है वो भी अगेती है, तो ये बहुत अच्छी चल रही है जो किस्में जो कि शरद काल में लगाएंगे तो गन्ने की उपज बहुत अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे शरदकालीन गन्ने के साथ साथ फसली खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94511-88723 9451118723। शरदकालीन गन्ने के साथ मैं तो ये कहूंगा कि अधिक से अधिक क्षेत्र की गन्ने की बुआई करें और जो किसान अपनी स्थिति के हिसाब से देखें कि कहाँ उनको लहसुन है, कहाँ सरसों है, जो है उन फसल का चुनाव करें और अंतः फसल जरूर लगाएं शरद, इससे उन्हें जरूर फायदा होगा।
1: डॉक्टर SK शुक्ला साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शरतकालीन गन्ने के साथ सह फसली खेती, आज इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ल और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ हमारी आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न हुई। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे सुविचार, सकारात्मक विचार लेकर आते हैं जिससे जीवन और बेहतर और उन्नत बनता है। तो ऐसा ही एक सुविचार आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं। विषय है सादगी, स्वर डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का।
1: महापुरुष सादगी में असाधारण कीर्तिमान रचकर महानता पाते हैं। सादगी मात्र वेशभूषा तक सीमित नहीं है, वह एक जीवन साधना है। बड़ा इतिहास बनाने वाले दूसरों को रिझाने में नहीं लगते हैं। दिव्य सादगी आचरण की मर्यादा से हृदय परिवर्तन करती है। सबसे बड़ा स्वर्ग त्याग सादगी में है। यह विद्या और योग्यता बढ़ाती है। भौतिकता अविद्या है तो सादगी हृदय वीणा की शाश्वत चेतना। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता से कम वस्तुओं का उपयोग करना सादगी है। अपव्यय श्रृंगार से बचना और मितव्ययता सादगी है। प्रदर्शन संस्कार समय और धन नष्ट करता है, इससे व्यक्तित्व नहीं चमकता। कृति कृतित्व बनाती है। धरती के देवता वह हैं जो अपने अनुकरणीय आचरण से दूसरों में सादगी की प्रेरणा भरते हैं। धैर्य से प्रतिभा बनी सादगी अभूतपूर्व स्थान पाती है। देने की वृत्ति अभाव में भाव भरती है। हृदय की उदारता के लिए प्रसिद्ध महाकवि माघ की दयनीय आर्थिक स्थिति में एक रात उनके घर आकर एक याचक ने बताया, मेरी कन्या का विवाह है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी ख्यात सुनकर आया हूँ, कुछ सहायता मिल जाने पर काम हो जाएगा। कवि हृदय भर आया, घर में देने को कुछ न था, पास सो रही पत्नी के शरीर पर दृष्टि गई, धीरे धीरे एक कंगन

उतार कर देते हुए बोले, इस समय अधिक के लिए विवश हूँ, जो है स्वीकार कीजिए। मुस्कुराहट के साथ पत्नी ने दूसरा कंगन देकर माघ को पुलकित कर दिया। स्वाध्याय सादगी बढ़ाता है। श्रीकृष्ण ने कहा है, मैं बिना खाए नहाए रह सकता हूँ, पर पुस्तकें पढ़े बिना धन मांगा। महानता धन से नहीं विनय से आती है। जन्मजात गुण सहज आत्मीयता बढ़ाते हैं। सादगी सामाजिक समरसता और सुख शांति का संबल है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की मां ने सादगी के संस्कार दिए, जिससे उन्होंने 50 वर्षों तक कोई फिल्म नहीं देखी। इसका दर्शन करने के लिए अंतःचक्षु की आवश्यकता होती है। सादगी का सौंदर्य ही अलग है। सादगी अपना अस्तित्व खोजती है। माताओं की गोद नाम धन्य करने वाली संतानें संघर्ष में तप कर इतिहास रचती हैं। व्यक्ति के सादगी की जांच उसके कलह के समय व्यवहार से होती है। सौम्यता, निर्मलता और सुंदरता की त्रिवेणी में अवगाहन करने वालों को सादगी अमर करती है। गणित के प्रश्न हल करने के लिए सड़क पर पड़े कागज के टुकड़ों का प्रयोग सादगी में करके रामानुजन ने 4000

की त्रिवेणी में अवगाहन करने वालों को सादगी अमर करती है। गणित के प्रश्न हल करने के लिए सड़क पर पड़े कागज के टुकड़ों का प्रयोग सादगी में करके रामानुजन ने 4000 सूत्र दिया। दिखावे के अच्छे कार्य अपनी दिव्यता खोते हैं, सादगी वेशभूषा के स्थान पर कार्य उपलब्धि को महत्व देती है। सादगी सरस्वती की सेवा करने का अनुराग बढ़ाती है। महापुरुष गरीब लगते हैं होते नहीं, वे जानबूझकर स्वाभाविक गरीबी ओढ़ते हैं, जिससे जनमानस में रहकर मानव संस्कृत के मार्मिक सूत्रों को बोधगम्य बनाकर उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। विद्वता प्राप्ति में विपन्नता एक वरदान सिद्ध होती है। गरीबी मनुष्य को परिश्रमी, पुरुषार्थी और संतोषी बनाती है। घोर असुविधाओं में व्यक्तित्व का विकास करके भेंट में मिली वस्तुएं निराला भूखे नंगे लोगों को बांटते रहे। देने से बढ़ती सादगी नर को नारायण बनाती है। पूर्वजों के तीर्थ यात्रा काल में जन्मी संतान की पहचान जिस स्थान नाम से हुई, वहीं उसके कुल की कृति सादगी में शिलालेख की धरोहर बन गई। कर्मठता एकाग्रता की जननी सादगी अतिथि का उपकार करती है। रविदास की आस्था है, मन चंगा है तो कठौती में गंगा। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का सामान बाहर पहुंचाकर पैसा नकारने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर ही रहे। शिकागो में अपनी वेशभूषा पर चकित एक महिला से विवेकानंद ने बताया, जहां से मैं आया हूं वहां वस्त्र नहीं चरित्र सादगी की कसौटी है। तुम्हारे देश में सभ्य पुरुषों का निर्माण एक दर्जी करता है, जबकि भारत में सभ्य पुरुषों का निर्माण आचार विचार करते हैं। चाणक की कुटिया देखकर यूनानी राजदूत के चौंकने पर चाणक्य ने बताया, जनता की कमाई से बने महलों में रहने पर देशवासियों को कुटिया भी नहीं मिलेगी। शांति निकेतन में आचार्यों का कम वेतन रहा। इतिहास परंपरा सादगी से परिपूर्ण है। महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, महामना जी जैसे महापुरुष सादगी के प्रतीक बने, तो सावित्री जैसी शक्तियों ने जीवंत संदेश दिया। शिखर पर बैठा कौआ कभी गरुण नहीं हो पाता। सादगी के संकल्प से जीवन धन्य हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे सुविचार। आज का विषय था सादगी, स्वर एवं आलेख डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का।

सच्ची भक्ति वो है जिसमें अहंकार नहीं केवल समर्पण होता है, और इसीलिए संसार में सबसे धना धनी वही व्यक्ति होता है जिसके पास दूसरों का दुख बांटने के लिए दयालु हृदय होता है।

जीवन की असल नीति है कि भक्ति में बालक बने, कर्म में युवा बने और ज्ञान में वृद्ध बने। जो व्यक्ति जीवन की इस नीति का पालन करता है, उनका जीवन उतना ही सुव्यवस्थित और है।

जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वो स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर मन शांत है और आत्मा सत्य से जुड़ी है तो ईश्वर की भक्ति में हमें हर संकट से पार मिलने की राह मिल जाती है। भक्ति का मार्ग ही जीवन जीने की सच्ची राह है, जहां त्याग, तपस्या और सच्चा प्रेम हमें असल जीवन का मार्ग दिखाता है और प्रभु के प्रति समर्पण भाव सिखाता है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले, आपके समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें। इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यही संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 317। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं लंका कांड का वो प्रसंग जिसमें लंका के चारों दिशाओं में वानर सेना द्वारा आक्रमण से कोहराम मच जाता है।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की झिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आपने सुना इसका भाग 317। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और रविंद्र साठे और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 6:30 से 7:20 तक।

कृषि कार्यक्रम प्रायोजक एवं श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में आज आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, नमस्कार लखनऊ में अब सुबह के 6:55 का समय होता है संस्कृत समाचारों का। तो आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तर जनसेवां कुर्वता पञ्चविंशति वर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शी नीतिभिः अथ कठिन परिश्रमेण च सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तं विकसित राष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विक स्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञान विनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्सपटले @AIRNewsHindi अथ इंस्टाग्राम माध्यमे AIRNewsAlerts इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: वस्तु सेवाकर परिषदः सप्तपञ्चाशत्तमम् उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवाकर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्धकर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्तमन्त्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तु सेवाकर व्यवस्थायाम् आगामि परिष्काराणां कृते पञ्च सूत्र सम्बद्ध योजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति।

0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितम्बरमासस्य 17 दिनाङ्के गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तं प्रारब्धा सेवासंकल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिननवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवायात्रायाः समापन समारोहं सम्बोधितवान्। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशीपर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 25 वर्षीयं सेवासंकल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है कि स्वास्थ्य से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस विषय से जुड़ी प्राप्त कर ली जाए। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर, और आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस फल की जो बचपन की यादों, देसी स्वाद और ग्रामीण जीवन की मिठास का अनमोल हिस्सा है, खिरनी। ये छोटा सा पीला नाजुक फल गांव की गलियों, स्कूल की छुट्टियों और बरगद पीपल जैसे छायादार पेड़ों के साथ हमारी स्मृतियों में गहराई से जुड़ा है। लेकिन खिरनी केवल स्वाद या यादों तक सीमित नहीं है, इसकी गहराई में छुपे हैं असंख्य स्वास्थ्य लाभ, परंपरा की खुशबू, प्रकृति की सौगात और हमारे समाज में रिश्तों की गर्माहट। खिरनी के पेड़ की मौजूदगी गाँव के जीवन में केवल छाया, फल या हरियाली तक सीमित नहीं रहती, इसका वृक्ष बरसों बरस एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। एक ही समय में बच्चों का खेल मैदान, महिलाओं की बातचीत की जगह और बुजुर्गों का विश्राम स्थल बन जाता है। इन पेड़ों के नीचे बीते समय के अनगिनत किस्से, पर्व त्योहारों की यादें और पारिवारिक संबंधों की जड़ें पनपती हैं। जब गर्मियों की दोपहर में पत्तों की छांव तले खेलते बच्चे या दोपहर की धूप में थके राहगीर इस वृक्ष की शीतलता में सुकून पाते हैं, तब खिरनी प्रकृति के उस प्रेम और संरक्षण की जीवित मिसाल बन जाती है जिसकी कमी आज शहरों में साफ महसूस होती है। खिरनी के फल की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उसका ताजा, सच्चा और प्राकृतिक स्वाद है। ये फल बाजार की भारी भरकम मिठाइयों, चॉकलेट या प्रोसेस्ड स्नैक्स से कोसों दूर है। जब भी खिरनी का मौसम आता है, बच्चे सुबह होते ही पेड़ों के नीचे पहुंच जाते हैं। कोई गिरे हुए फलों को बटोरता है, कोई डंडे या पत्थर से पेड़ को हिलाता है और कोई तो सीधे चढ़कर फलों तक पहुँच जाता है। ये खेल सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि उस प्राकृतिक आनंद का भी हिस्सा है जो आज के बच्चों को शहरी जीवन में बहुत कम मिलता है। माएं इन्हें अच्छे से धोकर बच्चों को खिलाती हैं। ये न केवल भूख मिटाता है बल्कि शरीर को ठंडक और जरूरी पोषण भी देता है। खिरनी का फल पोषक तत्वों का भंडार है, विटामिन ए से लेकर विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर तक, हर तत्व इसमें भरपूर मिलता है। बच्चों के लिए तो ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। जिन बच्चों को बार बार जुकाम, खांसी, कमजोरी या भूख न लगने की समस्या हो, उनके लिए खिरनी का सेवन बहुत फायदेमंद है। इन केवल आता है, मजबूत करता है। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए फल पोषक, हल्का और आसानी से पचने वाला होता है। ये पाचन को दुरुस्त रखता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता और गर्मियों में शरीर को तरोताजा बनाए रखता है। खिरनी का औषधीय उपयोग भी ग्रामीण भारत में पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसके पत्ते, छाल और बीज पारंपरिक चिकित्सा में प्रयोग होते हैं। बुखार, हल्के पेट दर्द, मुंह के छाले या हल्की खांसी में इसकी

0: छाल या पत्तों का काढ़ा लाभकारी माना जाता है। कई गांवों में लोग इसकी जड़ों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाते हैं, जिसका प्रयोग गठिया या जोड़ों के दर्द में किया जाता है। ये छोटी सी चीजें गांवों की महिलाओं और वैद्यों की अपनी देसी फार्मेसी का हिस्सा रही हैं, जिनका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और लोक परंपरा से मिलता रहा है। खिरनी का फल और उसका पेड़ एक खास सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। गाँव की बैठकों, तीज त्योहारों और आपसी मेल मिलाप की जगहों पर खिरनी का पेड़ छाया, ताजगी और मिलन का माध्यम बन जाता है। बच्चे इन्हीं पेड़ों की छाओं में नई दोस्तियां बनाते हैं, बुजुर्ग अपनी यादें साझा करते हैं और महिलाएं घर परिवार की बातें करती हैं। ये वृक्ष हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ जुड़ना, उसका संरक्षण करना और आने वाली पीढ़ियों को देसी स्वाद और परंपरा का परिचय देना कितना जरूरी है। खिरनी के अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो ये पेड़ वातावरण को शुद्ध करता है, मिट्टी के क्षरण को रोकता है और जैव विविधता को बढ़ाता है। इसकी जड़ों से मिट्टी की ऊपरी परत मजबूत रहती है, जिससे पानी की कमी या बाढ़ के समय खेतों और गाँव की जमीन को नुकसान नहीं होता। इसके फूल मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं, जिससे प्राकृतिक परागण बढ़ते हैं और खेती को भी लाभ होता है। शहरीकरण और आधुनिकता की दौड़ में खिरनी जैसे पेड़ और फल कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आप किसी गांव, कस्बे या पुराने मोहल्ले में जाएं, तो आपको एक न एक खिरनी का पेड़ जरूर मिलेगा। श्रोताओं, खिरनी हमें सिखाती है कि असली खुशी, मिठास और स्वास्थ्य बाजार के चमकते पैकेट्स में नहीं, बल्कि प्रकृति की सादगी, देसी ज्ञान और सामूहिक अनुभवों में छुपा है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: तो श्रोता, आज की स्वास्थ्य चर्चा में आपने जाना कि खिरनी कितना लाभदायक है। जितना फल छोटा है उतने ही ज्यादा उसका गुण हमारे लिए, उतना ही वो फायदेमंद है, उतना ही गुणकारी है। और स्वास्थ्य चर्चा के बाद नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब बारी है कि आज की अपनी विभिन्न सभाओं में हम जो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में जानकारी दे दें। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की वार्ता सुनिएगा।

हिंदी वार्ता का विषय होगा भूदान से ग्रामदान तक की विनोबा यात्रा। शाम 7:30 पर सुनिए का कार्यक्रम खेल जगत। सुबह 10:20 पर सुनिए का विशेष कार्यक्रम जन सेवा से राष्ट्र सेवा। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिए का कासगंज और शामली जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स पर खुसूसी प्रोग्राम सुनवाया जाएगा। गुफ्तगु होगी जिसमें नीले जिसका विषय होगा मौजू होगा नीले आसमान के शाहबाज। मेहमान होंगे रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स अजमेर बहादुर सिंह और रिटायर्ड वारंट ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स श्री राम शिव हरे। पेशकश होगी आसिफ इकबाल की। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में आज मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ विविधा का विषय होगा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद। आज ये पेशकश उनकी जयंती के अवसर पर। दिन में 1:15 पर बहनें सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। जौ उत्पादन की उन्नत तकनीक आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन में यशोवर्धन तिवारी की वार्ता सुनिएगा जलवायु अनुकूल ग्रामीण अवसंरचना। शाम 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। इसमें आज डॉक्टर संजीव कुमार से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी आलू की उन्नत कृषि तकनीक। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। रात 9:30 पर श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा ख्याल गायन। कलाकार होंगे प्रवीण कश्यप। और लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा संतोष राय के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब आप सुनेंगे आज की विविधता।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। आज की विविधा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद। कुछ लेखक सिर्फ कहानियां लिखते हैं, लेकिन कुछ लेखक कहानियों में पूरा समाज लिख देते हैं। कुछ शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, वे सीधे दिल में उतरते हैं और हमें अपने आसपास के लोगों, रिश्तों और समाज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान साहित्यकार हुए हैं मुंशी प्रेमचंद। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना सिर्फ एक लेखक को याद करना नहीं है, बल्कि उस आवाज को याद करना है जिसने अपने साहित्य में किसान की पीड़ा, गरीब की मजबूरी, स्त्री का संघर्ष, बच्चों की मासूमियत और समाज की सच्चाई को जगह दी। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में ही माता का निधन, आर्थिक परेशानियां और जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों ने शायद उन्हें उस भारत को देखने की दृष्टि दी जिसे अक्सर समाज देखना ही नहीं चाहता। उन्होंने कलम उठाई तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, उन्होंने लिखा सच को सामने लाने के लिए। उनकी कहानियों में हमें ऐसे लोग मिले हैं जो हमारे आसपास आज भी मौजूद हैं। याद कीजिए ईदगाह का हामिद, जिसके पास अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी अपनी दादी की तकलीफ को समझने वाला दिल है। और अगर हम बात करें पूस की रात के हल्कू की, जो ठंड से कांपता हुआ किसान है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस किसान की पूरी विवशता

खड़ी दिखाई देती है जो मेहनत तो करता है मगर फिर भी चैन से नहीं जी पाता। अगर हम बात कफन की करें तो कफन हमें इंसान की गरीबी तो उस अंधेरे तक ले जाती है जहां भूख है और अभाव इंसान की संवेदनाओं तक को बदल देते हैं। और अगर बात गोदान की करें तो गोदान का होरी भारतीय किसान की उस आकांक्षा और संघर्ष का प्रतीक बन जाता है जिसमें एक छोटा सा सपना भी पूरी जिंदगी की लड़ाई बन जाता है। और यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत थी।

और यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने बड़े बड़े महलों के नायकों से ज्यादा महत्व झोपड़ी में रहने वाले इंसान को दिया। उन्होंने उन लोगों को साहित्य का नायक बनाया जिनकी आवाज समाज में अक्सर दब जाती थी, और शायद इसीलिए प्रेमचंद का साहित्य आज भी पुराना नहीं लगता, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं, समय बदल गया, लेकिन इंसान की कई परेशानियां आज भी वही हैं। आज भी कोई किसान कर्ज से परेशान है, आज भी कोई माता पिता अपनी संतान के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी कोई बच्चा अपनी छोटी सी इच्छा को दबाकर परिवार की जरूरत को चुनता है, और आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। प्रेमचंद ने हमें सिर्फ साहित्य नहीं दिया, उन्होंने हमें संवेदना की आंखें दी। उन्होंने बताया कि साहित्य का काम सिर्फ हंसाना या रुलाना नहीं है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करना भी है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें दूसरे इंसान का दर्द हमारे लिए कितना मायने रखता है। उनकी कलम में विद्रोह भी है, करुणा भी, यथार्थ भी और उम्मीद भी, और यही कारण है कि प्रेमचंद आज सिर्फ हिंदी साहित्य के महान लेखक नहीं है, वे भारतीय समाज की स्मृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे समय मिटा नहीं सकता। आज उनकी जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही होगी कि हम उनकी कहानियां सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उन्हें समझे, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कहीं दूर नहीं रहते, वे हमारे आसपास ही हैं। शायद किसी किसान के रूप में, किसी मजदूर के रूप में, किसी माँ की चिंता में, किसी बच्चे की मासूमियत में, और कभी कभी हमारे अपने भीतर भी। मुंशी प्रेमचंद चले गए, लेकिन उनकी कलम आज भी बोलती है, और जब तक समाज में इंसानियत, संघर्ष, करीबी, रिश्ते और उम्मीद मौजूद है, तब तक प्रेमचंद का साहित्य भी जीवित रहेगा, क्योंकि कुछ लेखक समय के साथ पुराने नहीं होते, वे समय को समझने का तरीका बन जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद साहित्य के ऐसे ही सशक्त हस्ताक्षर थे।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज की विविधा यहीं संपन्न हुई और गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार सुनवाने के लिए आइए अब हम आपको गोरखपुर लिए चलते हैं।

0: अगर आप तो आप
1: सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जरूर पूरा करेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा ज्योति यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण और भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में कल निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली। इस मौके पर उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनसेवा से देश से

0: सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। विशेष श्रृंखला की आज की इस कड़ी में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बैठाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम प्रगति मिली।
1: यूपीएसटीसी के सीईओ मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
3: पीएम प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी,
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से स्वर्गीय आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
4: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही है। अब भारत जापान की साझेदारी बहुत से क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा।
0: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अकी आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। हालांकि राज्य में कल कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल भी यही स्थिति रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जरूर पूरा करेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा ज्योति यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। तो आज के शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं प्रवीण कश्यप। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग नट भैरव, जिसमें विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और उसके बोल हैं हे करतार करो। उसके बाद आप प्रस्तुत करेंगे अपनी द्रुतलय की रचना, जो कि तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं दया करो माता हे जगदम्बी।

धने धने धने तो पम्पा धने ता हाँ सभी चा बाहर में सारा धने निन्न ता सारा धने निन्न ता ता सारा धने निन्न ता ता थका क्यों निन्न ता ता सारा धने निन्न ता ता धारा धने निन्न ता ता पम्पा

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे ख्याल गायन। कलाकार थे प्रवीण कश्यप। आज आपने प्रस्तुत किया राग नट भैरव। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे हे करतार करो, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे दया करो माता हे जगदम्बा। इसी के साथ अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आपको चलते चलते ये अवश्य बताना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर एक बार पुनः आप प्रवीण कश्यप का ख्याल गायन सुन सकेंगे। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, साथ ही संपन्न हुआ आज का नमस्कार लखनऊ, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 6:30 से 7:20 के मध्य कृषि कार्यक्रम, प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार प्रभात सुनवाने के लिए श्रोताओं, आइए

0: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स ने वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 नए क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद

0: और बाबल मंदेव जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम बैठते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई न बहन न भी न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु

0: पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुषाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सौ दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली। नमस्ते बरेली, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और सुबह की शुरुआत अपने शहर की खबरों के साथ करते हैं।

104 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली। नमस्ते बरेली, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और सुबह की शुरुआत अपने शहर की खबरों के साथ करते हैं, जिनका सीधा संबंध हमारी और आपकी जिंदगी से हो तो वो खबरें खास बन जाती हैं। तो नमस्ते बरेली में बात करेंगे बरेली की उन खबरों की जो किसी के बेहतर इलाज की उम्मीद है, किसी युवा के रोजगार का रास्ता है और कारीगरों के हुनर की पहचान है, आने वाले समय में हमारी यात्रा को आसान बनाने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे, चलिए प्रोग्राम में सबसे पहले उन्हें देते हैं श्रद्धांजलि और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म युग पुरुष से ये गीत।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बीमारी के लिए बड़े खर्च की जरूरत होती है, ऐसे में आयुष्मान भारत योजना जैसी स्वास्थ्य सुविधा परिवार के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। बरेली ने आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है और अभियान के दौरान जिले में 2,59,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। और अभियान के दौरान आपको बता दें कि अभी तक 14,74,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 6,25,000 लाभार्थी योजना के तहत उपचार भी करा चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो सरकारी योजना की जानकारी हमारे लिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि जरूरत के समय काम आने वाली जानकारी है।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। हम बात कर रहे हैं अपने शहर के कुछ ऐसे खास कामों की जो लगातार हो रहा है और शहर को विकास के पथ पर आगे ले जा रहा है। तो बात विकास की करें तो जिसका असर आने वाले सालों पर हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है उस पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि बरेली में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की दिशा में आगे काम बढ़ रहा है और 126 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। जरा सोचिए, हमारे जो शहर बरेली में एक अच्छा स्कूल हो, साथ ही नौकरी हो और कारोबार शुरू करने के अवसर बढ़े, तो इससे अच्छी विकास की तस्वीर क्या हो सकती है। कुल मिलाकर बरेली का विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के रोजगार से भी जुड़ा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर, जो अपने अभिनय के जरिए हमारे दिलों में अभी तक राज करते हैं, अभिनय के जरिए उन्होंने हमारे दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है, वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अगर बात करें तो नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत में हमें एक ऐसी प्रार्थना दी जो आज हमारे देश में ही नहीं, स्कूलों में और घरों में भी गूंजती है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म अंकुश का ये गाना। सिर्फ गाना नहीं है बल्कि मन को शुद्ध करने और हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की ताकत देने वाला मंत्र भी है।

कब्जा करते लड़ाकू विमान कुछ ही क्षण में बादलों को चीरती उनकी रफ्तार भारतीय वायुसेना की गर्जना सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर केदारनाथ में जल प्रलय, हर संकट में वायुसेना अपने शौर्य साहस और शक्ति से देवदूत की भूमिका निभा रही है। नाथ नगरी यानी कि हमारे अपने शहर बरेली में त्रिशूल एयरबेस भी हर किसी को आत्म गौरव से भर देता है। हवाई सुरक्षा की तेजी से बदलती चुनौतियों के बीच त्रिशूल एयरबेस ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है और वायुसेना दिवस पर पूरा राष्ट्र वायु वीरों और भारतीय वायु सेना के शौर्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शहरी विकास से जोड़ने की दिशा में बीडीए ने नई पहल की है। पीलीभीत रोड पर डोहरा चौराहे का एक कायाकल्प किया जाएगा, उसे नई पहचान दी जाएगी। चौराहा नाथ ज्ञान ज्योति के नाम से जाना जाएगा।

0: like chairman.
1: और इसी के साथ आपको बता दें कि बरेली में आज का जो मौसम है उसका हाल क्या कुछ रहने वाला है। तो जिस तरह से बुधवार शाम को भी बारिश हुई और आज सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई, तो मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना। न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में घर से निकलने वाले लोग मौसम का ध्यान रखें, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे और दुपहिया वाहन से सफर करने वाले।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बरेली पर, और अब समय है लोकगीत का। चलिए सुनते हैं सारिका श्रीवास्तव की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना बैंग बैंग फिल्म से। एश किंग, शिल्पा राव और शेखर अफजियानी की आवाजों में अन्विता दत्त और कुमार के बोल संगीत है विशाल शेखर का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्र सेवा पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। राज फिल्म से गाना सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में सईद कादरी के बोल, राजू सिंह का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला वो गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती राष्ट्र सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का अगला गाना उंगली फिल्म से गुलराज सिंह की आवाज में, गुलराज सिंह का म्यूजिक और लिरिक्स हैं मनोज यादव के।

0: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं द स्काई इज पिंक। इस फिल्म से गाना गुलजार के बोल प्रीतम का संगीत।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।

अरिजीत सिंह के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज फिल्म द स्काई इज पिंक से। कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं जवान फिल्म से अरिजीत सिंह के साथ शिल्पा राव की आवाज, कुमार के बोल, अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: ये।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
2: लीजिए सुनिए SR क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बिसलपुर रोड बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
3: SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाएं समस्त स्त्री रोगों का इलाज। प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
4: SR हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
5: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन।

0: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली
1: SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैकपुर भुता फरीदपुर रोड भुता बरेली में बी फार्मा करें गवर्नमेंट की फीस पर।
2: दिल ने कहा कोई याद कर रहा है, मैंने सोचा दिल मजाक कर रहा है, फिर आई हिचकी, हमने सोच लिया समझ लिया अपना ही कोई इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है ना दोस्तों। आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम लेकर उपस्थित है आपका अपना दोस्त रविंद्र कुमार मिश्र। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं डॉक्टर रतन गंगवार जी। डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद रविंद्र जी। क्योंकि बरसात के बाद नमी होती है और ह्यूमिड वातावरण हो जाता है, वातावरण में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है
4: जी।
3: ये बैक्टीरिया वायरसेस और जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके लिए अनुकूलित वातावरण होता है और ज्यादातर इस मौसम में इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। इन्फेक्शन अगर हम कहें तो किसी बैक्टर के द्वारा, बैक्टर जैसे मच्छर हो, टिड्डा हो, इस तरह के
4: जी
3: बैक्टीरिया जो कि कीटाणुओं को ले जाते हैं, जैसे कि हम बात करें मलेरिया की या डेंगू की, इस तरह के चिकनगुनिया की, ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। चूंकि नमी ज्यादा होगी, पानी की जगह जगह इकट्ठा होगा, मच्छर बहुत तेजी से पनपेंगे, मच्छरों की मात्रा बढ़ती है, इन्फेक्टेड मच्छर जो कि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से के इन्फेक्टेड होते हैं, वो जब भी किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसके शरीर में उस जीवाणु को छोड़ देते हैं। तो इस मौसम में ये बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, महामारी की तरह फैलती हैं। जैसा कि अभी मौसम चल भी रहा है, हम देख रहे हैं जो हमारे अभी ओपीडी में आने वाले मरीजों में मलेरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह के मरीज काफी मात्रा में आना शुरू हो गए हैं।
5: डॉक्टर साहब, अभी एक पेशेंट आया था, उसे बुखार था, कोई ऐसा बुखार होता है जो कई दिन तक चलता है फिर कैसे ठीक होता है, ये क्या बीमारी है?
3: देखिए जैसे
5: आपने पूछा था कि जुकाम है क्या, खांसी भी है
3: जी,
5: अक्सर स्थिति में क्यों होता है
3: जी? देखिए अभी जो आपके सामने मरीज आया, वो मरीज को जुकाम था, खांसी थी, बुखार था, बदन दर्द था, ये सभी फ्लू के लक्षण होते हैं
4: जी।
3: तो जैसा कि मैंने बताया ये अनुकूलित वातावरण बैक्टीरिया वायरसेस दोनों के लिए होता है। तो वायरसेस चाहे वो राइनो वायरस हो या इन्फ्लुएंजा वायरस हो या दूसरे वायरसेस हैं जो कि जुकाम कराते हैं या इन्फेक्शन कराते हैं, उन वायरसेस के लिए अनुकूलित वातावरण है। तो वो अब इस समय बहुत सारे मरीज फ्लू लेकर के आ रहे हैं, ये भी उसी का एक इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन था इसको, जिसे जुकाम, खांसी और फेफड़े में इन्फेक्शन, इस तरह के सभी लक्षण इसमें थे, तो ये बढ़ जाता है। दूसरा इस समय ये तो हवा से फैलने वाले रोग हैं, एक आपने देखा मच्छर से फैलने वाले रोग थे
4: जी जी।
3: और ये जो फ्लू लगता है, ये फ्लू जो वायरस चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वातावरण में, और वो एक व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड होता है, वो छींकता है या उसके कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसलिए देखा गया है कि जब भी फ्लू होगा तो घर के किसी एक सदस्य को होगा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, सबको बारी बारी होता चला जाता है। इस समय चूंकि पानी इधर उधर बहुत ज्यादा फैल रहा होता है और वायरस के लिए बोला इन अनुकूलित वातावरण है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस भी पानी में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और हमारा जो नॉर्मल पानी है उसमें वो मिक्स हो जाता है। तो हम हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शस पानी पीते हैं जिससे हेपेटाइटिस ए भी हो जाती है।
5: तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि पानी उबाल के इस समय पीना चाहिए
3: जी, बिल्कुल, बारिश में एक ये कारण है। दूसरा हैजा, आपने देखा होगा डायरिया के बहुत ज्यादा मरीज इस समय आ रहे हैं
4: जी।
3: डायरिया के मरीज ज्यादातर कोलेरा वायरस होता है, विब्रियो कोलेरी नाम का वायरस बैक्टीरिया होता है
4: जी।
3: तो उस बैक्टीरिया से ये फैलता है और वो बैक्टीरिया चूंकि किसी न किसी के मल से जाकर के पानी मिलता है और वो फैल जाता है, सभी पानी मिल जाता है। नॉर्मल जो पीने का पानी आता है वो भी अगर हमने सही से नल को नहीं धोया हुआ है या कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं जरूरी है कि डायरेक्ट पानी मिलाया जाए, वो किसी भी जो पानी के ले जाने में, चाहे बर्तन में लग जाए, चाहे जिस जगह से पानी लिया जा रहा है उसमें लग जाए, चाहे नल में लग जाए, चाहे डायरेक्ट पानी में चला जाए, किसी मच्छी मच्छर गिर जाए, कोई भी चीज गिर जाए, तो उससे वो उसमें चला जाता है पानी के अंदर और आप उसको पियेंगे तो आपको कलरा हो जाएगा। तो देखा बहुत ज्यादा डायरिया के मरीज, बहुत सीवियर डायरिया के मरीज आते हैं, जानलेवा डायरिया होती है ऐसे मरीजों को, 100-200 इनकी चूल की मात्रा हो जाती है, उल्टियां बहुत ज्यादा आती हैं और ये मरीज आईसीयू में भर्ती करने पड़ते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्या इलाज की सुविधाएं हैं?
3: बिल्कुल, मलेरिया के सभी इस तरह के सभी इन्फेक्शियस बीमारियां जितनी भी हैं सबके इलाज की सुविधा है। और चूंकि

0: मैं खुद आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, तो ये जब भी कभी सीरियस होते हैं इस तरह के मरीज तो उनमें भी हम हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मशीनों के द्वारा भी इनका इलाज हम करते हैं। और आगे एक टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है वो भी पानी के द्वारा ही फैलता है, दूषित पानी पीने से। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो कि साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड से इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो कि जिसके हाथ में ज्यादातर पूरे शरीर पे ही टाइफाइड के बैक्टीरिया लगे रहते हैं, वैसे तो मल द्वार से निकलते हैं लेकिन कई बार बहुत साफ सफाई नहीं हो पाती तो हाथों में लगे रह जाते हैं और वो हाथ से किसी पानी में लग चले जाते हैं, वो पानी फिर दूषित होकर दूसरे पानी को दूषित हो जाता है, उस पानी से दूसरे पानी मिल जाते हैं।
1: अक्सर अस्पताल में देखा है कि हाथों को किस तरह धोना चाहिए, ये भी तरीका होता है, पहले अंगूठी को, क्या वो बड़ा अच्छा तरीका है?
0: हाँ बिल्कुल, जब घरों में भी इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो अगर हम अस्पताल में जैसे हाथ धोते हैं उसी तरह से ही हाथ धोने चाहिए, उसमें हाथ के किसी भी हिस्से को हम छोड़ते नहीं। जैसे सबसे पहले हम उंगलियों के जो टिप होती है उसको करते हैं साफ, फिर उसके बाद हम कलाइयों को साफ करते हैं, फिर हम हाथ के जो उंगलियों के बीच का जगह है उसको साफ करते हैं रगड़ रगड़ के, फिर हम पीछे चले जाते हैं तो दोनों हाथों के डॉर्सम साइड जो बैक साइड है उसको साफ करते हैं, फिर हम अंगूठे को साफ करते हैं, फिर हम हाथ के ऊपर वाले हिस्से को, ये 6 स्टेप ऐसे फॉलो करते हैं, पूरा हाथ साफ कर पाते हैं।
1: अक्सर देखा ये भी है कि जो नाखून है वो भी बड़े हुए होते हैं, उनमें भी गंदगी होती
0: है। बिल्कुल, उनमें गंदगी रहती है और उनमें ये बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, कॉलरा का बैक्टीरिया है, तो नाखून काट के रखने चाहिए। और आप देखेंगे प्रैक्टिस क्या होती है गांव ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से लोग थोड़ा सा पानी लेते हैं हाथ में इस तरह से, एक उन्होंने फेंक दिया उसको,
1: जैसे आचमन कर,
0: हाँ आचमन कर रहे हैं बिल्कुल, फ्रंट साइड में सिर्फ धोया और उसे फेंक दिया, जबकि बैक्टीरिया तो पूरे हाथ में किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, तो उनको साफ करने के लिए आपको ठीक से साबुन भी पहले लगाना होगा, साबुन भी इसी तरह से स्टेप्स में लगाना होगा, फिर उनको पानी से अच्छे से धोना होगा, और पानी से जब आप धोएं तो हाथ की उंगलियों को ऊपर की तरफ रखें और कोहने को नीचे की तरफ रखें, जिससे पानी जो ढलक के नीचे कोहने से होता है वो नीचे गिर जाए, और आप इसका अपोजिट करें, उंगलियां नीचे कर देंगे और कोहनी ऊपर कर देंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, तो जो हाथ के बाकी हिस्से में जो आप जिसे आप नहीं धोया है और वहां कोई बैक्टीरिया है तो आपके उंगलियों पे चला जाएगा और वो आप उसके द्वारा खाने में या पानी में लग के और आपके मुंह में चला जाएगा।
2: श्रोताओं हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हम बातें करेंगे गांव की, जहां पर जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उस गांव की बातें करेंगे जहां पर हम सब पहले रहा करते थे, गांव छोड़ के शहर आ गए। हाँ बात सुनना चाहेंगे ना? बस अभी हाजिर हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद।
3: SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाएं समस्त स्त्री रोगों का इलाज, प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
4: SR हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
5: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन,
4: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ। SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली,
6: SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैकपुर, भुता फरीदपुर रोड भुता बरेली में, बी करें गवर्नमेंट की फीस पर।
1: डॉक्टर बच्चे गांव का जीवन कितना अच्छा होता है लेकिन फिर भी वो गोबर होता है, सेवा गांव की गाय की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी सफाई, और सफाई प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, और स्पेशली पानी का, बारिश के मौसम में पानी का विशेष ध्यान दें। एक तो कुएं का पानी, आजकल सब जगह नल लग गए हैं, जो सरकारी नल लग गए हैं उसका पिए, क्लोरिनेटेड वाटर पिए, अगर फिल्टर उपलब्ध है वाटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है क्लोरीन की टैबलेट डाल के एटलीस्ट पानी पिए, नल से निकला हुआ पानी में भी क्लोरीन की टैबलेट डाल के रखें, हालांकि सरकारी नल की गहराई इतनी होती है कि वो अंदर जाकर इतनी गहराई से आता है कि वहाँ इन्फेक्टेड वाटर नहीं होता, लेकिन कई लोग उथले नल लगा लेते हैं, 50-40-50-60 फीट की पानी की मात्रा, पानी ऊपर लेवल ऊपर होता है तो उथला नल लगा लेते हैं।
1: समरसेबल का पानी बहुत अच्छा होता है।
0: हाँ समरसेबल का पानी बहुत अच्छा होता है, पानी नीचे से आने वाला तो अच्छा है लेकिन जो उसका, हाँ जिसमें कलेक्ट किया जा रहा है वो गंदा हो सकता है, तो जिस बाल्टी में आप ले रहे हो, जिस बर्तन ले रहे हो, वो धुली हुई होनी चाहिए, अच्छे से साबुन से धुली हुई होनी चाहिए, आप अपने हाथ धोकर के पानी को कलेक्ट करें, और जिससे पानी को आप बाल्टी से निकाल रहे हो तो वो चीज भी, जो डोलची जिसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र,
1: ग्लास लगा कर,
0: ग्लास लगा के, हाँ सर हाँ, तो उसको भी हर बार धोकर के इस्तेमाल करें और क्लोरिनेटेड वाटर ले लें।
1: अक्सर कहते हैं वो एक तांबे का लोटा होता है, बर्तन जग होता है, उसमें पानी अच्छा हो जाता है।
0: देखिए तांबा बैक्टेरिसाइडल होता है, वायरिसाइडल बैक्टेरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया वायरस मर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक उस

0: के अंदर पानी को रखना होगा
1: जी,
0: और हाँ तब वो बैक्टीरिया मरेंगे। रात पूरी ओवरनाइट रखना होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। तो गांव में तो सबसे अच्छा है, उबाल लीजिए पानी साफ बाल्टी में या साफ किसी बर्तन में, उस पानी को रख लीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसको आप बार बार पीते रहिए। और पूरा आपका जो भी रसोई है उसको बढ़िया साफ करके रखिए, जो जहाँ से आप पानी ले रहे हैं उसको साफ करके रखिए, नालियों को साफ रखिए, उनके अंदर पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। घर के चारों तरफ अगर आप देखें कहीं छत पे, कूलर में, टायर में, कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है, वो पानी को आप वहाँ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप मलेरिया भी नहीं होने देंगे, डेंगू से भी बच जाएंगे, चिकनगुनिया से बच जाएंगे, और अपना जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, और एक बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस जो ग्रामीण क्षेत्र में ही होती है, और ये जो धान गाड़ते हैं, धान की रुपाई करते हैं, उसमें अगर जानवर यूरिन कर जाए तो वो, या वहाँ इन्फेक्टेड वाटर में ये बैक्टीरिया मिलता है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो पानी किसी तरह से मुंह में चला जाए, बड़ा लाजमी है, जब भी कोई रुपाई करेगा छिटक के पानी जा सकता है, तो ये बीमारी हो जाती, बड़ी ही गंभीर बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस। इसमें लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, लिवर फेल हो जाता है, तेज बुखार आता है, पूरी सेप्टिसीमिया हो जाती है, सारे अंग फेल होने लगते हैं। बाकी बीमारियों में भी इसी तरह से दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक तो चाहे बूट पहन लीजिए, रुपाई कर रहे हैं तो बूट पहन के रुपाई करिए, और कोशिश करिए कि आपके मुंह में पानी ना जाए, क्योंकि हो सकता है वो इस बैक्टीरिया से, लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पानी हो, तो आपको ये इन्फेक्शन हो जाए, और बहुत ही गंभीर बीमारी।
1: धान की रुपाई के बाद बड़ी सावधानी से मेड़ पर बैठ के खाना भी खाएं,
0: खाना खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जिस तरह से हमने हाथ धोने की विधि बताई है उस तरह से हाथ धोइए, हाथ धोने वाला पानी भी साफ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। कई बार ये देखा गया है कि हम लोग जो ब्रश करते हैं वो पानी हम नॉर्मल टैप वाटर से ले लेते हैं, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो वो भी तो पानी हमारे मुंह में जा रहा है, और हम पीने के लिए इस्तेमाल आरओ वाटर करते हैं, तो ध्यान रखें अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो वो भी पानी या तो क्लोरिनेटेड वाटर हो और साफ होना चाहिए, एटलीस्ट
1: सलाइवा से पहुंच जाता है,
0: तो वो साफ होना चाहिए पानी, ऐसा ना हो कि वो पानी आप सोच रहे पिएंगे नहीं, जरूरी नहीं कि आप पिए ही, सिर्फ ब्रश करते समय जो कुल्ला करने के लिए पानी का इस्तेमाल
1: वो भी असर कर सकता है,
0: वो भी आप इन्फेक्टेड हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिए।
1: डॉक्टर संदेश क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए सभी लोग स्वस्थ रहें, और सफाई का के जो भी सफाई के नियम दिए गए हैं उनका पालन करें, अच्छा खान पान रखें। बीमारियां दो तरह से नहीं होती इन्फेक्टेड, एक तो ये साफ सफाई रखिए, उस बैक्टीरिया या जो भी कारण है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसको अपने पास मत आने दीजिए। दूसरा अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लीजिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता इतनी बढ़ा लीजिए कि वो आप पे हमला ना कर पाए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम है, खान पान है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, साफ सफाई, व्यायाम, खान पान, ये तीन चीज़ों का अपने जीवन में आचरण करिए, इनको धारण करिए, आप स्वस्थ बने रहेंगे।
2: डॉक्टर रतन गंगवार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं आप सभी स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। श्रोताओं कार्यक्रम से अलग हो रहा हूं लेकिन आपके दिल में हमेशा रहूंगा, है ना दोस्तों।
3: SR Institutions, Nagpur, Bhuta, Bareilly
4: से करें
3: ITI में इलेक्ट्रीशियन,
4: कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
3: रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
4: और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें डी फार्मा और बी फार्मा। SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें
3: BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी।
4: SR इंस्टीट्यूशंस नागपुर भुता बरेली के चेयरमैन हैं डॉक्टर रतन गंगवार
3: और वाइस चेयरमैन डॉक्टर संध्या गंगवार।
4: संपर्क करें 9720456885।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

104.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और प्रोग्राम आपकी पसंद में सबसे पहले हम देते हैं श्रद्धांजलि हमारे हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार, बात कर रहे हैं अभिनेता नाना पाटेकर की, जिन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और जैसा कि हम सभी दे रहे हैं अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, आपने सुना फिल्म अंकुश से ये गाना जिसके बोल इतनी शक्ति हमें देना दाता, अशोक खोसला, मुरलीधर और घनश्या की आवाज में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। ये है मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल बेगम शबनम, नाजमा बेगम नाज और सरिता, राजकोट से जैमिन जैन और हेतल जैन, कृष्णा राकेश, गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर यूपी से श्रवण कुमार, शिवम, आर्यन, लविस, मुनेश देवी और इनका पूरा परिवार, छिंदवाड़ा बेड़ी मध्य प्रदेश से नाना जी लाम से मीना, तेजस जय लाम से हर्षिता, और ये है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू रज्जक, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, पवन, सुनील, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और सौम्या, पद्मा टॉकेज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभी, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, माकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, तासु, अर्णव, सत्यमानंद, बोड़ागाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। पूर्णा दिगांव से सदाशिव थोरात, कविता, श्रेया और बंटी, बेड़ी एमपी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, मनोहर मगर, यामिनी उद्यन, अर्पिता, गोंदरू ढूलिया महाराष्ट्र से हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष जंघेल और नंदिनी, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल ईशान और पूजा परिहार, जिला नादेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश, शुभम, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति, चैडोगरी पिपरिया छत्तीसगढ़ से हैं, दुर्गाराम, अजय, जयकिशन, इंद्राणी, कुमारी साहू और माया साहू, चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील, अमन गौतम, बुधनगर खंडवा से नदीम और राजू, गांव वाराणसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, भेरूलाल वाकतरिया, धाकर भोला वाकतरिया, प्रवीण वागतरिया, रियांश, प्रतीक, उन्हील जिला उज्जैन एमपी से हैं, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल, ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाज, शकील, मोइन, तस्लीम और डीजे प्रधान, राज कमल, श्रोता संगाष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले, धोतर जुड़ाष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का, कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय, अपूर्व और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा, हसन, अहद, मिफ्रानवास, चाहत और सादिया, कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर तासिफ, मोहम्मद अजान, अलमीर बशर अंसारी, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर, गंज डुंडवार से मोहम्मद कलीम, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद यासीन, गढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद, अक्सा, आयशा, उमर और समीना। सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागो, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली, जगदीश ठाकर, रंजू भाई, युवराज, शिवांगी, हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम एमपी से, सादर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, गांव लौडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन मोहन, भुवनेश्वरी रमानंद कश्यप, करावल दिल्ली से रामनाथ और सुमन देवी, नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टोलर, पुना राम दिवांगन, कृष्णा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से

संजय ढिंग्या नमन और अपार मोहल्ला सनैया धन सिंह बरेली से हैं हमारे श्रोता राय सिंह पाल एनपी सिंह धनवीर जोगेंद्र रविन्द्र प्रेमपाल दिवाकर महेंद्र पाल अनुज पूजा और काजल पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ एमपी से हैं राजेश कुमार अकेला यशोदा राजीव और संजीव दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी डब्बू और बब्बू वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी इमरान रेहान शेख करुला मुरादाबाद से अयूब इरम शोएब खान जिला मुरादाबाद महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद मोहम्मद दानिश कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा शंकरपुर पोस्ट सावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव पुष्पेंद्र आनंद सनोज अमन सोनी अंकिता विनीता अनीता सुनीता और सूर्यश्री यादव विनोद वंडलकर वीणा वंडलकर विविधा और जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं रागिनी श्रीवास्तव विनेश मुस्कान बैंक सेंटर चनेटी बरेली कैंट से हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज साहिल बजाज रजाक मोहम्मद भी इस गाने को सुनना चाहते हैं और ये है नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वानी डॉक्टर हाजी अली हाजी अफजल मलिक संदीप रामगढ़ कैंट्स झारखंड से निप्पी स्वाने अल्ताफ फुजरे सैफुल्ला सबाहत कीरत रेहान सांगली जिले के जज शहर से गांधी नगर महेश्वर एमपी से श्याम यादव सोना यादव सुनते हैं ये गाना और देते हैं हम श्रद्धांजलि अभिनेता नाना पाटेकर को फिल्म का नाम है कोहराम जिसे गाया है अमित कुमार सुदेश भोसले ने

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और इस प्रोग्राम में आज हम दे रहे हैं अभिनेता नाना पाटेकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये सफर आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के पसंदीदा गानों को भी सुनते हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त क्यारो, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, ये हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत वर्मा, दीपाली कौशिक के युमान और आर के राजा, नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, अंजलि बाला साहब बीट शहर महाराष्ट्र से, गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला इंदु पार्वती और हिमांशु, गांव बिठोरा भोयर तहसील मंगल रूल पीर जिला वाशिम पश्चिम विदर्भ से हैं। योगी राज मस्के, श्रीहरि, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और इनका पूरा परिवार टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल, गांधीनगर महेश्वर एमपी से श्याम यादव, सोना गुंदरू ढुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी और उद्यन, कोल सिटी बरकाना से अफजाल तार, शाहिन सोनू तस्नीम अमल और मोहम्मद अफजल मलिक, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी कलीम अली अजीम अदीम अब्दुल गनी अलमीर जनत और मोहम्मद जैन, राहुल मनमर सल्ला, बेबी प्रियांशी रोशनी साहूनगर यवतमाल से जामनिया गाजीपुर से हैं, सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति गमरिया जमशेदपुर से, रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रिकर, अमर ताम्रिकर, दिलीप राजू रज्जक, संजीव विपिन अरुण, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना हिना यश और सौम्या, बड़ी ग्याबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार, गंज डिंडवारा यूपी से मास्टर खिलु परवेज, बेगम इमराना, नवाजिस दानिश, अमन आफरीदी, राधा नामदेव और ये हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना डब्बू, चैतन्य मेघा और आशीष राजा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रुधान और तुलसी मस्कीन। प्रतिष्ठान रेडियो ऑडियंस एसोसिएशन नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, प्रसाद जाधव, सोनल सिया और इनका पूरा परिवार जालना सोमनाथ जाधव और जालना से हैं, सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष सैंडलवुड जाधव, एकनाथ और संगीता, गांव जलालपुर जिला सहारनपुर यूपी से श्रवण कुमार, शिवम आर्यन, लविश, मुनेश देवी और इनका पूरा परिवार, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सदवीर सिंह बिजरानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजरानिया, ग्राम बिटोरा तहसील बड़ा जिला दतिया एमपी से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यास्त, रामवीर, जयपाल और इनका पूरा परिवार, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहनरकर और ये है गांव लसूडिया, नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी, चनौरा जिला फिरोजाबाद यूपी से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता, राम और श्याम, रवि आर्यन और इनका पूरा परिवार, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत और मिथिला नाचानी, करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, इस्लामुद्दीन, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन, गांव सिर कोतंगा, महादेव पारा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार, श्याम सकल, राम प्रियांशु, राजकुमारी नेहा, नायरा समायरा, खुशी सौम्या और सिमरन, अजीत कसाना, माय देवी, ऋतिक आदित्य, कांच रोड लदावली से हैं।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के

जिला खरगोन सनावद एमपीसी मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुराना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित और मुकेश जगताप, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबिल, आरफा, इल्मा, असलम खान और इनका पूरा परिवार, चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विनय कुमार, कलावती, अनुष्का, अश्विनी, ऊपरकोट चौखंडी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार, कस्बा उघैती बदायूं यूपी से सद्दाम हुसैन, सितारा साद, समद सादिक और ये है उत्तम कुमार भगत, रुक्मणी, साहिल, भारती, बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से हैं, गांव चुरवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, वामिका और वाणी, गांव वांडी फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत और बेबी गरिमा, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तान्या, राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार, खुराना, सुरेंद्र जो कि है न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, पंचकुला के सेक्टर 9 से आशुचुग, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लवदिवान, राधे, भाविक, पंचकुला के सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और इनका पूरा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। एटर रोड गंज डुंडवारा यूपी से हैं बीपी गौतम और सरिता, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी और ये हैं गांव खोखरावाली, श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से मास्टर सुनील, शिवम, अभिमीत, भगवान देव, स्वाति, तानिया गौतम और इनके मित्रगण, बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोर, जिला रतलाम एमपी से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन एमपी से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, चेतन और मयंक, नानक खन्ना, चंचल, लवली, रजत, सफीदो सिटी हरियाणा से लवकुश और इनका पूरा खन्ना परिवार इस गाने को सुनना चाहता है, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानुप्रकाश और गीतिका खोरवाल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक और मीका विरक, सलका चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विवेक कुमार, विमांशु, अंकित, अंकिता और श्रुति, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, चंदा, जसवीर, सीता और गीता, बिलौली जिला से हैं सत्येंद्र सिंह और ये हैं शनि बाजार कस्बा उघैती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियल, कार्य और गौरी गुप्ता, बरेली अलकनाथ मंदिर के सामने से हैं बेचूलाल गंगवार, गुड्डी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, वर्फा देवी, सुनील, महावीर, संजय, अश्विनी कुमार मौर्य, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी, गौतम, श्रीराम राठौर, पारस और वेदराम, कवाई सालपुर जिला बारा राजस्थान से सतीश, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और सुनते हैं आप सभी की जो पसंद का गाना है और आज अभिनेता नाना पाटेकर को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस गाने के जरिए, फिल्म का नाम है क्रांतिवीर, आवाज अमित कुमार, सपना मुखर्जी, सुदेश भोसले और पूर्णिमा की, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो,
1: मेरे साथ डांस करोगे?
0: नहीं।
1: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो मैं

0: अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
1: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।

0: 31 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: और जो अगला गाना वो सुनेंगे हम गुलाम-ए-मुस्तफा फिल्म से, और इस गाने को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं रंगोली रेडियो लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, सुशांत, चुलबुल रानी अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जय मंत्री केवट, शांति निकेतन राजनगर से, रेणु मिश्रा, क्रांति कामेश्वर, मंजुला गोदावरी, जय और बीरू, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष तिक्का, कोयल डुगू और भाविक, ये हैं सईद भाई, मंसूरी, राशिद, असद, फिरोजा, नगमा मंसूरी जो कि मोहल्ला बरादरी, महमूद खान रामपुर से हैं, ग्रामर पोस्ट गोठा खंडवा से मिश्रा परिवार, रामबाबू मिश्रा, कृष्णा, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी और शिवम, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम, सुंदरम और इनका पूरा परिवार, अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, भाटपरा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर, करण और चंपा, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन, निम्मी, मुकेश और इनका पूरा परिवार, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, राजिया सुल्ताना, सूरज अंसारी, सुराज अंसारी और इनका पूरा परिवार। गुजरात गांधी ग्राम से हैं प्रवीण सोनी और कलावती, शमसुल कमर राही, फातिमा शाहीन, अनुखान गंज डुंडवारा से हैं, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही गांव और डाकघर, निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, साहिबा खानम, जब्बार मोहम्मद, अशरफ मोहम्मद, हमजा खान, संबलपुर काकेर स्वगुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता पलक, लुबना, अल्जिबा अयान, यश इनका नवासा, नैबुर मंसूरी, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, राजनगर क्रांति निकेतन से हैं कुशवेश्वर क्रांति, रुद्रा, रिद्धि सिद्धि, कोमल, ऐशबाग लखनऊ से रानी, मुकेश, रश्मि, नीलम, कुसुम और रूपा इलाहाबादी, वटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला, अमरजीत सुंदर, योगेश, दीपक और पूजा खटक, मछली गोदाम क्यादीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ, साथ ही यह गांव सेवड़ी जिला छतरपुर से बारेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कल्लू, रविंद्र, वृंदावन प्रजापति और इनका पूरा परिवार। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूजा, ज्योति और शिवा। नई दिल्ली से हैं कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु और इनका पूरा परिवार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकिस्ट्रो, स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश, अंकिता, लक्ष्मी, ध्रुव, रानू, गीता श्रीवास, वैदही हंसिका जगदलपुर बस्तर से, पूनम नायडू खंडवा एमपी से, अब्दुल गफ्फार डावर आकोट से, विनायक बेंडी मंगला, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से है, मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंद्रकी से जाकिर खान, नाजिम, सुहेब, आरिब, जिक्रनूर, हलीमा और सादिया, मदरसा गेट भावपुरा मुड़ियाऊ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामराम अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया, मारहटा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम और इनका पूरा परिवार, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली और ये है विष्णु मस्कीन, रीतिका, आरव, वाणी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र।

सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप और मधुकर सेक्कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित गर्वी और हिमांश ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद रतनमाला मौर्य मुकेश प्रिंस प्रियांशी पुष्पा गौरव चंद्रप्रकाश मुन्ना भाई टेलर कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराने शहर बरेली से ये है पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई सोफिया अनस आयजा सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा हादिया आफिया और इनका पूरा परिवार सुरेश चौरसिया सरोज चौरसिया फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चुराहा उत्तर प्रदेश से एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊखर से ललिता संजना गणेश लड्डू देविका स्वाति चौधरी और इनका पूरा परिवार रामपुर रोड किला छावनी से प्रदीप कुमार पाल और पिंकी राधे गौड़ डॉक्टर गोडो और गरीब भाई श्री और इनका पूरा परिवार इस गाने को सुनना चाहता है भागलपुर उस्तू से प्रदीप आशीष कुंदन करीना पूजा आरती और सुनीता देवी फाजिल का पंजाब से खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा विशु विशाल लाडी शालिनी टिवांशी दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना और इस गाने के जरिए हम आज के प्रोग्राम आपकी पसंद में दे रहे हैं दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि।

और अभी आप सुन रहे थे ये भजन सोनू निगम की आवाज में, और इस समय 11:15 हुए हैं। चलिए सुनते हैं प्रोग्राम झुमका गिरारे।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम झुमका गिरारे में। दोस्तों, आज का जो ये सफर है ना, वो काफी खास है, क्योंकि आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज में दम है, संवादों में असर है और अभिनय में एक अलग ही सच्चाई है।
1: मौत के बाद जिंदा कौन रहता है?
2: 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। तो 4 घंटों में आखिर अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी।
0: और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की। तो आइए उनके फिल्मों की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ।

जी बिल्कुल, नाना पाटेकर अभिनेता जिनका एक फिल्मी करियर रहा है जिसमें उन्होंने सिर्फ किरदार नहीं निभाए बल्कि उन किरदारों को भी अपनी आवाज अपने अंदाज से

0: जी बिल्कुल, नाना पाटेकर अभिनेता जिनका एक फिल्मी करियर रहा है जिसमें उन्होंने सिर्फ किरदार नहीं निभाए बल्कि उन किरदारों को भी अपनी आवाज अपने अंदाज से यादगार बना दिया। उनकी खासियत थी संवाद बोलने का बिल्कुल अपना तरीका, आवाज में ठहराव, चेहरे पर भाव और फिर अचानक ऐसा संवाद कि दर्शक उसे बरसों तक याद रखे।
1: जिंदा कौन रहता है?
2: रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। तो 4 घंटों में आंखें अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी।
0: और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाना पाटेकर जो कि अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे और वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अभिनय में जो जादू था वो हमारे दिलों पर हमेशा जुड़ा रहेगा। एक लाइन और पूरा किरदार सामने आ जाता है, यही नाना पाटेकर की अदायगी का जादू है। कभी उन्होंने गुस्से को आवाज दी तो कभी दर्द को, कभी व्यवस्था पर सवाल उठाया तो कभी रिश्तों के उलझन को पर्दे पर उतारा। साथ ही जब उनका कोई संवाद आता था तो लगता था कि अब रेडियो की आवाज को थोड़ा तेज कर लेना चाहिए। और हाँ, क्योंकि नाना साहब का संवाद सुनाई कम और सीधा असर ज्यादा करता था।
2: मटका पानी लाता है और आधा मटका पसीना बहाता है, सांस फूलती है वो अलग से। अब सरकार इनके बसे बसाए घर उजाड़ कर वहां डैम बनाएगी, फिर इनको बसाने का वादा करेगी।
0: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने अभिनय की वजह से वो हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे। गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ भावनाओं को भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। प्यार, इंतजार और अनकही भावनाएं, इन सबको समेटे हुए अब सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन।

0: और नाना पाटेकर की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से ये गाना आपने सुना। साथ ही हम जानते हैं कि एक ही कलाकार को हमने कभी गुस्से में देखा, कभी दर्द में, कभी प्रेम की भावनाओं को जीते हुए। नाना पाटेकर की आवाज में जो ठहराव था वे उन्हें बाकी कलाकारों से अलग कर देता है।
1: एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमलपुरी रात को अपाहिज कर देता है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता।
0: तो इस से आप अंदाजा लगा सकते होंगे इस संवाद से कि नाना पाटेकर संवाद को सिर्फ बोलते नहीं थे बल्कि उनमें एक जान भी डाल देते थे। अंकुश से लेकर परिंदा, क्रांतिवीर, तिरंगा, वजूद और आगे के अपने लंबे करियर के सफर में नाना पाटेकर ने अलग अलग रंग के किरदारों को निभाया। कभी उनकी आंखों ने कहानी कही, कभी उनकी आवाज ने और कभी उनकी चुप्पी ने। और शायद यही वजह है कि उनके कई संवाद आज भी लोगों की बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं। और बिल्कुल नाना पाटेकर के संवादों की बात करें और क्रांतिवीर की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका वो तेवर, वो आवाज, वो अंदाज आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। यही तो एक बड़े कलाकार की पहचान है। वक्त गुजर जाता है लेकिन जो किरदार है वो हमेशा याद रहते हैं।

तो नाना पाटेकर का फिल्मी सफर हमें ये याद दिलाता है कि एक कलाकार की असली ताकत सिर्फ उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी आवाज, उसकी संवेदना, उसके अभिनय से भी होती है। उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए जो दर्शकों के दिल में लंबे समय तक रहे। इसलिए झुमका गिरारे के इस खास अंक में हम उन्हें याद करते हुए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कुछ कलाकार पर्दे से चले जाते हैं, लेकिन उनके किरदार पर्दे से कभी नहीं जाते। अपने किरदार और अपने संवादों के साथ हमेशा याद रहते।

तो आज के प्रोग्राम झुमका किरारे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।

0: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एफएम रेनबो आकाशवाणी लखनऊ से।
1: उन्होंने और बाद में फिल्मों का रुख किया, गमन, अंकुश, परिंदा, क्रांतिवीर, तिरंगा, बहुत यादगार भूमिकाएं निभाई उन्होंने। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरूद जंजीरा में जन्मे विश्वनाथ गजानन पाटेकर, दुनिया ने जिसको नाना पाटेकर के नाम से जाना और फेमस नाना से हो गए। तेवर में बगावती सुर थे उनके बचपन से, समाज की कुरीतियों को कला के माध्यम से दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे। बहुत जागरूक कलाकार के रूप में उभर कर आए, इसीलिए सबसे पहले थिएटर में आए, फिल्मों का रुख किया और आज हर दिल पर लगभग राज करते हैं। जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, जो उनकी बातें थी, जो उनका दम दिखता था पर्दे पर, वो असरदार, जानदार होता था। और अब भी थोड़ा सा भी धूमिल नहीं हो पाई है उन किरदारों की झलक, उनकी याद। देखिए, आदमी वाकई में मुसाफिर है, चला जाता है, लेकिन यादें दिल में छोड़कर जाता है। ये गाना उनकी फिल्म से तो नहीं है, लेकिन आज सुबह सुबह ये जो खबर मिली और जिस वजह से, जिस तरीके से नाना हमें अचानक छोड़कर चले गए, बहुत अजीब सा रहा।

0: LIC जीवन लक्ष्य जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट रिस्क कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस
1: LIC हर पल आपके साथ
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
2: LIC हर पल आपके साथ।
3: मैं रेडियो हूँ, यूँ तो मेरे कई घर हैं, पर मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। कभी चिड़ियों की चहक में, कभी चाय की महक में, कभी जिंदगी की रफ्तार में, कभी तुम्हारी कार में, मैं ही तो बजता हूँ। मैं रेडियो हूँ, तुम्हारे दिल में बसता हूँ। कभी यारों का यार हूँ, कभी चलता फिरता अखबार हूँ, किसी की खुशी की सरगम हूँ, किसी के टूटे दिल का मरहम हूँ। माँ की रसोई में गुनगुनाता हूँ, पापा को मैच का स्कोर सुनाता हूँ। कभी घर में, कभी शहर में, तो कभी खेतों की मेड़ पर बजता हूँ। मैं रेडियो हूँ, तुम्हारे दिल में बसता हूँ।

नाना पाटेकर के बाद, उनके बाद उनके किरदार में, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा कभी नहीं मिल पाएगा जिससे उन्हें थोड़ा सा भी धुंधला किया जा सके या भुलाया जा सके। एक समय के बाद पैसों की कोई कमी ना होने के बावजूद भी नाना ने कभी चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं चुनी।

अपने गांव में रह के साधारण कपड़े पहनना, खुद खाना बनाना, खेती करना, ये सब पसंद करते थे। जब महाराष्ट्र में किसान सूखे और कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे थे, तब नाना ने एक फाउंडेशन की स्थापना की, करोड़ों रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की सीधे पीड़ित किसानों को। गांव में जल संरक्षण पे काम किया, सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया। उन्होंने समाज सेवा के बहुत सारे काम किए, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, लेकिन कभी इन सब का शोर और दिखावा नहीं किया। आज जब अचानक छोड़कर चले गए, तो इसी तरीके से एक अजीब सी याद अपनी पीछे छोड़ गए। और जो प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है नाना को, उनके लिए ढेर सारे मेल्स भी हमारे साथ आ रहे हैं सभी श्रोताओं के। अजय सिंह जी ने मेल किया है हमें, इन्होंने भी नाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनिल कुमार जी का मेल है, संदेश तो कुछ नहीं है, बस इतना कहूंगा, 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से जिए। नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, टनकपुर उत्तराखंड से मेल आया है। ढेर सारे मेल्स हमारे पास हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी का मेल है हमारे पास तेलंगाना से, इन्होंने भी लिखा है कि नाना पाटेकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके डायलॉग से लोग सीखते हैं, इन्होंने उनके डायलॉग्स लिखे हैं। हम सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, हमें अपना आत्मसम्मान होना चाहिए। अमित यादव जी का मेल आया हमारे पास, और ऐसे ही श्रोताओं ने ढेर सारे मेल्स हम तक पहुंचाए हैं अपने। क्रांतिवीर फिल्म नाना की ऐसी रही जिसने लोगों के दिलों में एक अलग सी छाप छोड़ी है। ऐसे ही फिल्म कोहराम थी 1999 की, जिसमें नाना ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर एक खास जगह बना दी। नाना की ही फिल्म कोहराम से ये गाना आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं। उनको याद करते हुए ये गाना सुनते हैं, उनके अभिनय को याद करते हैं, उनके स्क्रीन प्रेजेंस को याद करते हैं, उनके किरदार में डूबी हुई उनकी कला को याद करते हैं।

11:46 हो गए हैं और आप फिल्म कोहराम से नाना पाटेकर का ये खूबसूरत अंदाज याद कर रहे थे, देख रहे थे। नाना को हम जितना भी याद करते हैं उतना उनकी अदायगी, उनके किरदार उनमें घुसते चले जाते हैं। दीबा जैनी अंसारी का मेल हमारे पास है, इन्होंने आज प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में नाना जी को श्रद्धांजलि दी है। सुबह उठने से पहले इन्होंने लिखा है कि फोन पे जब ये न्यूज़ पड़ी तो खुद को यकीन ही नहीं दिला पाई, और न्यूज़ कुछ यूं थी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार नाना पाटेकर जी नहीं रहे। मैं कुछ मिनटों के लिए एकदम स्तब्ध रह गई। हम सब के नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जरूर साथ रहेंगी। नाना पाटेकर जी की कुछ खास मूवीज, उनके नाम हमेशा दिलों में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मेल के लिए, और हम सब मिलकर नाना जी को

याद कर रहे हैं। नाना ने जो अपने किरदार दिए हैं, जो अपने अभिनय से हमें एक दमदार आवाज दी है, वो आवाज, वो दम भरी आवाज हमेशा के लिए ठहर गई। उसे याद करते करते हम आगे बढ़े और उनकी अगर बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में बात करें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिले, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं नाना पाटेकर, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ खलनायक, बेस्ट विलेन, इन 3 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। परिंदा 1989 की, क्रांतिवीर 1994, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, अग्नि साक्षी, अब तक 56 2004 की फिल्म और अपहरण 2005 की और वेलकम 2007 की। रिनाउंड शॉट का खिताब उन्होंने 40 की उम्र के बाद शूटिंग सीखी है, साल 2004 में 48वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के 300 मीटर बिग बोर इवेंट में रजत पदक विजेता भी बने और 2007 में उन्हें रिनाउंड शॉट का प्रतिष्ठित खिताब भी मिला है। और बाकी समाज के लिए जो अपना वो योगदान देते रहते हैं उसमें कोई जवाब नहीं। बस नाना को याद करते हुए, उनके उनके कड़क अंदाज को देखते हुए, उनके अंदर का जो दिल था, उनकी जो अंदर की जो भावना थी, समाज प्रेम था, वो सब समेटे हुए एक खूबसूरत सा गाना, उन्हीं की फिल्म से, उन्हीं पर फिल्म आया गुलाम-ए-मुस्तफा से, ये गाना आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। इसमें नाना के अंदाज को याद करिए, उन्हें देखिए किस तरीके से उन्होंने अभिनय किया है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को संभाला है, देखा है।

0: एलआईसी की अमृत बाल ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में जोड़ होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। एलआईसी हर पल आपके साथ।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके विचार और काम यहीं रह जाते हैं। नाना ने जो बेहतरीन काम किया, उनकी दम भरी आवाज़ ने जो जोश दिया, संदेश दिया, वो हमेशा रहेंगे, अनंत तक रहेंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। समय आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी याद हमेशा रहेगी। हम नाना पाटेकर जी की आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी श्रद्धांजलि के साथ चंद्रकला यानी आपकी दोस्त को दीजिए अनुमति। फिर किसी और दिन होगी आपसे मुलाकात। बात

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि राज्य जयप्रकाश नारायण का जीवन हर देशभक्त के लिए प्रेरणा स्रोत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भूमिका को लेकर संपूर्ण क्रांति के आह्वान तक जयप्रकाश नारायण का जीवन लोकतंत्र, जनभागीदारी और सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित था। भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के

अवसर पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले एरियल डिस्प्ले 2026 के दौरान वाराणसी प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर कड़ा कदम उठाया है। आगामी 22, 23 और 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो आयोजित होगा। एयर शो के दौरान आकाश में उड़ने वाले लड़ाकू विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नमो घाट के पास के 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में 19 अक्टूबर से कार्यक्रम की समाप्ति तक मांस मछली बिक्री व कटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने एयर शो के दौरान बर्ड हिट रोकने के लिए ये आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को स्टेट इवेंट घोषित किया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ की अध्यक्षता में कल आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन की तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तिथि से 4 माह पूर्व सेक्टर ऑफिसर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। विगत विधानसभा निर्वाचन में मतदान की प्रथम तिथि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के लिए एक सप्ताह में सेक्टर ऑफिसर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, 12:06 का वक्त और इसी के साथ स्वागत कर देती हूँ आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। और आपके अपने रेनबो पर इस वक्त आपकी दोस्त जरीना भी जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। भाई प्यारा सा मौसम हो गया है और अनएक्सपेक्टेड है था बिल्कुल, है ना। मतलब हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से इतना प्यारा सा मौसम हो जाएगा जहां बारिश की फुहारें ही सिर्फ पड़नी, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा की

कीचड़ नहीं हुआ है और ऐसे प्यारे प्यारे मौसम में ना हर कुछ अच्छा लगने लगता है। यूजुअली हम सभी के साथ होता है, जब चीज़ें आसपास अच्छी हों, कड़क धूप कम हो, लगता है बाहर बहुत अच्छा सब कुछ है, तो अपने आप मन भी अच्छा होता है और जो चीज़ें होती ज़िंदगी में वो भी बेहतर ही होती जाती हैं। भाई ये मौसम भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, कभी धूप बनकर उम्मीद जगाता है, कभी बारिश बनकर मन को भिगो भी देता है, कभी ठंडी हवा बनकर सुकून देता है, तो कभी बदलते मौसम की तरह हमें भी बदलना सिखाता है। और जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी भी कुछ बिल्कुल ऐसी ही होती है जिसमें मौसम की तरह ही कई सारे रंग होते हैं। कभी वो परिवार के लिए छांव बनती हैं, कभी अपने सपनों के लिए धूप बन जाती हैं और कभी जिम्मेदारियों की बारिश में भी मुस्कुराती हैं। कभी अपनों के लिए एक खूबसूरत सा मौसम भी चुनना वो सीख लेती हैं। तो बस आज का मौसम आज के शत्रुपा को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपकी दो जरीना ऐसी ही कुछ प्यारी प्यारी बातें लेकर के अगले एक घंटे आप सभी के साथ जुड़ी रहेगी। तो बहुत सारे गाने, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने, बहुत सारी बातें आप सभी के साथ होंगी अगले एक घंटे। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो पर, जो कि है आपका अपना म्यूजिकल हमसफर।

0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
2: जी हाँ दोस्तों, और सुरों के लखनवी एहसास पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है। शत्रुप और आपकी दोस्त जरीना है इस वक्त आप सभी के साथ। भाई जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो हम सब जानते हैं कि भाई उनकी बात ही कुछ अलग होती है। आज की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ सपने देखने वाली नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने की प्रॉपर रणनीति बनाने वाली भी होती हैं। वो अपने करियर की प्लानिंग करती हैं, अपने परिवार के भविष्य के सोचती हैं, और जब अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस की बात आती है वो भी बड़े ही अवेयरनेस के साथ लेती हैं। कभी ये बजट के छोटे छोटे डिब्बों से शुरू होती है, मतलब देखा होगा आपने अपने घर में मम्मियों को, अपनी चाची को, अपनी दादियों को, कि उनकी जो सेविंग्स है ना वो घर के छोटे छोटे डिब्बों से शुरू हो जाती है, और उनकी आर्थिक समझ का आज इतना बड़ा दायरा हो चुका है कि वो बजट वित्तीय स्वतंत्रता तक भी चीजें पहुंच चुकी हैं, है ना? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना सिर्फ कमाई करना नहीं होता है, बल्कि अपनी कमाई को समझदारी से संभालना और जिंदगी में आगे उस चीज को ले जाना, अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश को भी आगे बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो आज के समय में हर एक महिला बखूबी निभाना जानती है। और आज की अगर हम बात करें तो आज बेहद खास दिन है। हम जानते हैं ना, आसमान में उड़ते विमान सिर्फ हमें ऊंचाइयों का एहसास नहीं कराते, बल्कि ये भी बताते हैं कि बड़ी सी उड़ान के लिए हौसलों के साथ सही दिशा और मजबूत प्लानिंग की भी जरूरत होती है। आज है 8 अक्टूबर, यानी आज है एयरफोर्स डे। हमें उन जाबाजों की याद दिलाता है जो अपने साहस और अनुशासन से आसमान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। और बस यही बात जो है वो आज की हमारी महिलाओं पर भी लागू होती है। आज की महिलाएं सिर्फ सपने ही नहीं देखती, बल्कि अपने सपनों की फ्लाइट प्लान खुद तैयार कर रही हैं। करियर हो, परिवार हो, आर्थिक भविष्य हो, या हर मोर्चे की बात हो, उनकी सोच में आत्मनिर्भरता और बेहतर प्लानिंग हमेशा ही शामिल रहती है। भाई क्योंकि महिला जो है वो उसकी असली उड़ान सिर्फ आसमान तक पहुंचना नहीं होता है, बल्कि इतना सक्षम बनना होता है कि अपनी जिंदगी की दिशा और अपने भविष्य की मंजिल का फैसला वो खुद कर सके। और जहां हौसले आसमान से बड़े हों और आर्थिक समझ भविष्य को मजबूत बनाने वाली हो, तो ऑब्वियसली महिलाएं कहां पीछे रह सकती हैं। तो चलिए आज बात कुछ ऐसी ही करते हैं कि महिलाओं की जो उड़ान है वो आसमान की, और उनकी जो पैसों की प्लानिंग है वो किस तरह से वो करती हैं, और क्या कुछ उसमें उनको तिकड़म बैठाने पड़ते हैं, क्या कुछ ऐसे हैं जो शायद घर में महिलाएं ना हो तो घर में पॉसिबल ही ना हो, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल ये प्यारा सा अगला गाना आप सभी की रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इस गाने को। श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज है, यस, और साथ में है सोनू निगम। तो एंजॉय करते हैं इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

हमारे संग तुम्हारे, सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

जी हाँ दोस्तों, जावेद अली की आवाज में ये प्यारा सा गाना था आप सभी के रेडियो सेट पर, और इसी के साथ 12:24 का वक्त हो चला है और प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा। भाई जब हम बात करते हैं उड़ान हो आसमान की और प्लानिंग हो पैसों की, और जब महिलाओं को हम इससे कोरिलेट करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि इन सारे सांचे में ये जो महिलाएं हैं वो अपने आप को बखूबी और बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से फिट करती हैं। भाई सपने चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा करने के लिए भविष्य की प्लानिंग आज से शुरू करनी पड़ती है। और महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग का मतलब उनके लिए सिर्फ घर परिवार की जरूरतों का हिसाब रखना नहीं होता है, बल्कि अपने करियर, बच्चों की पढ़ाई, अपने सपनों और आने वाली जरूरतों के लिए फाइनेंशियल जो प्लानिंग्स होती है वो भी करना होता है। और आज की जो महिलाएं हैं, अगर अपनी कमाई, खर्च और आने वाले लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करती हैं, तो कल के फैसलों के लिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्योंकि मजबूत भविष्य अचानक नहीं बनता है, उसे आज की समझदारी से तैयार किया जाता है। और मैं हमेशा इस चीज को बहुत प्राउडली कहती हूं कि हम आज जिस तरह से अपने समाज में, अपने आसपास महिलाओं को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इन सारी चीजों में बहुत हद तक महिलाएं खुद को बहुत अच्छे से फिट कर चुकी हैं, बहुत अच्छे से अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रही हैं, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से खुद को, अपनी जॉब को, अपने करियर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको संभाल रही हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर एज वेल, कि जब फ्यूचर में और इससे बेहतर चीजें होंगी, तो समाज में जो औरतों की दिशा और दशा है वो ऑब्वियसली और भी ज्यादा सशक्त होती जाएगी, है ना। तो दोस्तों 12:25 का वक्त, और ये देखिए मेरे कहते कहते ऑलमोस्ट 26 हो चुके हैं, और वक्त इतना तेजी से भागता है कि आधा घंटा क्या, ये पूरा एक घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, उसके बाद आपके साथ ये जो अगले 4 होते हैं वो कब बीत जाते हैं वो भी बिल्कुल पता नहीं चलते। तो चलिए अब अगला गाना जो है वो मैं आपके रेडियो सेट तक भेजती हूँ, क्योंकि भाई बातों के साथ ये जो रेडियो पे गानों का तड़का है वो ऑब्वियसली साथ साथ लगा करता है। तो ये रहा ये प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, मोनाली ठाकुर की प्यारी सी आवाज है। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: एलआईसी जीवन लक्ष्य, जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट, रिस्क कवर, टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्शनरी बोनसेस.
1: एलआईसी, हर पल आपके साथ.
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट.

जी हाँ दोस्तों, गाने में बहुत ही प्यारी सी लाइंस थी कि आसमां का स्वाद है मुद्दतों के बाद है। और जब हम बात करते हैं इन शब्दों की, इन इस लाइन की कि आसमां का स्वाद है और मुद्दतों के बाद है, तो सीरियसली महिलाएं एकदम साफ अपने पूरे करियर को, अपनी पूरी जिंदगी को इसमें देख सकती हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो हम सब जानते हैं कि जो भी उनको आज के समय में हासिल है, जो कुछ भी वो कर रही हैं, जिस भी तरह से कर रही हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी और कितने लंबे समय की मेहनत है। और ये शायद तभी पॉसिबल हो पाया है जब उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया और आज के

समय में जिस तरह से वो अपना आउटपुट दे रही हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है. और ये शायद जो आज के समय में हम सब देख रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा समय लग गया है ना. लेकिन जिस तरह से तस्वीर बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, ऑफ कोर्स आने वाले समय में, आने वाले टाइम में और भी चीजें बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतर होने वाली हैं. भाई उड़ान हो आसमान की लेकिन प्लानिंग हो पैसों की, ये बहुत जरूरी हो जाता है. आज एयरफोर्स डे है और ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो बिल्कुल आसमान की उड़ान भरना चाहती हैं और भर रही हैं. तो उसमें जब हम देखते हैं तो एक चीज बहुत ज्यादा समझ में आती है, बहुत ज्यादा दिखती है कि सेविंग्स कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है. और ये शायद सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं है, पुरुषों के लिए भी इम्प्लीमेंट होता उनके ऊपर भी कि भाई जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो ये बहुत सटीक तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से हर किसी की जिंदगी में होनी चाहिए. भाई कमाई कितनी जरूरी है ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन उस कमाई में कितना बचाया जा रहा है ये उससे ज्यादा जरूरी होता है. और किस तरह बचा रहे हैं ये भी जरूरी होता है. छोटी छोटी बचतें जो होती हैं वो आगे चलकर बड़े सहारे में बदलती हैं. महिलाओं के लिए सेविंग्स सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता बल्कि अपने लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार करना होता है, ताकि अचानक जिंदगी में अगर कोई भी खर्च आ जाए, अचानक कोई मुश्किल आ जाए, या अचानक कोई ऐसी जरूरत आ जाए, या शायद अपने ही सपने पूरे करने का वक्त आ जाए, तो उस वक्त वो बचत हर एक महिला को आत्मविश्वास दे सके. इसीलिए कमाई के साथ साथ एक आदत हर किसी में जरूर होनी चाहिए कि पहले बचत की प्लानिंग करें फिर बाकी खर्चों की प्लानिंग करें, है ना. और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज अब से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए आते ही हैं पैसे फिर जाते भी हैं, लेकिन इस बीच जो प्लानिंग होती है ना, हम सारे बजट तो बना लेते हैं कि ये इसमें खर्च होना है, वो उस चीज में खर्च होना है, या ये वाला खर्च आ रहा है, या फला महीने में उस चीज पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन शायद हम इन चीजों में चूक जाते हैं कि जो बचत है, जो हमें बचा के रखना, उसकी प्लानिंग इन खर्चों से कहीं ज्यादा जरूरी है. और अगर महिलाएं उस चीज को बखूबी कर ले जाएं तो ऑब्वियसली परिवार को संवरने से और से शायद ही कभी कोई रोक पाएगा. तो दोस्तों देखिए बात करते करते 12:39 का वक्त हो चला है और अगला गाना भी भाई आपको सुनाने का वक्त आ चुका है. तो चलिए प्यारा सा गाना आप सभी की रेडियो सेट पर. और इसी तरह बस चार कदम जो होते हैं ना, वो जब हम आगे चलते रहते हैं तो जिंदगी भी आगे धीरे धीरे संवरना शुरू हो जाती है ना. शान की आवाज में ये प्यारा सा गाना बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ भी है. एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास.

0: हैं 100.7 FM रेनबो,
1: सुरों का लखनवी एहसास।
2: चुनिए LIC की जीवन लाभ, एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान जिसमें आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC, हर पल आपके साथ।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, श्रेया घोषाल की आवाज थी आप सभी की रेडियो सेट पर। और इसी के साथ देखिए, गाना सुनते सुनते, बातें सुनते सुनते 12:50 का वक्त कब हो गया हम सभी को पता भी नहीं चला। खैर, वक्त तेजी से भागता है, इट्स ओके, वो तो रोज का काम है। वक्त का काम है भागना, हमारा काम है वक्त को थोड़ा पकड़ कर रखना, ताकि हमारी और आपकी जो गुफ्तगू है वो हो सके, हमारे प्यारे प्यारे गाने आप तक पहुंच सके। और जो हमारा मोटिव होता है कि आप हम मतलब हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू एंटरटेन हो, अवेयर हो और एंजॉय करें, वो भी हो सके, तो ये सारी चीजें होती ही जाती हैं। खैर, आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, देखिए उड़ान तो हर एक महिला आसमान की करना चाहती है, लेकिन उसके लिए पैसों की प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो बस इसकी बात करते करते हम ऑलमोस्ट इसके आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। और एक चीज जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करी वो जरूर कहूंगी, एक शब्द आता है जब एक लगता ना जिंदगी काफी हद तक बीत गई है या लगता है अब रिलैक्स्ड होने का टाइम आ गया, तो उसको हम एक नाम देते थे थोड़ा सा, रिटायरमेंट का टाइम। तो जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो कहीं वर्किंग है, कहीं जॉब कर रहे हैं और एक एज पे आने पर उनको रिटायरमेंट मिलेगी, मैं उस रिटायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ जहां पर हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर, हमारा जहन, हमारी जो बॉडी में एनर्जी है वो लगातार हमारा साथ देती रहती है, लेकिन फिर एज का एक ऐसा पड़ाव आने लगता है जहां पर लगता है कि हाँ अब थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी हो जाता है। तो वो रिटायरमेंट शायद हर किसी के लिए होता है, जहां पर माँ बाप को लगता है कि जो उनके बच्चे हैं वो अब चीजें संभालेंगे, एक माँ को लगने लगता है कि जो बेटियां अब घर की हैं या बहुएं जो आ गई हैं वो चीजें संभालेंगे, अब मेरा थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम आ गया, या जो महिलाएं वर्किंग है, काम करते करते उनको लगता है नहीं बस अब तो घर पे बैठना है, अब कुछ थोड़ा मोड़ा करेंगे और उससे अपनी जिंदगी हम आगे चलाएंगे, या हाथ पैर बस या जहन हमारा जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह का पड़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है, और जब हम उस पड़ाव तक पहुंचे उससे पहले अपने जितने भी फाइनेंशियल चीजें हैं उनकी प्लानिंग कर लेना भी जिंदगी के लिए और जिंदगी में हमेशा उड़ान भरते रहने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि भाई सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के लिए आज से तैयारी करना उससे भी और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब तक आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं कि आप जब रिलैक्स्ड होंगे, जब आपका वर्किंग मोड कम हो जाएगा, तो उस बीच भी आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्मूथ चलता रहे, उसके लिए आपको अभी से और आज से ही प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, है ना। फ्यूचर प्लानिंग हो, मतलब लगातार सेविंग्स की आदत हो, या जो रिटायरमेंट की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, ये हर तरह से हर कदम पर कितनी भी जो महिलाएं हैं, कितनी भी जो फीमेल्स हैं, उनको हमेशा आत्मनिर्भर बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और कहीं ना कहीं सशक्त भी बनाता है। तो बस याद रखिएगा कि आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने पैसों को समझना, सही जगह लगाना और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेना भी होता है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ही हम एक अच्छी जिंदगी को जी पाएंगे, और शायद बाय द एंड ऑफ आवर लाइफ हम सबको ये रिलैक्सेशन रहेगा कि हाँ हमने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने से, खुद से जिया है, है ना। तो चलिए दोस्तों, भाई देखिए, बात करते करते वक्त बहुत तेजी से भाग चला है, 12:54 का लगभग वक्त हो चला है, और यहां पर प्रोग्राम शत्रुपा से आपकी दोस्त जरीना को फिलहाल कहना पड़ेगा बाय बाय। अगला गाना जो है वो प्ले करूंगी, उसके बाद छोटा सा न्यूज ब्रेक लूंगी, इलाकाई खबरों के लिए आपको लेकर जाऊंगी, और उसके बाद जल्दी से अगला जो प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, जहां पर बात सिर्फ आपकी होती है और ये जो लव्स यहां से आप सुनते हैं वो हमारे होते हैं, तो बस वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल जरीना से इस बाय फ्रॉम द प्रोग्राम शत्रुपा, और अगला प्रोग्राम जल्दी से लेकर वापस आती हूं, और फिलहाल ये प्यारा सा जो गाना है वो आप सभी के रेडियो सेट तक भी पहुंचा देती हूं। तो एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए सुरों का लखनवी एहसास, यानी 100.7 FM।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: गाते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर।

0: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
1: FM रेनबो लखनऊ साथ, दूसरा कोई कहां,
2: म्यूजिक मस्ती मैजिक।
3: सौ दशमलव 4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और अब लीजिए सुनिए अनुरोध गीत।

और अब कार्यक्रम का जो पहला गाना है वो है फिल्म युग पुरुष से प्रीति उत्तम सिंह और रविंद्र साठे की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी, हिना कौसर और इनके परिवार के सदस्य, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई अब्रार अफजाल, रामप्रसाद शर्मा, गैगुटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सदीक अली साबिया, रामप्रसाद शर्मा, धूनीनगर से ठाकुर मुल्ला सिंह कठेरिया, फजरुद्दीन अफजाल और अब्रार, और ये हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, मोहम्मद रिहान और माहिना नूर। आप सभी के अनुरोध का जो गाना है वो है फिल्म प्रीति उत्तम सिंह, रविंद्र साठी की आवाज, फिल्म का नाम युग पुरुष।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत। और जो अगला गाना है वो है फिल्म प्रहार फिल्म से, जिसमें आवाज है शोभा गुरटू की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। और ये है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की अनुरोध का जो गाना, वो है फिल्म प्रहार से शोभा गुरटू की आवाज़।

0: कभी तो हंसाए।
1: और ये गाना आपने सुना फिल्म आनंद से मन्ना डे की आवाज में, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक झावेंद्र, मोहल्ला गढ़िया बरेली से कैसर शमसी, असीम सलीम, नवेद, राशिद, राजिया और इनका पूरा परिवार, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा हादिया, शुएब खान, मुस्तबा, राव भाई शाहिद, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

और अब आप सभी के अनुरोध का जो गाना है वो फिल्म साया से के और श्रेया घोषाल की आवाज इस आप सभी सुना चाहते हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून डुमरा बिहार से, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा दानिश, सालिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल जयवीर, अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील आरफा इल्मा और असलम सैफी, लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता परी, संजना गणेश, कार्तिक ब्रोनो, उषा सोरना, स्वाति प्रयाग और मालती चौधरी, रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना मनोरमा, अजय कनिष, ये है होली चौक बरेली उत्तर प्रदेश से। और अब आप सभी के अनुरोध का जो गाना है वो है फिल्म साया से के और श्रेया घोषाल की आवाज में।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत। चाहे डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन इंद्राणी, कुमारी साहू और माया साहू, पद्मा टॉकेज नेपालनगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद सनोज, अमन सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता, सूरज श्री यादव, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी जिला आलोड रतलाम एमपी से जगदीश ठाकर, रंजुबाई युवराज और शिवांगी, पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, तनुजा, ईशांत, लखन, सावित्री और बाई दिवांगन, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार ड्यूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। आप सभी की अनुरोध का जो गाना है वो है सत्ते पे सत्ता फिल्म से किशोर कुमार, आर डी बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाज में।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

और ये गाना आपने सुना मासूम फिल्म से अनूप घोषाल की आवाज में, इसे आप सभी सुनना चाहते थे। कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश आशीष, तन्मय अपूर्व, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी और निमित आहोजा, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, मोहम्मद यासीन अंजान, साइबा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा, चाहत और सादिया, दादा बाबू रोड, गिरिडीह, झारखंड से। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। जो अगला गाना है वो है फिल्म घायल से आशा भोसले, शब्बीर कुमार की आवाज, और आप सभी सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन मोहम्मद, अल्ताफ निलोफर फातिमा। ये है गांव लोहरेडा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन अंजलि, नितिन मोहन, भुवनेश्वरी सुधीर, नूतन रामानंद कश्यप, करावल दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। साथ ही पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हॉल टीकमगढ़, एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा राजीव और संजीव, फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर तासिफ, मोहम्मद अजहान, अलमीर बशर अंसारी, कस्बा सेंथल, जिला बरेली से। सुनते हैं ये गाना जो कि है फिल्म घायल से आशा भोसले, शब्बीर कुमार की आवाज में।

और ये गाना आपने सुना मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। राय सिंह पाल, एनपी सिंह, धर्मवीर भारती, जोगेंद्र रविंद्र, प्रेम पाल दिवाकर, महेंद्र अनुज, पूजा काजल जो कि हैं मोहल्ला सनैया धन सिंह बरेली से, साथ ही भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत आयुष और नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शको नारुषि ओशिका आरवी और अंजलि, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु अर्णव, सत्यमानंद, बोहरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, राजधानी रायपुर से नीलू, डॉक्टर वंदना, बिट्टू कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का गाना अब आप सुनेंगे सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज, और इसे आप सभी सुनना चाहते हैं। पद्मा टॉकिश नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विनी, मंगला बेन, राजेंद्र जी शाह, शंकरपुर पोस्ट सावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद सनोज, अमन सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता और सूरश्री यादव, पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखन, सावित्री गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, ये है पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय, अपूर्व, कासगंज उत्तर प्रदेश से। सोनू निगम की आवाज का ये गाना, साथी अलका याग्निक का भी, फिल्म का नाम कभी अलविदा।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और अब सुनते हैं फिल्म मैं हूं ना से गाना श्रेया घोषाल सोनू निगम की आवाज में। इसे आप सभी सुनना चाहते हैं। बीचना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष अंशिका, यूसुफ और सोफिया, विनोद वंडलकर, वीणा विविधा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश और इनका पूरा परिवार। साथ ही नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वानी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट से, झारखंड से हैं निप्पी स्वाने, ये हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, अंजलि और बाला साहेब, सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सुफेल्ला, सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख, ये हैं वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नलेश, अंजलि, रोशनी, ख्याति, डोंडी लोहारा जिला बालो से देवशंकर तुमारिया, प्रभा देवी, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, रातिका और मास्टर अल कबीर। आप सभी के अनुरोध का गाना सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज, फिल्म का नाम मैं हूं ना।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत और इस समय आकाशवाणी बरेली सुन रहे हैं आप 100.4 एफएम पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं, लीजिए सुनते हैं रसरंग। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे रसरंग, इस समय आकाशवाणी बरेली आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। और अब लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं?

0: संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में।

0: रवि की तर्ज राजेंद्र कृष्ण के बोल मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नव में।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
2: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरिया, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरिया।
2: हाँ।
1: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही है लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा

0: गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
1: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता, तो कहाँ से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती हैं कि मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती हैं, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
0: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। चित्र, मोबाइल और ये सब
1: भूल जाते हैं,
0: नहीं याद रहता है
1: जी।
0: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का। और आंखें, कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
1: जी।
0: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
1: जी।
0: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात कर रहे हैं विश्व दृष्टि दिवस की,
1: जी।
0: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
1: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, बेटे बेटी में भेदभाव जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
0: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती हैं, वो लिखें। और इसके अलावा
1: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम छुटनी महतो के बारे में जानकारी देंगे।
0: और सोनाली जी, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
1: जी।
0: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है, बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उबलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सबके दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
1: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी। ममता जी, हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
0: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है, और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूं, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है, और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई। तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु

0: योद्धाओं का जीवन युवाओं को ये संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये दिन मनाया जाता है और 2026 में ये दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं। लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना लें।
1: नहीं तो ऐसा होता ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डालें। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल, जांच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, एक आंखों से आंखों में बातें होती हैं। और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म चिराग। सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूं कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन,
0: जी
1: विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं हैं, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे।
0: जी
1: जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने हैं।
0: जी
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज सुधारक की
0: जी
1: जिनका नाम छुटनी महतो है,
0: जी
1: और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, कि जिस तरह
0: जी
1: की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई।
0: जी और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था। और
1: और सोनाली जी, यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई
0: जी
1: मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों, मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहां पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम चलाई
0: उतारा
1: जाती
0: जाता
1: है।
0: है। जी
1: तो दरअसल समस्या क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए,
0: जी
1: न कि भूत पिशाच के
0: जी
1: जरिए जरिए।
0: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
1: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गांव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
0: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये

0: घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
1: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की बल्कि गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को यह भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
0: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही जहां ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
1: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
0: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
1: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मशाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
0: जी।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें एनसीईआरटी द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
3: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
3: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
3: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और

0: सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: जी तो श्रोताओ इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
1: जी
0: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
1: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओ परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
0: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
1: जी तो अजीत जी अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
0: जी हाँ श्रोताओ वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
1: जी
0: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
1: जी
0: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
1: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
0: तो श्रोताओं आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
0: नहीं विमलेश जी ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो या भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
1: और इसे प्रदान कौन करता है?
0: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
1: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन। जय हिंद।
0: तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिला।

0: ली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
1: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
0: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: तो बिल्कुल बावरी है।

0: अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में गुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
1: नहीं

0: तभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटे तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है दीदी, चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: जल्दी जल्दी पैर
1: बढ़ा।
2: अरे कहाँ जा रही हो बहनों, क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
4: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
4: हाँ।
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
4: और क्या
3: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
4: हाँ?
2: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाक के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाक के जंगल से?
3: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तक में उसके प्राण हैं। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
2: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
4: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
0: चलो चलो
4: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
5: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर

0: दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्षद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेश 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और हमारा आज का जो विषय है, नाना पाटेकर का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस दिग्गज अभिनेता को जिसको हम नाना पाटेकर के रूप में जानते हैं, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ दिनकर राव पाटेकर था और आपका जन्म 1 जनवरी सन 1951 को मुरुंद जंजीरा रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में हुआ। आपके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और माता का नाम संजनाबाई पाटेकर था। आपने अपनी पढ़ाई मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई की थी। अगर हम फिल्मों की या आपके करियर की बात करें तो साल 1978 की फिल्म कमन से बॉलीवुड में आपने अभिनय की शुरुआत की। आपकी चर्चित फिल्में रहीं परिंदा 1989, तिरंगा 1993, क्रांतिवीर 1994, खामोशी द म्यूजिकल 1996, यशवंत 1997, अब तक छप्पन 2004, अपहरण 2005 और वेलकम 2007। साथियों, आज हमने उस दिग्गज अभिनेता को खो दिया जिसकी संवाद अदायगी और अभिनय को हम कभी भुला नहीं सकते। आपको कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका विवाह नीलकांति पाटेकर से हुआ था। बाद में उनका तलाक हो गया और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम मल्हार पाटेकर है। तो आज श्रोताओं, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उस दिग्गज अभिनेता को जो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं।
5: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
4: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
5: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से बोल रहा हूं।
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि नाना पाटेकर जी का निधन हो गया, तो आकाशवाणी बरेली की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि नाना पाटेकर का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
5: देखिए, नाना पाटेकर ने जो भी फिल्में बनाई थी बहुत अच्छी और एक संदेशदायक फिल्म बनाई थी और उनकी जो एक फिल्म थी तिरंगा वो तो बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी और उनका एक डायलॉग भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था
4: जी।
5: और उनका अभिनय जो है वो ऐसा था कि बहुत से मतलब उन्होंने किसी भी फिल्म में जो काम किया वो बहुत मन से और लगन से काम किया। तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। और ऐसे अभिनय को इस फिल्मी दुनिया ने खो दिया है तो हम सबको इसका अफसोस है और उनको हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे। फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे और हम उनको याद करते रहेंगे
4: जी। बहुत अच्छा श्रद्धा सुमन आपने अर्पित किए क्योंकि वो एक ऐसे दिग्गज अभिनेता थे नाना पाटेकर जी कि लगते ही नहीं थे कि ये फिल्म स्टार हैं। ऐसा लगता था कि हमारे बीच से ही कोई किरदार उठकर फिल्मी पर्दे पर चला गया है ना
5: जी। क्योंकि कोई भी फिल्म होती थी जब उनकी फिल्म का एंड होता था तब वो एक बहुत समझाने के रूप में एक संदेश दिया करते थे। पूरा फिल्म का नचो जो वही तो होता था और पूरी फिल्म का एक संदेश जो है उनका जब निकल के आता था तो बिल्कुल साफ फिल्म समझ

0: आती थी और यही उनका बहुत मतलब अनोखा अंदाज था सर।
1: जी बिल्कुल, और वाकई में फिल्मी जो योगदान उनका रहा, जिस तरह के किरदार उन्होंने अपने जीवन में निभाए, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
0: ये आज उन्हीं का फिल्म ये गुलाम मुस्तफा, इसका आप कोई भी गीत सुनवा दीजिए, हम उनको याद कर रहे हैं, तो उन्हीं का फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

ये कमेंट हमारे पास आया है विष्णु मिश्र की इन रितिका आरवा वाणी का, दयानंद कॉलेज भवानीपीठ शोलापुर महाराष्ट्र से। अब लिखते हैं कि नाना पाटेकर का नाम आते ही मेरे मन में सबसे पहले एक ऐसे कलाकार की तस्वीर उभरती है जिसने अभिनय को सिर्फ पर्दे पर निभाया नहीं बल्कि अपने हर किरदार में जान डाल दी। उनकी आवाज़, उनका बोलने का अंदाज, चेहरे के भाव और संवाद बोलने की वो खास शैली, इन सब ने उन्हें बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग पहचान दी। अगर मुझसे पूछा जाए कि नाना पाटेकर का कौन सा किरदार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं क्रांतिवीर के प्रताप नारायण तिलक का नाम सबसे पहले लूंगा। इस किरदार में उनका गुस्सा, संघर्ष, बेबाकी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा बहुत प्रभावशाली लगा। ऐसा लगता है कि पर्दे पर कोई अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जो अपने आसपास की व्यवस्था से सवाल कर रहा है। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था, लेकिन नाना पाटेकर को केवल क्रांतिवीर तक सीमित करना उनके अभिनय के साथ न्याय नहीं होगा। परिंदा में अन्ना सेठ की भूमिका ने उनके भीतर के गंभीर और खतरनाक अभिनेता को सामने रखा। प्रहार में मेजर चौहान का अनुशासित व्यक्तित्व, अब तक 56 में साधु अगाशे का सख्त लेकिन भीतर से जटिल पुलिस अधिकारी, राजनीति में बिरजू गोपाल की गंभीरता और नट सम्राट में गणपत राव बेलवलकर की भावनात्मक गहराई, हर किरदार में नाना साहब अलग दिखाई दिए। और फिर वेलकम का उदय शेट्टी, जिस अभिनेता को हमने इतने गंभीर और तीखे किरदारों में देखा वही नाना पाटेकर जब उदय शेट्टी बनकर सामने आए तो उनकी कॉमेडी ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी गंभीर शक्ल और मजेदार संवाद अदायगी का ये मेल आज भी याद आते ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है। मुझे नाना पाटेकर की फिल्मों में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनके किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते थे, उनमें इंसानी भावनाएं होती थीं, कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी मजबूरी, कभी हास और कभी संघर्ष। यही वजह है कि उनकी भूमिका फिल्म खत्म होने के बाद भी मन में कहीं ना कहीं बनी रहती थी। नट सम्राट का गणपत राव बेलवलकर तो मेरे लिए उनकी अभिनय यात्रा की सबसे भावुक भूमिकाओं में से एक है। एक रंगमंच के महान कलाकार के जीवन में उम्र, परिवार, सम्मान और अकेलेपन की जो भावनाएं आती हैं उन्हें नाना पाटेकर ने बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। नाना पाटेकर की सबसे बड़ी खूबी मुझे यही लगती है कि वे किरदार को अपने जैसा नहीं बनाते थे बल्कि खुद किरदार के जैसा बन जाते थे।

0: इसलिए चाहे क्रांतिवीर देखें, परिंदा, अब तक छप्पन, प्रहार, राजनीति, नट सम्राट या वेलकम, हर जगह एक नया नाना पाटेकर दिखाई देता है। वकी में विष्णु मिस्किन जी, आपने विस्तृत रूप से जो नाना पाटेकर की जीवनी के बारे में लिखा, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी श्रद्धांजलि है। और अब देखते हैं कि हमारे ये अगले कॉलर कौन है।
1: हेलो
0: जी, आप कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मौलागढ़ मेरी बस्ती बरेली से तरमुन अंसारी बोल रही हूँ।
0: तरमुन अंसारी जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और आज जैसा कि आप जानती ही हैं, दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी का निधन हो गया है। उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आपको उनका सबसे ज्यादा अच्छा किरदार कौन सा लगता है?
1: सारे किरदार अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उनका किरदार कॉमेडी का लगता है।
0: अच्छा, वेलकम फिल्म में जो उन्होंने उदय सेठी का किरदार किया था, फिल्म देखी है आपने वो?
1: जी देखी।
0: अच्छा अच्छा
1: ज्यादातर मैंने नाटक बहुत करके काफी पिक्चर देखी है सर, सारी अच्छी लगती है मुझे।
0: जी,
1: वो भी बहुत अच्छी है, उसमें बोल मिलते नहीं है, फिर भी एक एहसास और छाप छोड़िए आज भी अच्छी लगती है।
0: जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।

फिल्मी अभिनेता नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे, सुनकर बहुत दुख हुआ। परमात्मा पूर्ण आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। नाना पाटेकर साहब का प्रत्येक रोल, प्रत्येक डायलॉग और उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी। उनका हाव भाव, बोलने का अंदाज और खूबसूरत डायलॉग एक सब एक से बढ़कर एक है, किसी एक को नहीं चुन सकते। और ये कमेंट हमें भेजा है अनोखे लाल मौर्य, कटरा चंद खां, पुराना शहर बरेली से। आप कहते हैं कि हमारे बीच नाना पाटेकर जी नहीं रहे, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए उनका परिवार को जब उन्हें फिल्मी दुनिया के पर्दे पर देखते थे, हम उनके डायलॉग बहुत ही अच्छे लगते थे। उनकी फिल्म तिरंगा, उसमें उनका डायलॉग बहुत ही अच्छे लगे, उन्हें हमेशा

0: ये कमेंट हमें भेजा है अनोखेलाल मौर्य, कटरा चंद खां, पुराना शहर बरेली से। आप कहते हैं कि हमारे बीच नाना पाटेकर जी नहीं रहे, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए उनका परिवार को जब उन्हें फिल्मी दुनिया के पर्दे पर देखते थे, हम उनके डायलॉग बहुत ही अच्छे लगते थे। उनकी फिल्म तिरंगा, उसमें उनका डायलॉग बहुत ही अच्छे लगे। उन्हें हमेशा हम याद करेंगे और वो हमेशा हमारे स्मृति में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनोखेलाल मौर्य जी। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्ते, हम पंकज गुप्ता, ग्राम लखनगांव, पोस्ट मलकेगांव, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर।
0: बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: पहली बार हम जुड़े हैं बरेली के अंदर।
0: चलिए बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आपकी कॉल लगी है। और
1: जी सर आज हमें गीत सुनना है सर।
0: कौन सा गीत सुनेंगे
1: सर? तिरंगा मूवी का है वो मेरे जाने।
0: हाँ, आज नाना पाटेकर जी का निधन भी हो गया है। तो नाना पाटेकर जी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कोई फिल्म देखी है उनकी?
1: जी सर तिरंगा हमने देखी थी, अच्छी लगी थी।
0: अच्छी लगी थी आपको वो फिल्म?
1: जी बहुत अच्छी लगी थी सर, फिल्म की।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन।

0: देखा सर, पहले लात फिर बात उसके बाद मुलाकात।
1: नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात फिर बात और फिर जरूरत पड़े तो लात।
2: आकाशवाणी बरेली श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है उस दिग्गज अदाकार को जिसने अपना पूरा जीवन अभिनय को समर्पित कर दिया। रामबाबू मिश्रा कहते हैं स्वर्गीय श्री नाना पाटेकर जी को शत शत नमन। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुन नूर अंसारी कहते हैं कि आज मैं बात करना चाहता हूं उस किरदार की जिसने मुझे अपनी अदाकारी और अपने अंदाज से बहुत मुतासर किया। ये किरदार है फिल्म वेलकम का उदय भाई, जिसे मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी ने निभाया था। उदय का किरदार जितना सख्त दिखाई देता है उतना ही दिल का साफ और मजेदार भी है। उनके बोलने का अंदाज, चेहरे के एक्सप्रेशन और छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देता है। खास बात यह है कि नाना पाटेकर जी ने उदय के किरदार में ऐसी जान डाल दी कि वो फिल्म का एक यादगार हिस्सा बन गया। मुझे उदय जी इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसके किरदार में दोस्ती, वफादारी और अपने लोगों के लिए फिक्र साफ दिखाई देती है। उसकी हरकतों में भले ही शरारत हो लेकिन उसके दिल में अपने करीबियों के लिए मोहब्बत भी है। फिल्म वेलकम को जब भी देखता हूं उदय का किरदार देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नाना पाटेकर जी की शानदार अदाकारी ने इस किरदार को ऐसा यादगार बना दिया है जिसे लोग आज भी प्यार से याद करते हैं। मेरे लिए अच्छे किरदार वही होते हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल और जहन में अपनी जगह बनाए रखें, और उदय ऐसा ही एक किरदार है। जी वाकई में वेलकम फिल्म के अंदर उदय शेट्टी का जो किरदार नाना पाटेकर जी ने निभाया वो वाकई में काबिल तारीफ है। और बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख नूर अंसारी जी।
3: हेलो
0: सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? और
3: मैं जिला रामपुर ग्राम पंचायत के पास से आपसे मुखातिब हूँ।
0: शबनम अब्बासी जी क्या करती हैं आप?
3: सर मैं ज्योतिषन हूँ, पार्लर में काम करती हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
0: आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि नाना पाटेकर जी आज उनका स्वर्गवास हो गया है, तो नाना पाटेकर जी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
3: सर मुझे नाना पाटेकर का किरदार जो पसंद है वो जो बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं और एक बात में कई बातें कह देती हैं, वो किरदार बहुत अच्छा लगता है।
0: उनकी हर फिल्म के अंदर मतलब उनके जो किरदार हुआ करते थे उसमें उनका अंदाज ही अलग था, क्योंकि उनकी जो संवाद अदायगी थी
3: बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, कोई फिल्म आपने उनकी देखी है?
3: तिरंगा देखी है, क्रांति देखी है, फिल्में बहुत देखी हैं और उनका जो बोलने का अंदाज है वो बहुत अच्छा।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगी आप?
3: सर आज नहीं, पसंद से कोई सा गीत सुनूंगा।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: विनेश कुमार श्रीवास्तव निकट बैंक सेंटर चैरिटी बरेली से। नाना पाटेकर के निधन से पूरा बॉलीवुड ही नहीं उनके लाखों चहेते शोकाकुल हैं। क्रांतिवीर फिल्म का वो फिल्मी संवाद आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने आज भी उनके चहेतों के कानों में गूंज रहा है। वो वास्तव में एक बहुत अच्छे कलाकार थे। उनकी फिल्में मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सीख देती हैं। उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अरशद बोल रहे हैं।
0: अरशद भाई, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हमारे प्रोग्रामों को आप सुनते हैं?
1: सर जी, सारे प्रोग्राम आपके सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम?
1: आपकी फरमाइश और अनुरोध गीत
0: अच्छे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: हाँ, सारे कार्यक्रम आपके अच्छे लगते हैं। कार चोबी का काम करते हैं सभी, पूरा घर हमारा आपका प्रोग्राम सुनता है मन से।
0: आज दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी का निधन हो गया है 75 साल की उम्र में, और आकाशवाणी बरेली उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि नाना पाटेकर का कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कोई फिल्म देखी है आपने नाना पाटेकर जी की?
1: नाना पाटेकर की फिल्में तो बहुत सारी देखी हैं।
0: मतलब जो रोल पर्दे पर किया करते थे वो आपको देखकर कैसा लगता था?
1: हमें बहुत अच्छा लगता है, उनका रोल बढ़िया लगता था सर जी।
0: अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल।
1: आकाशवाणी से हम जुड़े हैं कम से कम 2 सालों में।
0: चलिए, इसी तरह आप हमारे प्रोग्रामों को सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कॉल की।

शुरू कभी हंड्रेड वन कभी हंड्रेड टू जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ नब्ज दिखाओ मेरा

0: हाय रे ना गुलाब से हाय रे हाय रे हाय रे
1: मैंने देखा था

0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो मैं

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कमेंट हमारे पास आया है एडवोकेट वारिस अली खान का, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आप कहते हैं कि नाना पाटेकर के निधन की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। मैंने काफी अरसे पहले मूवी अंकुश देखी थी, उस फिल्म में उनका निभाया हुआ किरदार मुझे बहुत पसंद आया और साथ ही क्रांतिवीर में उनका किरदार बहुत ही जबरदस्त था। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
2: हेलो, हमारा प्यार भरा नमस्कार परवेज भाई जी को।
1: आपको भी हमारा नमस्कार। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: राजेंद्र गंगवार, कसपकड़िया, तहसील नवाबगंज, बस्ती परेजी से बोल रहे हैं सर जी।
1: बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हमारे दिग्गज अभिनेता जिन्होंने 75 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली, नाना पाटेकर जी, आज उनका स्वर्गवास हो गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजेंद्र गंगवार जी, आपने उनकी फिल्में कोई देखी हैं?
2: हाँ जी, उनकी मूवी देखी है, जैसे तिरंगा हुई, क्रांतिवीर हुई और हम दोनों हुई, और गमन जो उन्होंने पहली ही फिल्म बनाई थी गमन, वो भी अच्छी थी
1: जी। वेलकम फिल्म थी, इसमें उन्होंने कॉमेडी किरदार किया था, गुलामे मुस्तफा, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में आपने
2: वेलकम में तो बड़े हंसाते रहते थे, उनका ये भी किरदार हमें अच्छा लगा सर जी।
1: जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
2: हाँ सर जी, गाना सुनवा दीजिएगा नाना पाटेकर, ऊपर कोई सा भी सॉन्ग चला दीजिएगा, अच्छा लगेगा।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रवीण चौहान का ये कमेंट आया है कि आप कहते हैं क्रांतिवीर में सबसे अच्छा किरदार लगा, और साथ ही टैक्सी नंबर 9211 और वेलकम फिल्म में उदय शेट्टी वाला किरदार भी बढ़िया था। अंजुम खान बहड़ी से कहते हैं कि क्रांतिवीर का किरदार उनका अच्छा लगा। कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य कहती हैं कि हमारे बीच नाना पाटेकर नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे फिल्म के अभिनेता ने किरदार को वाकायदा निभाया है। कई पिक्चरों में उन्हें अपना किरदार बहुत खूब निभाया है, जैसे तिरंगा पिक्चर, फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा, उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने जितने खूबसूरती के साथ अपने किरदारों को निभाया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। नाना पाटेकर साहब की सबसे बड़ी खूबी मुझे यही लगती है कि वे किरदार को अपने जैसा नहीं बनाते थे, बल्कि खुद किरदार के जैसा बन जाते थे। इसलिए चाहे क्रांतिवीर देखें, परिंदा, अब तक 56 प्रहार, राजनीति, नट सम्राट या वेलकम, हर जगह एक नया नाना पाटेकर दिखाई देता है। हम उनको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
0: सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
1: पहली बार आपकी कॉल लगी है?
0: हाँ सर, पहली बार लगी सर
1: जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और
0: जी।
1: जैसा
0: आपका
1: कि
0: भी हम स्वागत करते हैं सर।
1: आप जानते हैं जगदीश राय गर्ग जी के आज दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी का निधन हो गया है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो
0: बहुत बहुत दुख की बात है।
1: और आज जो हमने विषय रखा है कि नाना पाटेकर का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फिल्में तो देखी होंगी।
0: वैसे तो उनके सभी किरदार सभी फिल्मों में बहुत दमदार रहे हैं।
1: जी
0: बुलंद आवाज और सच्चाई सामने लाना, उनका ये किरदार सभी फिल्मों में नजर आता रहा।
1: जी
0: और सबसे बढ़िया जो मुझे फिल्म लगी वो तिरंगा का, जो उसमें उनकी अदाकारी थी, वो बेहतरीन अदाकारी थी,
1: जी
0: बेहतरीन रोल था।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो क्या कहें सर, सभी फिल्मों में उन्होंने लाजवाब काम किया।
1: जी जी क्या कहना चाहेंगे और उनके विषय में?
0: बस मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच हमने आज बहुत ही बड़ा एक अदाकार खो दिया। ऐसे अदाकार कभी कभी आते हैं, भले ही वो हमारे दिलों में तो बसे रहते हैं, कभी जाते नहीं, क्योंकि उनका जितना भी अदाकारी का जितना भी जितनी भी फिल्में हैं वो सभी हमारे पास ही हैं।
1: जी
0: हम कभी भी उनका आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं उनकी अदाकारी का। पर फिर भी चलो, उनके जाने का दुख तो पूरे देश को है, ऐसे कलाकार कम ही आते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे कलाकार बहुत ही कम पैदा होते हैं और अपने अभिनय से, अपनी अदाकारी से वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहनों में जिंदा रहते हैं। तो नाना पाटेकर जी को हम आकाशवाणी बरेली की ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: देख अपन गन छोड़ दिया।
1: अरे अपना क्या दुश्मनी है?
0: क्या हुआ यार, गलती से गोली चल गई यार,
1: आदत से मजबूर है ना। जमुना, अरे तू तो यारों का यार है यार। भाभी कैसी है?
2: नहीं, मेरी बात ऊपर तक पहुंचा है। मैं तुम्हें बहुत कुछ खिला सकता हूँ तुझे।
3: मैं खिलाऊंगा तुझे, बच्चों को जहर खिलाता है, तू भी चख के देख।
2: नहीं,
3: कितने का है ये?
2: 10 लाख का।
3: 10 लाख ले, खा ले। इतना महंगा निवाला तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा। ले खा ले।

0: ಅಲೆ ಬಹುತ್ ಜೀ ಲಿಯಾ ತು ಚಲತೆ ರಹೇ ದಿಖಾತಾ ಹೂ ಜಿಸ್ ಪರ್ ತು ರಾಜ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಚಲ.
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ. ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर. श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं. ये समय है कार्यक्रम विवरण का. तो हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा. श्रोताओं आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत में कृषि पाठशाला. विषय रहेगा प्राकृतिक प्रजनन हेतु सांड पालन एक पशुधन उद्यमिता का अवसर. विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर एस के घोष, प्रायोजक IVRI इज्जत नगर बरेली. नारी संसार का समय रहेगा शाम 5:30 पर. इसमें चर्चा होगी भारतीय वायुसेना दिवस पर. साथ ही चर्चा होगी छोटी छोटी बातों पर क्रोध से बचें, ब्यूटी टिप्स और इनसे मिलिए. 6 बजे आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी. कुछ खास है आज एयरफोर्स डे और साथ ही वर्ल्ड साइट डे ओइलकी और 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी. इसमें आज की बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर. साथ ही होगी कृषि गोष्ठी, बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल नसीहत और प्यारे प्यारे लोकगीत. आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे अपने खतों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 5:05 पर भजन संध्या में कुछ भजन.

कल की प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 8:15 पर, जिसमें आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे, आपकी पसंद आप सुनेंगे कल सुबह 10 बजे, पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनेंगे आप कल दोपहर 1 बजे, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल अपराह्न 3:30 पर, शाम 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ, प्रातः 8:45 पर आप आनंद लेंगे लोकगीतों का, सबरंग आप सुनेंगे कल सुबह 11 बजे, रसरंग में गजल कव्वाली और लोकगीत सुनेंगे अपराह्न 2 बजे, शाम को भजन आप सुन सकेंगे भजन संध्या में 5:05 पर।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कृषि पाठशाला, प्रायोजक होंगे IVRI इज्जत नगर बरेली। ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 6:30 पर। इसमें चर्चा होगी शारदीय नवरात्रों की तैयारी और साथ ही क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोकगीत। युवाणी आप सुनेंगे कल शाम 6 बजे। कुछ खास है आज। टेरिटोरियल आर्मी डे और साथ ही वर्ल्ड पोस्ट डे नजराना है। शाम भी आप सुनेंगे, साथ ही होगी एक वो भी जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रत्येक दिन किसी नए मेहमान से। कल शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कलाम शायर, प्रतिभागी होंगे आरिफ और फहीम। लकी थ्री का समय रहेगा कल शाम 5:30 पर। और अपनी पसंद के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे कल शाम 7:31 पर। खोए हुए व्यक्तियों की सूचनाएं आप सुन सकेंगे।

श्रोताओं, ये तो थी संक्षिप्त रूप से कहा हमारे आज और कल की सभा में रेलवे प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली

लता मंगेशकर, रूपकुमार राठौर व साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये भजन। अगले भजन से पहले आइए सुनते हैं ये सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं एक और भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये अगला भजन अनुप जलोटा के स्वर में। रचना है नारायण प्रसाद की और संगीत दिया है अनुप जलोटा ने।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुज लोटा के ही स्वर में ये प्यारा सा भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। और श्रोताओं, अब समय हुआ है महिलाओं के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

गुड इवनिंग, नमस्कार। नारी संसार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन। कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही खुश होंगी और प्रसन्न होंगी। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस विषय पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए आज का सवाल। भारत की पहली महिला पायलट कौन है? जी हाँ, आज का सवाल है, भारत की पहली महिला पायलट कौन है? और इस सवाल का जवाब आपको देना है हमारे आज के कार्यक्रम की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है, फेसबुक ओपन करना है, नारी संसार की पोस्ट पर जाना है और उसके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना है आज के सवाल का जवाब। जी हाँ, तो देर मत करिए, अपने आज के सवाल का जवाब लिख करके भेज दीजिए ताकि हम आपके जवाब को शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। फिलहाल तो जरा सोच के देखिए कि जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, या फिर किसी ने हमारी उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया, या फिर घर में कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिली, या फिर कोई छोटी सी बात पर किसी की टिप्पणी जो है हमें बुरी लग गई, और देखते ही देखते क्या होता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, आवाज और तेज हो जाती है और मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या हर छोटी बात हमारे गुस्से के लायक होती है? क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार क्रोध के लिए प्रतिक्रिया देना जरूरी है क्या? अक्सर हम छोटी सी परेशानी को मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं और फिर वही छोटी बात बहस में बदल जाती है और रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले रुक जाइए, तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए और यदि संभव हो तो कुछ देर उस परिस्थिति से दूर हो जाइए। अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या यही बात एक घंटे बाद भी इतनी महत्वपूर्ण रहेगी, या फिर क्या मैं इस बात को शांत होकर के भी कह सकती हूँ? अधिकतर मामलों में जवाब होगा हाँ, हाँ मैं शांत होकर भी बात कर सकती थी। याद रखिए, गुस्से में बोले गए शब्द जो है ना, वो वापस नहीं आते। इसलिए बात अगर कहनी ही है तो आवाज ऊंची करने के बजाय शब्दों को नरम रखना ज्यादा हितकर रहता है। बच्चों से कोई गलती हो गई, या घर के किसी सदस्य से काम में चूक हो जाए, या फिर अपने से मतभेद हो जाए, गलती सुधारने के लिए डांट से ज्यादा प्रभावी है शांत संवाद। जी हाँ, एक बात जो हमें विशेष रूप से याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर गलती पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण रखने की भी ताकत होती है। तो अपने दिन में थोड़ा सा समय स्वयं के लिए भी निकालिए, पर्याप्त नींद लीजिए, नियमित दिनचर्या कीजिए, हल्का सा व्यायाम, संगीत, प्रार्थना या फिर किसी भी पसंदीदा काम के लिए समय मन को शांत रखने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात आपको गुस्सा दिलाए तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस इतना कहिए, अरे रुक जाओ, छोटी सी बात है, अपने पूरे दिन पर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो शांत मन से लिया गया निर्णय होता है वो रिश्ते भी बचाता है और साथ ही साथ मन का सुकून भी। तो आइए अपने मन के सुकून को और बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गाना।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: इनसे मिलिए सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी सभी बहनें जानती हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है, मन घबराने लगता है और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बहुत ही चिंताजनक विचार आने लगते हैं और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगती है। लेकिन आज हम इस सेगमेंट में आपको एक ऐसे कैंसर वॉरियर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बखूबी इस यात्रा को पार किया और उसके बाद आज एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ जी रही हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती मोहिनी शर्मा जी। मोहिनी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद भावना जी।
1: मोहिनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो क्या रिएक्शन था आपका, आपकी फैमिली का और डॉक्टर्स का?
2: जब मुझको पहली बार कैंसर का पता चला, मतलब मुझे बाद में पता चला, मेरी फैमिली को पहले पता चला था।

0: कैंसर के बारे में, और इवन उन्होंने मुझे उस समय बताया नहीं था. तो उनका मतलब सबके दिमाग में आता है कि कैंसर का नाम ही इतना गड़बड़ है, सबके दिमाग में आता है पता नहीं ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा. फिर ऐसे ही हम लोग चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये है कैंसर और थर्ड स्टेज का कैंसर. उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने सुना तो मुझे भी उस समय शॉक लगा क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे. फिर मैंने ओवरकम किया कि किसी तरीके से इससे निकला जा सके. तो धीरे धीरे धीरे धीरे उस चीजों को समझने के बाद फिर मैंने कहा नहीं, जो भी कुछ होगा आगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी होता है उसको हम देखते हैं. फिर उन्होंने मेरे का ऑपरेशन बताया, फिर और सारी चीजें बताई. उन सारी चीजों से मैं धीरे धीरे ओवरकम होकर आई.
1: ये कितने समय पहले की बात होगी?
0: ये जो टाइम था ये मई 24 का टाइम था.
1: जी.
0: मई में ही डायग्नोज हुआ था और मई में ही इसका ऑपरेशन हुआ था.
1: जी, मई में आपका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद आफ्टर सर्जरी भी बहुत सारी चीजें रही होंगी.
0: जी,
1: थोड़ा
0: जी,
1: सा उनके बारे में.
0: आफ्टर सर्जरी जो होती है, जब भी आप कैंसर है, कोई भी कैंसर है, तो कीमो प्रेस्क्राइब की जाती है. तो कीमोज हुई मेरी, देयर अबाउट 21 कीमोज हुई. फिर कीमोज के बाद स्टार्ट होता है रेडिएशन का फेज, क्योंकि जो भी कैंसर है, जो भी पर्टिकुलर पार्ट होता है, वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू उस पार्ट में और कोई किसी तरह का नोट्स ना हो, वो भी ट्राई हुआ. तो नियर अबाउट ये करते करते मेरा फेब में जाके पूरा ट्रीटमेंट फिनिश हुआ, फेब 2025 में.
1: जी, तो जैसे जैसे की जर्नी आगे बढ़ी, जैसे जैसे सर्जरी के बाद कीमो की तरफ आप आगे बढ़ी, तो किस तरीके से, मतलब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आई?
0: देखिए, सबसे पहले होता है सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट होना चाहिए, परिवार का सपोर्ट होना चाहिए. अच्छा, ऐसा है मेरा वर्किंग प्लेस पे भी मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे परिवार में मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा. सबने कहा कि हाँ कर सकते हैं. कीमो के बाद मोस्टली ये होता है इंसान के बाल वगैरह चले जाते हैं, तो ऐसा फेस होता है कि कोई मतलब आप पे कुछ कमेंट कर सकता है, कुछ कर सकता है. लेकिन मैंने अपने इस पूरे फेस में कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने मेरे ऊपर कोई कमेंट पास किए हो. सबने बस मोटिवेट किया, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया.
1: तो एज ए कैंसर वॉरियर, आप किस तरीके से और लेडीज को या और जो हमारे कैंसर पेशेंट है उनको मोटिवेट करेंगी?
0: मैं बस ये कहना चाहूंगी, अगर उनको पता चलता है कि कैंसर है, तो कैंसर जो होता है हमारी पॉजिटिविटी ही उसको हरा सकती है. अगर हमने पहले ही सोच लिया कि हम ठीक नहीं हो सकते, बाल जाने के डर से हमने कीमो नहीं कराई, अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है कि हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो कभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है उसको मिडिल में नहीं छोड़ना चाहिए. मेन थिंग ये है. और दूसरी बात है कि पॉजिटिविटी एंड डाइट. डाइट इज नेसेसरी एंड पॉजिटिविटी इज नेसेसरी. पॉजिटिविटी के लिए आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, जो आपको अच्छा लगता है. मान लीजिए आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग कीजिए, सॉन्ग सुनिए, मतलब किसी तरीके से आपको पॉजिटिव रखिए अपने आप. हो सकता है आपको कोई वर्क करना अच्छा लगता हो, उस वर्क को करिए. हाँ, ये चीज ठीक है कि एग्जॉशन हो जाता है बहुत ज्यादा, अगर कुछ भी आप थोड़ा वर्क करिए एग्जॉशन हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करिए. लेकिन फर्स्टली पॉजिटिविटी एंड सेकेंडली द डाइट. डाइट इज मस्ट. डाइट का बहुत ध्यान रखें, जितना आप डाइट का ध्यान रखेंगे उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे.
1: बहुत अच्छे आपने बात बताई कि अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी डाइट और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा जाए तो इस बीमारी से जाहिर सी बात है हम ओवरकम कर जाएंगे. अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि बच्चे बहुत छोटे थे, तो बच्चों का क्या रिएक्शन था कि जब मम्मी बीमार पड़ी? क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं.
0: जी, पहले तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे देखकर कि हाँ मम्मी को ऐसा हो गया है, ये हो गया है. क्योंकि बच्चों को यही बताया जाता है कि कैंसर से कोई ओवरकम नहीं कर पाता, इंसान चला जाता है. समझने के बाद उन्होंने कोऑपरेट किया. अगर मैं कुछ काम करती थी तो मेरे बच्चे उसमें सपोर्ट करते थे मुझे. धीरे धीरे धीरे धीरे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली मदर.
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई. एक तो ये कि अगर हमारे साथ हमारे परिवार का साथ हो और बच्चों का साथ हो, बड़ों का साथ हो, हस्बैंड का साथ हो, तो कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन हो, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या आपके हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम उससे इजीली पार कर सकते हैं. जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चलते चलते मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को इस बीमारी के बारे में पता चलता है
1: जी,
0: तो सबसे पहले उसको डायग्नोस कर. डायग्नोस कराने के बाद जो भी स्टेप डॉक्टर बताता है उनको फॉलो करें. घबराएं नहीं, इसको फेस करें अच्छे से. क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से फेस करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है. आप उससे ओवरकम हो सकते हैं. कैंसर का इलाज है, तो आप अपने दिमाग में बिठा के चलें कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है ये वाली जिसका इलाज ना हो सके. आजकल इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं,

0: कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुल गए हैं, तो प्लीज मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि जब भी बीमारी का पता चले तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें, मिडिल में कोई भी ट्रीटमेंट ना छोड़ें, ना ये सोचे कि हमारी खूबसूरती चली जाएगी या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक फेज ऐसा आएगा जब आप सब चीज भूल कर आप फिर से ओवरकम करके बिल्कुल नए तरीके से,
1: जी
0: मैं यही कहना चाहती हूँ बस।
1: जी मोहिनी जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और इस समय जो हमारी बहनें सुन रही हैं और अगर वो इस बीमारी के बारे में जरा भी जानती हैं या अगर उनकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस परेशानी के दौर से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें समझ पाएंगी और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट भी कर पाएंगी कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सकारात्मक सोच और आपके परिवार के साथ आपको आगे बढ़ने में और इस बीमारी को हराने में मदद करता है। आपने हमसे इतनी अच्छी बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, ये तो था हमारा आज का सेगमेंट इनसे मिलिए, और जैसा कि मोहिनी जी ने बताया कि ये कैंसर बीमारी जो है उसका इलाज संभव है, हमें जरूरत है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने की, साथ ही साथ अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखने की, और इसके साथ साथ कुछ करने की, जिंदा रहने की, जिंदा दिली के साथ रहने की अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो जरूर जरूर जरूर संभव है कि आप इस बीमारी को पूरी तरीके से हरा सकें। और अब समय है एक गाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बहनों, आज 8 अक्टूबर है, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस, और ये दिन हमारे देश के हवाई सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर वायु योद्धाओं के साहस, शौर्य, अनुशासन और समर्पण को नमन करने का अवसर है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए लड़ाकू विमान, उनकी तेज गर्जना और तिरंगे के रंगों से सजा आकाश, यह दृश्य हर भारतीय के मन में गर्व की भावना भर देता है। भारतीय वायुसेना केवल आसमान की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर बचाव राहत अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो या किसी कठिन क्षेत्र में राहत पहुंचानी हो, हमारे वायु योद्धा अपनी पूरी जिम्मेदारी और पूरी तत्परता के साथ अपना कार्य करते हैं। वायुसेना की ताकत केवल अत्याधुनिक विमानों और तकनीक में नहीं, बल्कि उन बहादुर महिलाओं और पुरुषों में है जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। आज हम सब उन्हीं वायु योद्धाओं और उनके परिवार को भी सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनके त्याग और समर्पण के कारण हम सभी देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। देखा जाए तो आसमान की ऊंचाइयों से लेकर देश के हर कोने तक भारतीय वायुसेना राष्ट्र सेवा का गौरवपूर्ण प्रतीक है, और उनके इसी गौरवपूर्ण प्रतीक के कारण ही आज हम सब उन्हें अपने मन से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ आइए सुन लेते हैं ये गाना।

तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में हमारा आपसे सवाल था कि भारत की पहली महिला पायलट कौन है, और उसका सही जवाब है सरला ठकराल जी। और हम तक जिन श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं हीरामणि वर्मा, हरीश शर्मा, और साथ में हैं विष्णु मिस्किन, रीतिका आरव और वानी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और कीर्तनपुरी गोस्वामी, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान और अनोखे लाल जी। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहे और हमारे प्रश्नों के जवाब देकर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहे। कैसा लगा आपका आपको आज का कार्यक्रम, अपनी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर हम तक भेजिए। और अब हमारे पास बहुत अधिक वक्त नहीं है कि हम आपसे और ज़्यादा बातचीत कर सकें। अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार, भावना कंचन के साथ प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। 104 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। वैभव के साथ प्रस्तुति है गौरव सक्सेना की।

दोस्तों कहते हैं मौसम बदलते हैं तो एहसास बदल जाते हैं, और एहसास बदले हैं तो जिंदगी को देखने का अंदाज भी बदल जाता है। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त वैभव। तो बताइए कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल रहे होंगे, क्योंकि सच कहूं जिंदगी में हम बहुत कुछ हासिल करके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन किसी को देखिए, किसी को अपने जीवन में नौकरी चाहिए अच्छी, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को अपना घर बनाना है, और किसी को कोई परीक्षा पास करनी है, और किसी को बस इतना ही चाहिए कि दिन थोड़ा सुकून से गुजर जाए। वैसे अक्टूबर का महीना आ चुका है, देखते ही देखते साल का एक और पन्ना भी पलट रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने नए साल की बातें करी थी, नया लक्ष्य बनाया था, और अब देखिए साल के आखिरी कुछ महीने हमारे सामने खड़े हैं। देखो वैसे अक्टूबर भी अपने आप में श्रोताओं कुछ खास ही महीना होता है, क्योंकि अक्टूबर की अपनी ही एक खूबसूरती है। मौसम यहाँ से करवट लेने लगता है, धीरे धीरे जो इतनी तपिश थी, गर्मी थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सुबह शाम की थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगती है और सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस होने लगती है। और सबसे खास बात, ये जो महीना है ना, ये त्योहारों यानी कि फेस्टिवल्स का महीना होता है। आप हर तरफ देख पाएंगे कि फेस्टिवल्स की तैयारियां भी यानी कि त्योहारों की तैयारियां भी होनी शुरू हो गई हैं। और फेस्टिवल्स हमें वो मौका देते हैं जब परिवार के साथ हम बैठते हैं, पुराने रिश्तों में फिर से गर्माहट आती है और घर थोड़ा और घर जैसा लगने लगता है। तो चलिए दोस्तों अभी और भी बातें आपसे करेंगे, लेकिन पहले एक सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, और देखिए युवाणी में हर दिन हम आपको एक युवा से रूबरू कराते हैं। तो आज एक ऐसे ही युवा के बीच हम पहुंचे हैं, तो बताइए, अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम रोशनी पुष्पक है, मैं नीरगंज बरेली की रहने वाली हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, और ITI में फॉर्म भरा है।
2: जी जी।
3: और तो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
2: अच्छा, तो रोशनी जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो धन्यवाद कहेंगे कि देखिए आपने आज समय दिया बात करने के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो BA में आप अभी क्या कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं इस समय?
3: हिस्ट्री
2: से पढ़ रहे हैं।
3: होम साइंस।
2: जी जी।
3: तो होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस है लास्ट ईयर में।
2: तो लास्ट ईयर है इस बार, मतलब BA का?
3: हाँ, लास्ट ईयर है। हाँ।
2: तो अभी जैसे आपने कहा कि आप जो BA कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में भी आप जाना चाहते हैं ना, तो
3: हाँ।
2: हम जान सकते हैं कि आप जैसे BA तो कर रहे हैं लेकिन मेडिकल लाइन तो बिल्कुल एक अलग है, तो मेडिकल लाइन
3: है
2: में
3: कि जी ऑप्शन दो रखना चाहिए ना, अगर इसमें हो गया सिलेक्शन इसमें सही मेडिकल लाइन में चलेगा इस चक्कर में।
2: तो ऐसा मतलब

0: मन है आपका मेडिकल लाइन में या कोई सपना है बचपन का?
1: मेडिकल लाइन में देखो थोड़ा खर्चा हो जाता है ना, इस चक्कर में थोड़ा बजट नहीं था, इस चक्कर में बीए करने में बड़ा अब बजट हो जाएगा, तो ओटी का कोर्स करने की सोच रहे हैं जी लास्ट ईयर के
0: अच्छा
1: बाद।
0: अच्छा तो जैसे आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी बताया कि आईटीआई भी आप कर रहे हैं, तो आप इसमें किस ट्रेड में करना चाह रहे हैं? आईटीआई में
1: दोपा में
0: कोपा यानी कंप्यूटर का एप्लीकेशन का कोर्स होता है ये जी।
1: हाँ
0: तो जरूरी भी है कि कंप्यूटर भी सीखना जरूरी है, और आज के समय में तो कंप्यूटर सबसे जरूरी हो गया है ना, कहीं भी जाओ तो
1: सबसे जरूरी है, सही
0: जी
1: बात।
0: जी कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। तो थोड़ा सा और आप अपने बारे में बताना चाहें कि कैसा रहा आपका एजुकेशन और कैसा रह रही है पढ़ाई? जी
1: तक तो लगभग सही रही है, अच्छी रही है पढ़ाई,
0: जी
1: आगे वो आगे
0: जी
1: भी ज्यादा मेहनत जारी है।
0: जी बिल्कुल, मेहनत तो जारी रहती है हर समय। तो जैसे कि बहुत सारी आपको महिलाएं इस समय सुननी हैं और बहुत सारी बालिकाएं भी आपको सुननी होंगी, जो पढ़ाई अपनी है जो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, है ना, इंटर में छोड़ देते हैं या कुछ तो 10th क्लास में भी छोड़ देती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, चाहे खुद काम करें, मगर आज के जमाने में जो भी स्त्री लेडीज हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई के लिए जो कुछ भी कर मिले वो करें, क्योंकि हमने भी एक एक पैसा जोड़ के अपनी पढ़ाई शुरू करी है, करी है अपनी।
0: जी। तो जैसे बहुत से लोगों का एक ये रहता है ना कि बालिकाओं के लिए कि पढ़ लिख के करना है क्या है, शादी तो करनी है और शादी करके घर चलाना है, तो इस सोच को लेकर काफी हद तक जो है वो पढ़ाई जो है वो रह जाती है पीछे खास तौर से। तो आप इस चीज के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: लिख के करना क्या है, आजकल पढ़ लिख के ही सब कुछ करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शादी के बाद ये सोचते हैं कि लड़की करेगी क्या, ये तो काम धाम ही करेगी,
0: जी
1: मगर जो उस जो अगर इंडिपेंडेंट अगर लड़की रहेगी तो वो किसी पर निर्भर नहीं रह सकेगी, अपना कमाएगी अपना खाएगी, इस चक्कर में पढ़ाई बहुत जरूरी है। मतलब शादी भी जरूरी है मगर इससे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है।
0: तो पढ़ाई ये है कि पढ़ाई हाँ जारी रखनी है। तो जैसे बहुत बहुत सारे जो इस समय बालिकाएं आपको सुन रही हैं, जैसे घर पे से उनका दबाव रहता ही है कि क्या ही करना पढ़ के, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं? क्योंकि आजकल तो देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, कई सारी ओपन यूनिवर्सिटीज भी हैं जिन्हें आप एडमिशन लेके वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, रेगुलर नहीं तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर
1: तो
0: सकते हैं।
1: प्राइवेट कर सकते हैं,
0: जी जी
1: अगर जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, यूट्यूब है, बहुत से ऑनलाइन माध्यम है, प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हैं, उससे भी पढ़ाई हो सकती है। अगर जो पढ़ना चाहता है सच में तो उसके लिए बहुत ऑप्शन है, घर बैठे पढ़ाई भी हो सकती है अगर जिसे सच में ही पढ़ना है।
0: तो ये तो है। तो आप जैसे आईटीआई का आपने कोर्स लिया है, इसमें बहुत सारे शायद आपको देखते होंगे कि बालिकाएं वो नहीं आती हैं इस वाले कोर्स में, तो कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या कोर्स, अगर कोई सुनना हो तो एडमिशन लेना हो उसको, तो क्या फायदा होता है इससे?
1: ये कोर्स करने से लड़कियों को कंप्यूटर सीखने में मदद मिलती है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का काम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कहीं भी वेबसाइट, अगर नौकरी भी करने जा रहे हो सब चीज कंप्यूटर से है, इसलिए इस कोर्स से आप लोगों को कंप्यूटर सीखने में बहुत मदद मिलेगी
0: तो ये है कि सभी से हम
1: और
0: कहेंगे
1: नौकरी
0: कि
1: मिलने के भी चांस बहुत मिलेंगे प्राइवेट
0: जी, आज के समय में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो,
1: में।
0: सभी में ही आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर है वो बहुत जरूरी हो गया है ना, हर चीज तो आज कंप्यूटर पे ही हो गई है। तो अगर हम मोबाइल चलाना सीखते हैं तो कंप्यूटर चलाना भी सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए
1: आजकल
0: आपसे,
1: पेमेंट भी सब ऑनलाइन हो रहा है।
0: बिल्कुल सब कुछ डिजिटल हो गया है ना, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो चलते चलते कुछ और आप कहना चाहेंगी आज आप बात कर रहे हैं तो?
1: मैं बस यही कहना चाहती हूँ सभी लड़कियों से, पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए।
0: ये तो है। और कहीं अगर लग रहा है थोड़ा कि आर्थिक परेशानी आ रही है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप है आजकल तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं है ना जिससे स्कॉलरशिप भी मिलती है।
1: हाँ, अगर पढ़ाई अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, स्कॉलरशिप भी आती है उसकी सहायता से, बहुत अगर पढ़ने में अच्छे तो स्कॉलरशिप जरूर मिलती है।
0: जी। तो यानी कि बस मन से है अगर आप करना चाहते हैं तो। देखो इतनी सारी महिलाएं, देखो हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम राष्ट्रपति जी वो भी देखो एक महिला ही है ना, और जो राज्यपाल हैं वो भी महिला ही हैं, तो आजकल महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, आज तो चांद पर भी जा रही हैं, है ना। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब कोई हजारों फीट ऊपर काली रात, तेज हवाओं और खतरों के बीच भारत के आसमान पर पहरा दे रहा होता है और

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब कोई हजारों फीट ऊपर काली रात, तेज हवाओं और खतरों के बीच भारत के आसमान पर पहरा दे रहा होता है, और आज का दिन उन्हीं जाबाजों के नाम है। 8 अक्टूबर को आज मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना सिर्फ लड़ाकू विमानों या फिर हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों का नाम नहीं है, ये उस हौसले का नाम है जो कहता है मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आसमान कितना भी ऊंचा हो, अगर देश की बात आएगी तो हम हर ऊंचाई पर अपने देश की रक्षा करेंगे। दोस्तों, जब कोई फाइटर जेट आसमान को चीरते हुए निकलता है तो जमीन पर खड़े हम लोगों को शायद सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस कॉकपिट के अंदर बैठा एक जवान अपने साथ सिर्फ विमान नहीं उड़ाता, उसके साथ भरोसा होता है 140 करोड़ भारतीयों का। दोस्तों, आज हम इंडियन एयरफोर्स डे मना रहे हैं तो हमें उन वीरों को भी याद करना चाहिए जो ड्यूटी पर लौटकर अपने घर नहीं आ सके, उन वीर जवानों को याद करना चाहिए जो आज भी पूरे देश की ओर से अपनी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे जवानों को नमन है। दोस्तों, आज के दिन भारतीय वायुसेना भव्य परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करती है। इस बार भी इंडियन एयरफोर्स डे का ये भव्य शौर्य उत्सव गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर मनाया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है, तो देखो, आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर 1932 को ही वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना है, उसकी स्थापना हुई थी, और इसलिए ये दिन आज के दिन खास है और मनाया जाता है। तो आप सभी को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और याद रखिए, ये फौजी हैं वो देश की धड़कन है।

धड़कन है। श्रोताओं, तो कार्यक्रम में बस इतना ही, यूं ही आप सुनते रहिए कार्यक्रम युवाणी। अब आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नयाब लेकर। अपना बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युववाणी, वैभव के साथ प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी, रविंद्र कुमार और श्यामा सक्सेना के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा
2: और भैया रघु की राम राम।
1: रघु भैया देखो खेतीबाड़ी की बातें तो करेंगे, उससे पहले हम बता दें अपने साथियों को कि वे तैयार हो जाएं खेतीबाड़ी की ऐसी जानकारी के लिए जो हमारे साथियों के लिए खेत की मेहनत को बेहतर पैदावार में बदलने में मदद करेगी।
2: बिल्कुल।
1: और देखो रघु भैया, खेतों की मेड़ से लेकर गन्ने की कतारों तक मौसम के बदलते मिजाज के साथ खेती के काम भी बदलते रहते हैं। कहीं धान की फसल पकने को तैयार है तो कहीं गन्ने के खेत किसान भाई की मेहनत की कहानी कह रहे हैं। तो रघु भैया, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताओगे आपके खेत में कौन कौन से आजकल काम हो रहे हैं।
2: देखो क्षमा बहन, हमारे धान पक गए तो हमने उनकी कटाई करवा ली और उनको घर ले आए। और दूसरी बात यह है कि हमने जो गन्ना की फसल है बाकी देखभाल कर रहे हैं। वैसे तो जा है कि उसमें इस समय कोई सस्य कार ना कर रहे हैं, बस देखभाल है सुबह शाम खेत की। और दूसरी बात यह है कि अब बरसीन वगैरह बोन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पशु हैं उनके लिए चारा की व्यवस्था करनी है।
1: बिल्कुल।
2: तो क्षमा बहन, बातचीत तो करेंगे, सवाल का पूछ रही हूँ आज।
1: रघु भैया, आज को सवाल है राइजोबियम कल्चर किन किन फसलों के काम आता है। तो जा सवाल को जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में बतावेंगे, तब तक हमारे साथी सुनते रहे हमारा कार्यक्रम किसानवाड़ी।
2: तो बिल्कुल, देखो क्षमा बहन, बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है जिनको फायदा हमारे किसान भैया तक पहुँचे। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
1: हाँ रघु भैया, जा योजना का मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचाना और खेती में पानी का सही किफायती इस्तेमाल बढ़ाना। जा के तहत सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है।
2: बिल्कुल। और देखो जा में कहा है कि किसान भैया के खेतन में पानी तो पहुंचेगा ही क्षमा बहन, और पानी की बचत भी होगी। जो प्रणाली है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की, जैसे पानी की काफी बचत होगी। कहन को मतलब जो है जहां जरूरत है वहां पानी पहुंचेगा।
1: बिल्कुल रघु भैया। तो रघु भैया, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाई देते हैं अपने साथियों को आज की भेंट वार्ता। आज हमारी भेंट वार्ता को विषय है हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन में उद्यमिता के अवसर, और जय विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अंजू काला, और आपसे अपने सटीक प्रश्नों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं जय भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज इस कार्यक्रम में बहुत ही जरूरी विषय रखा गया है, वो है हाइड्रोपोनिक्स। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आज का विषय इसी पे है, हाइड्रोपोनिक्स उद्यमी गतिविधि के तौर पर किस तरह से आप इसको बिजनेस के रूप में अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, ये आज का विषय है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अंजू काला जी को, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पशु पोषण विभाग IVRI बरेली में। बहुत बहुत स्वागत है मैम।
4: धन्यवाद।
3: तो सबसे पहले तो मैम, हमारे श्रोताओं को यही जिज्ञासा होगी कि ये हाइड्रोपोनिक्स क्या है और ये जो हम पारंपरिक खेती चली आ रही है भारत में उससे कैसे अलग है।
4: देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का अगर आप सिंपल से शब्दों में अर्थ जानना चाहें तो ये है बिना मिट्टी की खेती।
3: अच्छा।
4: तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है जिसमें कि फसलों को मिट्टी के बिना सिर्फ पानी और आवश्यक तत्व के घोल से उगाया जाता है।
3: अच्छा।
4: जो पारंपरिक खेती होती है उसमें पौधों की जो वृद्धि होती है वो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर होती है कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, मौसम कैसा है, बारिश कैसी हो रही है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि अगर आप तापमान, नमी और प्रकाश जैसी कारकों का ध्यान रख सकें और उनको कंट्रोल कर सकें तो तब आप बहुत ही कम जगह और बहुत ही कम पानी में साल भर फसल उगा सकते हैं।
3: ये बात है, तो जाहिर सी बात है, और अपने देश में जो कि कृषि प्रधान देश माना जाता है और उसी पे पूरी हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, तो इसमें ये हाइड्रोपोनिक्स जो है एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया माना जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों माना जा रहा है, क्या खासियत है इसकी?
4: जी, इस समय भारत में हाइड्रोपोनिक्स को ज्यादा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर आप वर्तमान समय में देखें तो भारत के सामने दो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें से एक है कि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो घट रही है और दूसरा है कि पानी की कमी हो रही है। तो इन दोनों की दोनों चुनौतियों को अगर आप देखें तो हाइड्रोपोनिक

0: इसका एक माकूल जवाब है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक्स में पारंपरिक खेती जो है हमारी, उससे 90% कम पानी का इस्तेमाल होता है, और जब आप वर्टिकल फार्मिंग करते हैं तो बहुत ही कम स्थान पर आप बहुत अच्छी लागत की फसल जो है कई गुना उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों में क्योंकि लोगों का अब परचेजिंग पावर जो है, खरीदने की शक्ति बढ़ गई है, तो लोग क्या चाहते हैं कि अच्छा ताजा और कीटनाशक मुक्त सब्जी की मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और लोग इसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार। इससे क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सीधी उपभोक्ता और जो प्रीमियम बाजार हैं, जहाँ की आप अच्छे रेट पर अपने सामान को बेच सकते हैं, वहां तक पहुंच मिल सकती है।
1: अब इसमें बात आती है कि मैम, अगर किसी को शुरुआत करनी है हाइड्रोपोनिक्स खेती की, कोई भी युवा है बिजनेस करना चाहता है, तो पहले तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा चाहिए होगा, कितनी जमीन चाहिए होगी, और भी क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी?
0: अगर कोई हाइड्रोपोनिक्स को निवेश की तरह से शुरू करना चाहता है तो ये इस बात पर निर्भर होगा कि जो व्यावसायिक स्तर क्या होगा। जैसे हम दो तरीके के व्यावसायिक स्तर की बात कर सकते हैं। एक है छोटे स्केल के प्रोजेक्ट जिनको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट।
1: अच्छा।
0: उसमें जो लागत होगी वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक होगी। और एक जो स्केल होता है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल स्केल की, एक बार आपको समझ आ गया कि बिजनेस किस तरीके से चलता है, आपने अपने उपभोक्ता बना लिए हैं, उसके बाद जो आप कमर्शियल स्केल पे जा सकते हैं, इसमें जो लागत आती है वो 15 लाख से 50 लाख या उससे ऊपर की भी हो सकती है। तो ये 2 स्केल हैं। तो अगर हम बुनियादी जरूरतों की बात करें कि अगर कोई उद्यमी हाइड्रोपोनिक शुरू करना चाहता है तो क्या चीजें होंगी जो उसको चाहिए होगी, तो ऐसी बुनियादी जरूरतों में क्या क्या होगा, एक तो पॉली हाउस होगा, ग्रीन हाउस का फ्रेमवर्क होगा, पीवीसी पाइप्स होंगे और ग्रोअर ट्रेज होंगी, वाटर पंप होंगे, उसके अलावा पोषक तत्वों का जो घोल आता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मिक्स, पीएच मीटर और एलईडी लाइट्स, ये सब चीजें हैं जो कि बुनियादी जरूरतों के तौर पर चाहिए होंगी।
1: तो इसमें सरकार से भी कुछ सहायता मिल रही, कोई सब्सिडी मिल रही हो या फिर लोन मिल रहा हो?
0: हाँ जी, अगर हम सरकार से सहायता की बात करें तो भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसमें कि वो सब्सिडी को देती है।
1: जी।
0: 2 अलग अलग मिशन है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो है MIDH जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और दूसरा है RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें गवर्नमेंट जो है ग्रीन हाउस के लिए शेड नेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके निर्माण के लिए 35 से 50% तक की सब्सिडी देती है, कितना आपका लोन अमाउंट है उसके हिसाब से। और इसके अलावा बहुत सारी राज्य सरकारें हैं और नाबार्ड हैं जो कि वित्तीय अनुदान देते हैं, आप उनके पास प्रपोजल लेके जा सकते हैं, तो वो कुछ परसेंट जो है लागत का जो होता है सब्सिडी के तौर पर देते हैं।
1: अब मान लीजिए किसी ने सेटअप कर लिया और जमीन भी डिसाइड कर ली और वित्तीय सहायता भी मिल गई, अब ये डिसाइड करने का बनता है कि कौन सी फसल उगाई है और उसमें भी बेस्ट कौन सी रहेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, क्योंकि हमारे किसान भाई मुनाफे पे ध्यान देते हैं, उसके बिना कैसे चलेगा?
0: बिल्कुल, व्यवसाय का मतलब ही है कि मुनाफा होना चाहिए। तो अगर हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात करें तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे कि बहुत अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि मुख्यतः जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको उगाया जाता है, और साथ में जो उच्च मूल्य के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है, तो मुनाफा ज्यादा बनता है।
1: जैसे अगर
0: हाँ
1: तुलसी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी।
0: जैसे अगर हम पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो जनरली जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में उगाई जाती है, लेटस है, पालक है, केल है, आजकल इनका सलाद जो है बहुत ही लोगों को पसंद होता है, और अगर ये ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छे मतलब कीमत पर इनको बाजार में जो है बेचा भी जा सकता है। और अगर आप जड़ी बूटियों की बात करें, जो मैं मेडिसिनल प्लांट्स कह रही थी, तो उसमें जैसे तुलसी है, ओरिगेनो है, पुदीना है, ये सभी हाइड्रोपोनिक्स में उगा सकते हैं। फल सब्जियों की बात करें तो स्ट्रॉबेरी है, चेरी टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, ये सभी हाइड्रोपोनिक्स में उगाया जा सकता है। इनमें से अगर आप ये कहें कि सबसे ज्यादा मुनाफा, तो चेरी टमाटर, तुलसी, अश्वगंधा, लेटस, ये जो आपने कहा है इनसे मुनाफा बहुत अच्छा।
1: और ये अपने रुहेलखंड का जो एरिया है बरेली और आसपास, यहाँ के हिसाब से कौन सा है?
0: बिल्कुल, यहाँ के हिसाब से चेरी टमाटर है, लेटस है, तुलसी है, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं,
1: बहुत अच्छे
0: हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए।
1: तो अब एक तो ये है कि इन फसलों के लिए कोई भी अगर युवा आदमी चाहते हैं तो पहले तो उनके अच्छे बीज जो है वो आप लोगों से ले लें, है ना
0: जी।
1: उसके बाद जमीन तैयार कर ली, फसल भी लगा ली, लेकिन कई बार बहुत सारी

0: समस्याएं आने लगती हैं। तो इनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं कि उन समस्याओं का निदान करना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना होगा।
1: जी जी,
0: मुख्य रूप से क्या समस्याएं आती हैं?
1: ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक बार आपने हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा फसलें उगा ली तो उसके बाद उसके लिए मार्केट का इंतजाम आप किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम नए उद्यमियों के सामने चुनौतियों की बात करें तो मुख्य चुनौती क्या होती है कि शुरुआत में जो आपकी पूंजी खर्च होती है वो उच्च होती है। जैसे 5 लाख का अमाउंट भी, जैसे किसी के पास अगर धन मान लीजिए नहीं है, उसको कहीं से अरेंजमेंट करना है और उसके बाद में इसमें उतरना है, तो वो भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए इसकी शुरुआती पूंजी होती है उच्च, लेकिन एक बार अगर आप इसमें उस चीज को सब्सिडी से या किसी चीज से उस चीज को अगर आप ध्यान रख पाए तो उसके बाद जो है चीजें आसान हो जाती हैं। शुरुआती पूंजी किस चीज में जाती है? वो जाएगी आपके पॉलीहाउस और ऑटोमेशन में, जैसे पानी का स्प्रिंकलर है, बाकी चीजें, न्यूट्रिएंट का मिक्स है, उस सब में जो है शुरुआती उच्च पूंजी जा सकती है। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो है तकनीकी ज्ञान। हमें इसके बारे में सबसे पहले, अगर आप हाइड्रोपोनिक्स को शुरुआत करना चाहें तो पहले आप उसके बारे में 1-2 महीने ज्ञान अर्जित कीजिए, उससे पहले शुरू मत कीजिए। पहले आप जानिए कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना, और एक बार जब मेरे पास हाइड्रोपोनिक फसल आ जाएगी तो मुझे किस मार्केट को, किस कंज्यूमर को टारगेट करना है। ये सब चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट
0: है। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आईवीआरआई आ जाए।
1: आईवीआरआई भी आ सकते हैं
0: या ट्रेनिंग सेंटर चलता होगा।
1: आईवीआरआई में समय समय पे अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। बिल्कुल, आप आईवीआरआई की वेबसाइट पे अगर देखें तो समय समय पे चलता रहता है। उसके अलावा इस समय तो इंटरनेट जो माध्यम है हमारे पास, इससे आपको बहुत सारा अच्छा तकनीकी ज्ञान मिल सकता है। तो तकनीकी ज्ञान में इम्पोर्टेंट है कि हमें पीएच के स्तर के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पोषक तत्वों का सटीक अनुपात क्या हो, इस सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा खर्च ना करके बिल्कुल ऑप्टिमम अमाउंट में इन सब चीजों की लागत से अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बाजार तक पहुंच। क्योंकि एक बार आपके पास उत्पाद आ गया तो निरंतर बाजार की आवश्यकता आपको है। अब ये समस्याएं हैं, इनके अगर हम समाधान की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो शुरुआत के लिए उद्यमी क्या कर सकते हैं कि छोटे स्तर पे सबसे पहले ज्ञान अर्जित करें, फिर पायलट स्केल पे उसको चलाएं छोटे स्तर पे। जब पायलट स्केल पे चलाएंगे तो फिर उसके बाद आपके पास जो प्रोड्यूस आएगा, जो आपके पास फसल आएगी, फिर उसके लिए आप मार्केट ढूंढेंगे। तो उसके लिए आप बायर टू बायर, B2B अप्रोच होता है, जिसमें कि आप डायरेक्टली होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट को टारगेट कर सकते हैं और उनको अपना प्रोड्यूस सीधे सीधे बेच सकते हैं अच्छी लागत पे। उसके अलावा एक अप्रोच होती है D2C, जो हम कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब जो उपभोक्ता है, सीधे सीधे आप अपना सप्लाई सरकारी सब्सिडी में या इंडिविजुअल उपभोक्ताओं को, जैसे IVRA है। IVRA में इतने सारे वैज्ञानिक काम करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेके आता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है। तो इस तरीके से, मतलब सबसे पहले आप ज्ञान अर्जित करें, फिर पायलट स्केल पर चलाएं, फिर एक बार जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए खुद पे कि अब मैं कर सकता हूँ, तो आपको बड़े स्केल पे जाना चाहिए।
0: जी, और उसमें तो जैसा कि आपने बताया, औषधीय फसलें हैं, अश्वगंधा, तुलसी, इनकी तो डिमांड
1: बहुत डिमांड
0: बहुत इंटरनेशनल लेवल
1: पे, जी जी बिल्कुल,
0: दूसरे देशों में भी है। और इस भेंटवार्ता के आखिरी दौर में अगर आप कुछ हमारे किसान बहन भाइयों को संदेश देना चाहें, इस हाइड्रोपोनिक्स या जो भी खेती किसानी आजकल वो कर रहे हैं,
1: किसान बहनों भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगी कि ये समय तकनीक का है
0: जी।
1: आप जो भी करें, जो परंपरागत खेती आप कर रहे हैं उसके साथ में नए ज्ञान को भी मिलाइए। आप YouTube पर चले जाइए, IVRA के बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, तो पहले आप ज्ञान अर्जित करें, उसमें से जो भी चीजें आपको लगता है कि मैं अपने परंपरागत खेती में या पशुपालन में जोड़ सकता हूँ उसको जोड़ें, आपको निश्चित रूप से फायदा हो, लेकिन पहले आपको करके देखना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, सबसे जरूरी है ज्ञान, वो भी तकनीकी ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञानार्जन करिए, और हमारे आकाशवाणी के माध्यम से समय समय पर कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं इससे संबंधित। फिर भी कोई समस्या हो तो आप IVRA बरेली से संपर्क भी कर सकते हैं, और जहां तक बताया आपने कि ट्रेनिंग होती है समय समय पर, ट्रेनिंग जरूर लें, ताकि अगर प्रशिक्षित होकर आप काम करेंगे तो आपका नुकसान बहुत कम हो जाएगा। तो डॉक्टर अंजू काला जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को हाइड्रोपोनिक्स से जुड़ी हुई इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: धन्यवाद।
2: अब हमारे भैया बहन सुन रहे भेंट वार्ता, हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन में उद्यमिता के अवसर। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर अंजू काला और आपसे बातचीत कर रहे भैया।

0: मिथिलेश श्रीवास्तव।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: और आज हमारे कार्यक्रम में सफल कृषक के अंतर्गत सुनवाई रहे हैं हम अपने साथियों को भेंटवार्ता, विषय है फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में सफाई, और जाय विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री राजपाल, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया रविंदर कुमार।
0: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री राजपाल जी को, जो कि कृषक हैं और काफी समय से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और आज हमारी बातचीत का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों की सफाई। राजपाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
0: राजपाल जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या होगी?
5: हमारी उम्र लगभग 42 वर्ष है।
0: अच्छा, खेती का काम कब से कर रहे हैं?
5: खेती का काम काफी समय से ही कर रहे हैं। खेती का काम, खेती से लगाव शुरू से ही रहा है।
0: अच्छा, तो कौन कौन सी फसलें आप अपने खेतों में करते हैं?
5: हम अपने खेतों में गन्ना है, धान है फिलहाल में, हाँ, इसके बाद गेहूं और मटर ये फसलें करते हैं, सरसों वगैरह भी है।
0: तो सभी तरह की फसलें करते हैं, दलहनी फसलें भी करते हैं, मसूर करते हैं?
5: हाँ, मसूर भी करते हैं।
0: तो जैसे हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन का, तो आपने देखा है अभी समय धान की कटाई चल रही है
5: जी,
0: तो कुछ लोग तो हाथ से कटाई कराते हैं
5: जी, जी।
0: कुछ लोग कंबाइन से कराते हैं, तो ऐसे में उनके जो अवशेष बचते हैं उनका कैसे आप करते हैं समाधान?
5: इसका ये है, क्यों पराली जलाने से तो नुकसान है, क्यों खेत में जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाएंगे, जो इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी
0: जी,
5: और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिससे आने वाली फसल को काफी नुकसान होगा
0: जी।
5: इसलिए उसका प्रबंधन यही है, एक मशीन आती है, उससे या तो उसी में कटवा दिया जाता है, या अपने हैरों से जुताई करके उसी में मिलवा दिया जाता है, खान दिया जाता है।
0: तो इसके लिए मतलब रोटावेटर चलाते हैं या हैरों से कटवा दिया जाता है?
5: पहले हैरों, उसके बाद रोटर।
0: तो इससे क्या जो पराली है वो उसी में मिट्टी में मिल जाती है?
5: हाँ, मिट्टी में मिलकर जो भी सूक्ष्म जीव है वो भी नहीं मरते हैं, और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाती है।
0: ऐसे में क्या है कि देखो, सरकार ने भी रोक लगा रखी है कि मतलब जो है हमें पराली को नहीं जलाना है
5: जी।
0: और देखिए, उससे आपने जो बताया कि एक तरफ तो जो जीव होते हैं, मित्र कीट होते हैं, वो नष्ट हो जाते
5: हैं,
0: दूसरी तरफ पर्यावरण भी बहुत प्रदूषित होता है।
5: इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि हम जब पराली जलाएंगे तो उसका धुआं होगा, धुआं होगा वो वायुमंडल में फैलेगा, इससे प्रदूषण भी होगा और इससे मानव जीवन को भी नुकसान काफी पहुंचेगा।
0: बिल्कुल, तो ऐसे में ये है कि किसानों को जो पराली है वो नहीं जलानी चाहिए। अब बात करते हैं जैसे खेतों की साफ सफाई
5: जी,
0: तो अब जैसे धान की कटाई हो गई, आपने बताया कि जुता देंगे वो कर देंगे, और जो साफ सफाई जो खरपतवार होते हैं उनकी किस तरह से साफ सफाई करते हैं?
5: उनकी साफ सफाई नरवा के उनको एक तरफ गड्ढे में डलवा दिया जाता है, जिससे उसकी कंपोस्ट यानी देसी खाद भी बन जाती है। वहीं पर ये समाधान देखा है कि वहीं पर गड्ढा एक बना के जो घास वगैरह है उसको एकत्रित करवा के उसी में डाल दें, जिससे वहां की साफ सफाई भी हो जाती है और कंपोस्ट अपनी जो देसी खाद है उस वो भी बन जाती है।
0: तो ऐसे में ये है कि जो कंपोस्ट खाद है, जो देसी खादों का प्रयोग है खेतों में, वो भी हम कर सकते हैं इसके माध्यम से?
5: जी, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं।
0: देखिए राजपाल जी, आप खेती काफी समय से कर रहे हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि जो खेतों के लिए सबसे अच्छी खाद है वो कौन सी कहलाती है?
5: सबसे अच्छी खाद अपने देसी गोबर की खाद है, जानवरों की गोबर की खाद है, हरा ढेंचा है उसकी हरी खाद बन जाती है
0: जी।
5: जैसे वो बो देते हैं इंद्रों में, उसे जुतवा दिया जाता है, तो इससे और बेहतर तकनीक से यानी हमारी उर्वरा शक्ति भूमि की बढ़ जाती है।
0: तो अब जो लोग ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग कर

0: हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे खेतों की मिट्टी भी तो खराब हो रही है।
1: हाँ, उससे मिट्टी भी खराब हो रही है और जो रासायनिक खादों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि उन खादों की जगह हम लोग देसी खाद का अधिक उपयोग करें, जिससे हमारी जमीन की आने वाले समय में जो शक्ति है वो क्षीण नहीं हो पाए।
0: बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अगर हम देसी खादों का, हरी खादों का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहेगी और जो भूमि की मृदा है वो भी सुरक्षित
1: हाँ,
0: रहेगी।
1: वो भी सुरक्षित
0: तो
1: रहेगी।
0: अब हम जानना चाहते हैं कि आपके धानों की कटाई हो गई?
1: हाँ, धानों की कटाई हो गई लेकिन कुछ खेत भी रह गए हैं जहाँ पानी भर गया है। इस समय किसान यानी अधर में लटका हुआ है,
0: जी
1: क्यों? उसकी फसल पूर्ण रूप से घर पे आई नहीं है, बारिश की वजह से पानी में ही अधिकांशतः धान खड़े हुए हैं। एक खेत में तो हमारे धान जम भी रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं,
0: अच्छा, क्योंकि खेतों में पानी भरा है।
1: पानी भरा है।
0: तो ऐसी स्थिति में क्या किसान भाई कर सकते हैं अब?
1: ऐसी स्थिति में अगर सरकार इस पे नजर डाले तो किसानों को देखकर उनकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो राजपाल जी, देखिए अब ऐसा है कि रेडियो के माध्यम से आपकी बात बहुत लोगों तक पहुंचेगी और हो सकता है कि सरकार इस बात का संज्ञान ले, और ऐसा सुना भी जा रहा है कि सरकार ने शायद आदेश दिया है कि कुछ जो नुकसान है उसका आकलन किया जाए और मुआवजे का कोई प्रावधान बने। तो
1: जी
0: ये आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें अपनी फसल को उठाना है।
1: जी
0: ऐसे में जो फसल अवशेष प्रबंधन है, अब ये तो अपने बात की धान की जो पराली है उसकी, इसी तरह से गन्ना जो होता है उसकी भी पताई, क्योंकि आने वाले समय में गन्ने की छिलाई
1: जी
0: शुरू हो जाएगी, तो उसकी पताई के जो अवशेष होते हैं उनका कैसे प्रबंधन करते हैं किसान भाई?
1: उसका अब तो यही है कि इकट्ठे जलाएंगे तो फिर वही बात है, लेकिन उसको इकट्ठी करा के एक जगह बांध दिया जाता है। बांध के अब तो एक मशीन भी आ रही है जो गट्ठर बना देती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो गट्ठर बना के वो अपने बिक भी जाते हैं, नहीं तो अपने वही है, गड्ढे में उसको डाल दो, सड़ गल के फिर खाद बन जाएगी।
0: कई बार किसान भाई ऐसा भी तो करते हैं कि जो नौलख है उसकी जो पताई है उसी खेत में फैला देते हैं, और फिर
1: हाँ
0: उसमें आगे जब सिंचाई करते हैं तो वो उसी में गल जाती है और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती
1: हाँ
0: है।
1: ये भी है, जैसे हाँ नौलख जो है तो उसमें जो पताई है फैला देते हैं, और इससे क्या है खेत में नमी भी बनी रहती है और उसकी खाद भी बन जाती है।
0: अच्छा, कुछ ऐसे डिकम्पोजर भी अब मार्केट में आ गए हैं जिनको डालने के बाद जो हमारे जो फसल अवशेष हैं
1: जी
0: उनको हम खेतों में ही निष्पादित कर देते हैं, गला देते हैं।
1: जी
0: तो ऐसे कुछ जो डिकम्पोजर हैं उनका प्रयोग किसान भाई करते हैं प्रयोग?
1: हाँ, कुछ किसान भाई अवश्य करते होंगे। हम
0: तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे जो किसान भाई हैं
1: जी
0: कई बार अज्ञानता में पराली जला देते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आज रेडियो के माध्यम से?
1: हम आज यहाँ आकाशवाणी में रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं पराली जला देते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान रखें कि थोड़े लालच में आकर के काफी भविष्य में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पराली नहीं जलाने चाहिए, इससे हमारा वायु प्रदूषण भी होता है और इससे कई प्रकार की बीमारियां, सांस रोग भी हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रदूषण को भी बचाना है और मृदा को भी बचाना है, इसलिए पराली हमें नहीं जलानी चाहिए, उसका कोई एक्स्ट्रा प्रबंधन अवश्य करना चाहिए।
0: अब बात करते हैं जैसे अभी जो कुछ समय पहले बरसात हुई, कल जो बरसात हुई, ऐसे में गन्ने की आपने बताया, गन्ने की भी आप खेती करते हैं, तो गन्ने की फसल की क्या स्थिति है और उसमें किसान भाई किस तरह से नुकसान को बचा सकते हैं?
1: उसमें गन्ने में तो यही प्रबंध हो सकता है, अभी बंधवाया है उस गन्ने को और दोबारा अगर गिरता है तो उसे बंधवा दिया जाता है।
0: जी,
1: यही है, गिरने से बचा लिया जाए गन्ने को,
0: तब अपनी गन्ने की जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी।
1: सुरक्षित रहेगी।
0: अब बात करते हैं, कई बार आपने देखा है कि किसान भाई कहते हैं कि खेती से आमदनी नहीं है
1: जी
0: लेकिन खेती से सब कुछ कर भी रहे हैं। तो चूंकि आप काफी समय से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, खेती के काम से जुड़े हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं खेती के काम को?
1: खेती से यह है, अगर खेती में हम बहुफसली अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो खेती से थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, एक फसल समझ लीजिएगा एक्स्ट्रा हमें बच जाती है।
0: जी
1: जैसे अभी अब सरसों और मसूर ये दलहनी फसल आने वाली है, दलहनी तिलहनी, तो इसमें गन्ना भी हम बो सकते हैं और गन्ने के साथ साथ में हम सरसों भी बो सकते हैं और मसूर भी बो सकते हैं, जिससे हम दो फसली सह फसली इसको उत्पादन हम कर सकते हैं।
0: जैसा कि राजपाल जी वैज्ञानिक भी बताते हैं कि अगर हम एक फसल के साथ दूसरी फसल लेंगे तो जो हमारी गन्ने की फसल है वो लगभग लगभग फ्री में हमारी तैयार हो जाएगी।
1: जी जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: खर्चा है खेती का वो हम दूसरी फसल से ले सकते हैं।

0: जी
1: तो अब शरतकालीन गन्ने की बुवाई भी शुरू हो चुकी है
0: जी
1: राजपाल जी, तो इस संबंध में किसान भाई कैसे बुवाई करें गन्ने की?
0: इस विषय में तो अब थोड़े समय में जब जमीन थोड़ी सही हो जाएगी और इसके बाद जुताई करने के बाद हम लोग गन्ना और लाही भी बो सकते हैं, लैटा भी जो आ रहा है उसको भी बो सकते हैं, जिससे किसान को डबल मुनाफा हो सकता है।
1: जी, तो राजपाल जी आज आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपने फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों की सफाई इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभय हमारे साथियों ने सुनी सफल कृषक के अंतर्गत भेंट वार्ता, विषय हो फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में सफाई, और जय विषय पर जानकारी दे रहे श्री राजपाल और आपसे बातचीत कर रहे भैया रविंदर कुमार।
3: हर जो

0: वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब भोले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और क्षमा बहन, देखो अब कार्यक्रम में समय ही चलो है मौसम की जानकारी को, क्योंकि मौसम में बहुत उतार चढ़ाव है, तो हमारे भैया बहन को इंतजार रहते हैं कार्यक्रम किसान वाणी को, कि किसान वाणी कार्यक्रम में भैया बहन जो आवेंगे वे मौसम की बारे में जानकारी बतावेंगे।
7: बिल्कुल रघु भैया, देखो किसान भाइयों, मौसम का मिजाज एक बार फिर थोड़ा करवट ले दिखाई दे रहा है। बरेली और आसपास के इलाकों में कल आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश या बौछार पड़ने की संभावना है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ऐसे में किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों पर नजर जरूर रखें। जिन खेतों में पानी पहले से रुका हुआ है वहां जल निकासी की व्यवस्था करें और बारिश के बीच खेतों में अनावश्यक सिंचाई ना करें।
6: बिल्कुल।
7: तो भैया जो तो हो कल के मौसम को पूर्वानुमान।
6: और क्षमा बहन, देखो अब स्टूडियो की जो घड़ी है भाभी इशारा कर रही है कि ज्यादा समय ना बचो है, लेकिन चलत चलत बता दो बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो, और फिर बता दो आज के कार्यक्रम की नसीहत।
7: तो भैया आज को सवाल हो, राइजोबियम कल्चर किन किन फसलों के काम आते हैं? तो भैया जाको सही जवाब है, राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गांठे बनाकर नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के काम आते हैं। जा मुख्यतः चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली में काम आते।
6: अब बता दो क्षमा बहन आज के कार्यक्रम की नसीहत।
7: भैया आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलता है, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहें किसान साथी और अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
6: और भैया बहनों, जाही नसीहत के संग आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अपने भैया रघु
7: और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति।
6: भैया बहनों,
7: राम राम।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी। रविंद्र कुमार और क्षमा बहन के साथ प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत में कृषि पाठशाला।
1: जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI, इज्जत नगर, बरेली।
2: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत

0: स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव। आज का विषय बहुत ही नया है। आज का विषय है कि प्राकृतिक प्रजनन हेतु सांड पालन एक पशुधन उद्यमिता का अवसर है। जी हाँ, अभी तक आप गाय और भैंस, बकरी इत्यादि पालन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम कार्यक्रम में सांड पालन के बारे में बताएंगे, किस तरह उसको पशुधन उद्यमिता के रूप में अपनाया जा सकता है और उससे अच्छी आय की जा सकती है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुब्रतो कुमार घोष जी को, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं एनिमल रिप्रोडक्शन विभाग में IVRI बरेली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो सबसे पहले तो सर, कुछ विषय से संबंधित इंट्रोडक्टरी हमारे किसान बहनों भाइयों को जानना जरूरी होगा। हमारे भारत में जो कैटल हैं, कहा जाता है, जो मवेशी हैं, भैंस हैं या सांड हैं, गाय हैं, इन सबकी तादाद कितनी है पूरे भारत में? और उसके बाद अपने बरेली की भी अगर मालूम चले संख्या, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए।
1: हमारा यहीं पे देश में जो हम लोग गाय और भैंस का जो संख्या है वो करीबन 30 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 190 के आसपास गाय है और 110 के आसपास भैंस है। तो इसमें से हम अगर देखेंगे जो हमारा यूपी में जो है बाफलो जो भैंस है वो सबसे ज्यादा है।
0: अच्छा।
1: करीब 30 मिलियन के आसपास है, और जो गाय है वो गाय देश में द्वितीय स्थान पे है, वो करीब 19 मिलियन के आसपास हमारा यहीं पे है। और अगर देखा जाए तो जो टोटल जो हम लोग जो कह रहे हैं कितने गाय भैंस है, उसमें से जो गाय में फीमेल है, मादा है, वो करीब 140 मिलियन के आसपास है, और जो भैंस है वो करीब 50 के आसपास जो फीमेल है। तो हमारा संख्या बहुत ज्यादा है, जो गाय और भैंस मिला के करीब 200 मिलियन के आसपास हमारा पास मतलब मादा पशु है।
0: जी जी, तो इतनी सारी संख्या है अपने देश में, और अब इस समय अब देखा जाए इतनी बड़ी तादाद है। और एक तो प्राकृतिक रूप से प्रजनन का होता है, दूसरे कृत्रिम रूप से प्रजनन हो, लेकिन हमारे जो समाज है, जो भी पशुपालक बहन भाई हैं, वो किस तरह से प्राकृतिक प्रजनन कराते हैं? या फिर हमारे देश में जो सीमेन का रख रखाव है, खासतौर पे फ्रोजन सीमेन का, उसका प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, क्या सिनेरियो है, इसके बारे में कुछ बताइए सर।
1: ये हमारा यहीं पे जो गाय भैंस पे जो हम कृत्रिम गर्भाधान से ही किया जाना चाहिए, तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम लोगों के पास फ्रोजन सीमेन उपलब्ध है। फ्रोजन सीमेन का जो प्रोडक्शन है, जो बनाते हैं, वो पूरा देश भर में करीब 56 सेंटर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्रीडेट है, उसमें सीमेन प्रोडक्शन होते हैं। सीमेन प्रोडक्शन अगर फिलहाल माने तो 120-125 मिलियन डोज जो फ्रोजन सीमेन स्ट्रॉ वो बनाया जाता है हर साल। जो हमारा पास जो पशुओं में AI मतलब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, वो करीब जो कृत्रिम जो गर्भाधान किया जाता है उसमें से करीब 30-35% ही जो गाय भैंस है उसमें ये कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है।
0: अच्छा।
1: बाकी जो है वो सभी नेचुरल सर्विस जिसको हम कहते हैं उसमें से किया जाता है। तो ये जो हमारा पास सीमेन जो प्रोडक्शन है वो करीब मैंने कहा 120-125 मिलियन का है, लेकिन हम अगर टारगेट देखेंगे हमारा पास जितना पशु है गाय भैंस, उसमें अगर आधा भी हम आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के अंदर लेके आ जाए, तो हमको करीब 140-150 मिलियन इतनी ज्यादा फ्रोजन सीमेन जो स्ट्रॉ है वो बनाना पड़ेगा हर साल।
0: अच्छा।
1: तो बहुत ही कम है हमारे पास अभी, और जो कवरेज है जो हम गाय भैंस में AI कराते वो बहुत ही कम है, 30-35 से ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा काफी संख्या में जो एनिमल्स को हम ब्रीड करते हैं हम जो वो नेचुरल सर्विस से ही किया जा रहा है आजकल, वो करीब 60-70% जो परसेंट एनिमल है वो नेचुरल सर्विस से ही किया जाता है, हो रहा है।
0: तो ऐसे में कितने ये बुल्स यानी कि सांडों की जरूरत पड़ सकती है?
1: तो सांड तो हमारा देश में तो सांड बहुत है, लेकिन जो
0: सड़कों पे
1: बहुत ही मिलता है, लेकिन जो सांड जेनेटिक मतलब बहुत उच्च उनका हेल्दी है, गुणवत्ता जो हेल्दी है, उनका क्या करते हैं, उनका जो माता है उसका जो मिल्क प्रोडक्शन से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो संख्या बहुत ही कम है हमारा देश में। जितने सारी फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर है उसमें से करीब 4000 के आसपास एजेंसी बूल है स्रेप, जो सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें से अच्छा सा सीमेंट प्रोडक्शन
0: सिर्फ 4,000 पूरे इंडिया में,
1: पूरे इंडिया में। और बाकी जो घूम रहे हैं बहुत सारी है, वो जो एक बेसिक क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं वो फुलफिल करें, तब भी हम उस बूल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए

0: एक साहिवाल का जो सांड है, तो साहिवाल सांड जो हम सिलेक्ट करेंगे उनका माता का जो 305 दिन को जिसको हम लैक्टेशन ईल बोलते हैं, उसमें जो दूध है वो करीब 2400 से 3000 किलो पर 305 डेज में होना है, उससे कम हो तो वो हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो
1: अच्छा,
0: इसी वजह से हमारा पास बूलों का संख्या बहुत ही कम है।
1: तो ऐसे में तो अब पूरे देश में इतनी कम संख्या है, तो जाहिर सी बात है जो चीज पूरे देश में कम है उस उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और वो एक व्यवसाय के रूप में भी शुरू हो सकता है। यही आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी है कि चाहे तो कुछ किसान भाई बहन भाई पशुपालक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर ब्रीडिंग के लिए किसी बुल को, सीमेन प्रोडक्शन के लिए सांड या बुल को हम चुनना चाहें कि हाँ भाई इस तरह के बुल को हम सेलेक्ट करेंगे सीमेन प्रोडक्शन के लिए, तो कैसे उनका चुनाव करना है और कब करना है?
0: ये जो बुल सिलेक्शन बुल चुनाव करना होता है
1: जी
0: ये एकदम शुरू में ही कर लेते हैं, जब बच्चे बहुत ही छोटा होता है 4-5 महीने से ही शुरू कर देते हैं हम। वो पहला कदम है उनको माता का जो दूध है उसको देखा जाता है। मैंने पहले भी कहा जो जैसे एक बुल का एक ब्रीड का नस्ल का मैंने उदाहरण दिया जिसमें कहा गया वो 3000 केजी का दूध होगा उनका माता का, उस जिस माता से उन्होंने जन्म लिया है 305 दिन में, तो वही बुल को उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वो सिलेक्शन हो जाए फिर हम उसका अलग से बहुत अच्छा से मैनेज करना पड़ता है, उनको खाना वाना अलग से देना होता है, उनको बड़ा किया जाता है, तो फिर देखा जाता है उनका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो भी एक बाद में अलग क्राइटेरिया आ जाता है। तो इसी हिसाब से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर कुछ हमको पीरियडिकली जैसे 6 मंथ के अंदर अंदर मतलब 6 मंथ का इंटरवल में सबको डिजीज टेस्टिंग कराना होता है, वो भी कुछ
1: अच्छा,
0: स्पेसिफिक
1: डिजीज क्या
0: डिजीज के
1: होती
0: लिए
1: है? अच्छा,
0: टेस्ट कराना होता है। जैसे
1: कौन कौन सी होती है?
0: जैसे डिजीज में हम बोलते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस है, जोन्स डिजीज है, कुछ वायरल डिजीज जैसे IBR बोलते हैं, कुछ जो डिजीज है जैसे पैरासाइटिक डिजीज और ट्राइकोमोनास, ये जो 6 डिजीज वे बुल को फ्री होना है तब भी वो बुल को हम ब्रीडिंग प्रोसेस में लेके आते हैं, चाहे वो फ्रोजन सीमेन प्रोडक्शन पर्पस के लिए है या लिक्विड सीमेन के लिए है, ये नेचुरल सर्विस के लिए, क्योंकि अगर बुल ये सब डिजीज में हो तो पूरे पूरे के पूरे
1: प्रोडक्शन खराब हो
0: प्रोडक्शन
1: जाएगा।
0: में पूरे फैल जाते हैं और बहुत ही खराब है ये, एकदम जल्दी से पूरा फैल जाएगा। तो इसी वजह से जब भी हम बुल सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सब डिजीज को पीरियडिकली 6-6 महीने का अंतर इनको सब टेस्ट करना होता है। वो
1: टेस्ट
0: टेस्ट
1: करना
0: करने के लिए जैसे IVRI में एक संस्था हमारा पूरे की लैब है, पूरे इंडिया से यहीं पे सैंपल आता है, ऐसा
1: अच्छा।
0: बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये बनाया गया है। वो लोग खुद आके बुल को सब टेस्ट कर देंगे, सिर्फ उनको बताना होता है, वो आके सैंपल लेके टेस्ट करके वो बता देते ये बुल ये डिजीज फ्री है या नहीं है।
1: तो ये IVRI से जो चेक करने के लिए जाते हैं टेस्ट करने के लिए,
0: हाँ
1: या बुल को लाना
0: नहीं
1: पड़ेगा?
0: नहीं वो सिर्फ IVRI में एक इन्फॉर्मेशन देना होता है तो IVRI से पूरे टीम जाके उनको सैंपल लेके टेस्ट कर लेते हैं।
1: टेस्ट कर
0: वो
1: लेते हैं।
0: बूल को कहीं नहीं लेके जाना है, बूल तो ऐसे नहीं जा सकते, वो टेस्ट उसी जगह पे जाके सैंपल कलेक्शन करके फिर लेबोरेटरी में लाके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। वो स्पेशली जो हमारा यहीं पे कैडरेट बोल के एक डिपार्टमेंट है वही सब ये सब बूल डिजीज टेस्टिंग किया जाता है उसमें।
1: और किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी, या कोई टीके भी समय समय पर लगवाना जरूरी
0: ये
1: है?
0: टीका लगाना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: टीका
1: जी
0: इसीलिए लगाना, एक जो जिसका हम फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं वो उस डिजीज अगर ना हो इसीलिए हम लोगों को साल में 2 बार FMD जो वैक्सीन
1: अच्छा।
0: सब भी बूल का देना बहुत जरूरी होता है, ये कंपलसरी है उस बूल को या बूल के आसपास पे जितने जानवर होते हैं ये कैटल एंड बाफलो सबको ये वैक्सीन साल में 2 बार देना होता है। अगर FMD हो गया तो सीमेन भी खराब हो जाता है वो बूल भी खराब हो जाता है, तो दोनों ये बहुत जरूरी है वैक्सीन लगाना, ये वैक्सीन तो कंपलसरी लगाना होता है।
1: अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सीमन कलेक्शन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, साल में कितनी बार करना है, या फिर उस दौरान क्या-क्या सावधानियां रखनी है?

0: जनरली जब हम फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं तो एक बूल से हम दिन हफ्ता में 2 बार कलेक्शन लेते हैं और एक दिन में 2 बार कलेक्शन लेते हैं। उसका मतलब हम एक वीक में, एक हफ्ता में एक बूल से 4 कलेक्शन लेके उनको फ्रीज करते हैं। अगर आप इसी हिसाब से कोई नेचुरल सर्विस के लिए भी जाएंगे तो एक बूल को आप देखिएगा बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। उस बूल को हफ्ता में आप मान लीजिए 4 या 5 बार ही उनको ऐसा कीजिए जो वो सर्विस दे सके। अगर उससे ज्यादा सर्विस आप कराएंगे तो बूल वो जल्दी खराब हो जाएगा, तो वे बीच बीच में उनको रेस्ट भी देना होता है। तो इसीलिए जो आइडियल है मतलब 4 या 5 से ज्यादा वीकली नहीं कराए, नेचुरल सर्विस भी नहीं कराए, वो भी दिन में 2 बार मतलब हफ्ता में 4 बार या 5 बार, उससे ज्यादा नहीं।
1: अच्छा, इससे संबंधित कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कुछ कोई योजना चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है सरकार द्वारा?
0: नेचुरल सर्विस या ये जो इसी का तो कोई सच एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनिमल को, ज्यादा गाय भैंस में हम लोग चाहते हैं जो एआई किया जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान किया जाए, वो भी फ्रोजन सीमेन से। ऐसा होता है काफी गाय भैंस बार बार फ्रोजन सीमेन से भी गर्भ नहीं होते है, तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं उसको नेचुरल सर्विस जो है उसमें से कराया जाता है। लेकिन उसमें सावधानी ये रखना है, वो बूल बहुत अच्छा है, जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है भारत सरकार का दिया मानक उसका ऊपर ही है वो, तब भी वो बूल को वो हम यूज करते हैं। उसको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि एक बार कोई बूल जो अगर डिजीज हो गया तो वो बहुत जल्दी से फैला देते हैं पूरा हार्ट में या पूरा गांव में। और इसी हिसाब से ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हम कहेंगे इसमें नेचुरल सर्विस से कॉन्सेप्शन रेट या गर्भाधान का जो परसेंटेज है वो एक्चुअली काफी ज्यादा होते हैं, जो नेचुरल सर्विस से अगर हम फ्रोजन सीमेन यूज करें उससे ज्यादा थोड़ा सा हो जाता है।
1: हो
0: तो
1: जाता
0: उसमें क्या करते हैं हम, किसी में कई बार एआई किए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए, लेकिन कॉन्सीव नहीं किया, तो हम लोग कभी कभार ये बूल का यूज कर लेते हैं, तो क्योंकि इसमें कॉन्सेप्शन रेट जो है वो
1: अच्छे हैं।
0: अच्छे आ जाता है।
1: अब आखिर में ये बात आती है कि अगर किसी को ये सांड का ये करना है, पालन करना है, तो ये कितना फायदेमंद बिजनेस है और किस तरह से इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया?
0: ये जो बूल गांव में अगर कोई रखना चाहते हैं, गांव में आजकल मैंने शुरू में ही कहा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज हमारा जितने मादा पशु हैं जो गाय भैंस उसमें से 30-35% ही कवर होते हैं। तो उसका मतलब तो बहुत ज्यादा जानवर जो है जहाँ पे पहुंच नहीं हो रहा है, भैंस में तो बहुत ज्यादा ही है, उसको बकरा रखा जाता है उसमें से, तो बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि उसमें सब नहीं नेचुरल सर्विस नहीं करते हैं, लेकिन यही पे गाय भैंस में ये थोड़ा सा हमारा, क्योंकि एआई हम प्रमोट करते हैं तो नेचुरल सर्विस उसी जगह पे करें जहाँ पे एआई नहीं पहुंच पाया जिसमें, लेकिन उसमें फायदामंद होगा अगर गांव में अच्छा से मेंटेन करे तो।
1: तो डॉक्टर सुब्रतो कुमार घोष जी, आप सर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण और नई जानकारियां प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर बरेली।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत में कृषि पाठशाला। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। इंदिरा पत्नी महेश निवासी चौपला बगिया टेलीफोन एक्सचेंज के सामने थाना कोतवाली बरेली सूचित करती हैं। केन के पुत्र अमर, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंखें औसत काली, बाल काले, जो काला लोअर और लाल शर्ट, पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। चौपला बगिया टेलीफोन एक्सचेंज के सामने थाना कोतवाली बरेली से 30/8/2026

से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो थाना प्रभारी कोतवाली और आशुतोष शिवम क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम क्षेत्र बरेली को सूचित करें, या फिर इनके मोबाइल नंबर पर भी आप सूचित कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9457663729। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति संबंधित एक और सूचना सुनिए। चंद्रावती पत्नी विद्याराम निवासी ग्राम मियोड़ी जिवाई थाना कैमरी जनपद रामपुर सूचित करती हैं कि इनके पुत्र वीर सिंह, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, एक हरा पतला जिस्म, चेहरा पिचका हुआ है, आंख और बाल काले हैं, जो काली व सफेद बनियान, नीली जींस की पैंट और हवाई चप्पल पहने हुए हैं, जो 2/9/2026 10 बजे ग्राम सिंदौली की गोटिया थाना मीरगंज बरेली से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक थाना मीरगंज जिला बरेली को सूचित करें, या फिर इनके मोबाइल नंबर 9027595324 पर सूचित कर सकता है। खोए व्यक्ति संबंधित सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है विकास। नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दरों में नहीं किया गया बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया, 10,000 रुपये से कम के लंबित नोटिस लिए जाएंगे वापस। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नोएडा में युवाओं को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए कौशल, रचनात्मकता और क्षमताओं के इस्तेमाल का किया आह्वान। और भारतीय वायुसेना

वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ भव्य समारोह, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस आकाश और ध्रुव का हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पुलिस के कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पाने वालों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता शामिल हैं। इनमें नागरिक पुलिस के 43 उपनिरीक्षक, 295 आरक्षी और पीएसी के 132 आरक्षी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में खिलाड़ियों को 200 करोड़ रूपये से अधिक प्रोत्साहन

0: 9 वर्षों में खिलाड़ियों को 200 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि दी गई है। करीब 1000 खिलाड़ियों को पहले नियुक्ति मिल चुकी है और 555 अन्य की चयन प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है।
1: गांव से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जनपद स्तर तक, जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, खेल के मैदान से लेकर के मिनी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम से स्टेडियम और स्टेडियम से इंटरनेशनल स्टेडियम आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं। हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करने की सुविधा हो और उस प्रकार के कोचेज भी हो, उस प्रकार की टीम वहां पर उनके साथ कार्य करती हुई दिखाई देनी चाहिए।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय राजनीति के माध्यम से अपना जीवन सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए समर्पित किया।
2: आजीवन उन्होंने अपने स्वर को भारत की राजनीति के माध्यम से उस सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक दलित और वंचित को न्याय मिले, समाज की मुख्य धारा में उन्हें सम्मान मिले, उचित स्थान मिले और आजीवन उन्होंने अपने संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को एक मंच तक पहुंचाने के लिए कार्य किया।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कर वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है और 10,000 रुपये या उससे कम की मौद्रिक सीमा के लिए नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज नोएडा में एक निजी इंस्टीट्यूट के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संदेश विद्यार्थियों के सामने रखते हुए कहा कि युवा अपना भविष्य ऐसे क्षेत्रों में तलाशें जहां वो आत्मनिर्भर बनने के साथ ही बाकी युवाओं को भी रोजगार दे सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी लंबी अवधि तक निरंतर सरकार का नेतृत्व करना दुर्लभ है।
3: आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एज हेड ऑफ गवर्नमेंट 25 साल मुकम्मल हुए हैं 7 अक्टूबर को। पहले निरंतर 12-12.5 बरस तक मुख्यमंत्री और फिर लगभग उतने ही अवधि के लिए प्रधानमंत्री। मुझे नहीं लगता विश्व में कोई ऐसा और उदाहरण है जहां निरंतर बिना ब्रेक कोई भी व्यक्ति किसी सरकार का मुखिया रहा हो इतने लंबे अंतराल। ये अपने में कीर्तिमान है, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वही हमारे लिए गर्व की बात हुई।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यह यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल ने कैसे युवाओं में परीक्षा का दबाव कम करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते

0: हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और इस तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
1: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
0: गोरखपुर की छात्रा पिंकी ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने न सिर्फ उनके मन से परीक्षा का डर निकाला बल्कि काफी कुछ सिखाया भी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से काफी हमें सहायता मिली है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परीक्षा को लेकर काफी हिचक भी दूर होता है।
0: इस कार्यक्रम के जरिए छात्राओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
3: ने आज वाराणसी में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं के सवाल सुने और शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। श्री नबीन ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हमें उनकी क्षमता को समझना होगा।
4: भारत का युवा पूरी तरह से देश के विकास के लिए काम कर रहा है। देश का युवा पटेगा नहीं, देश का युवा इस देश की ताकत बनकर इस देश के विकास में देश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगेगा।
3: भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान एयर शो में विमानों ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में लड़ाकू विमानों और हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस, आकाश और ध्रुव को भी प्रदर्शित किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एयरफोर्स डे परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम व अनुशासन की सराहना की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम पुणे के पास डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह गोवा में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार और संवेदनशील समाज सेवी पद्मश्री नाना पाटेकर का निधन कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है विकास। नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दरों में नहीं किया गया बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया, 10,000 रुपये से कम के लंबित नोटिस लिए जाएंगे वापस। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नोएडा में युवाओं को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए कौशल, रचनात्मकता और क्षमताओं के इस्तेमाल का किया आह्वान। और भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ भव्य समारोह। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस, आकाश और ध्रुव का हुआ प्रदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम अनुरोध गीत में हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है।

शुरुआत करते हैं इस पहले खत से। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, वीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, प्रदीप पाल नमन, अमान खान और इनके सभी मित्रगण। आपने सुना चाहे फिल्म आप आए बाहर आई का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत है। आनंद बख्शी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फूलबाग किला छावनी बरेली से विशेंद्र दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिवरा, नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। कोटबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्लाह अकरम। राजनाथ गांव से याकूब, आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम, अदीबा और इनके सभी परिवारीजन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और नीवान शर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, घनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्ला आसमा। मौला अलवायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और चांदनी रानी। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये खत हमें भेजा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराज से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे और आकाश कुमार ने। ये खत हमारे पास आया है परी महल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, एई खान। गंजडंडवारा से शमशुल कमर राही, जाहिद सैफी और इनके परिवारीजन और मित्रगण। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी। आप हैं हमारे श्रोता। ये खत हमें भेजा है भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवार के सभी लोग। राजेश सामले पाटिल, राजे दीप, राजेश, राजेश राशि, राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति सामाजी नगर से। रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजय, परी, ललिता नारायण, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आसिफ। आप हैं हमारे श्रोता। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ बैशलब कॉलोनी सनावत से। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैमुनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। सरोज चौक अमरावती महाराज से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सवालिया खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, राऊ भाई, शाहिद भाई। गांधी चौक अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये खत हमारे पास आया है भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कोटबा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और इनके परिवार के लोग। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। तो आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म आप आए बाहर आई का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप कंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 9 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे, और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोता 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला अनुरोध भरा पत्र ये हमारे पास आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, अप मस्तान बाबा और इनके परिवार के लोग, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से सुनीता मेहता रावत, दीपू रावत, बबीता रावत, कोमल मेहता और दिनेश बिष्ट, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या, जयपाल यादव, अनारकली बाजार जगराओं से, आप हैं कस्बा शेरगढ़ ग्राम टांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन नेहा, निदा सना, आलिया मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद कमर इम्तियाज इदरीसी और परिवार के लोग, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, वार्ड नंबर 6 औला बजरिया से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, भूड़ बरेली से रजत कुमार और इनके सभी परिवारीजन, बेलडी से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमकर, जिला बदायूं ग्राम दूनीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सतेंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल संगम विभू, आदर्श आदित्य अमित रेणु कुमकुम नेविया सरिता और अंतिमा, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, कस्बा शीचगढ़ मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, आप हैं सुधाकर राजा यादव, प्रशांत राजा यादव, जागुताई राजा यादव, संचित प्रतिमेश सोहम प्रणाली सानवी, जिला जालना हुन तहसील जाफराबाद से, कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शबी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिब मीना, हाशिम मीना, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, शिव मंदिर हकीकतपुर और मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितिशा कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महराज अंसारी, त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा, शीतल रेड्डी, श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, शंकरपुर पोस्ट उसाबा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, सोनी यादव, अमन यादव, अंकिता यादव, विनीता यादव, अनिता यादव, सूरत श्री यादव और सुनीता यादव, गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, नवै शमशी, रजिया शमशी, राजा बाबू और शमशी परिवार के सभी लोग, गंगवार रेडी श्रोता संघ दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली से ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार, मम्मी पापा, ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से,

अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में। गीत है मजरू का, संगीत एस डी वर्मन का।

फिल्म का नाम है निशान, आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत है गुलशन बाबरा का, संगीत राजेश रोशन का, और फरमाइश की है आप सभी ने कटर चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली, चानों के लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। आभा शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, औश कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार वंशी, लाल रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। लिवई से गुलाब दास, मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा तथा रिंगी से भागवत वर्मा, दौलतबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, वजीरगंज जिला बदायूं से प्रेम कमलवासनी, सुशीला प्रभात, अमरीश सलोनी, सचिन नीरू, देविका, कार्तिक वेदरिचा और ऐश्वर्या कमलवासनी, करेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, पुराना होली चौक ग्राम करघना बरेली से गणेश शर्मा, शगुन, कार्तिक, पवन, युवराज, ईशिता, पंकज, वीर शर्मा, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, चिंकी शर्मा, सूरज शर्मा और इनके परिवार के लोग। तो आइए सुनते हैं निशान फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ में गीत है, मनोज कुमार का संगीत, उत्तम सिंह का। मौला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अवरार भाई, अफजाल भाई और पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम और तबस्सुम। बहड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल और शफक। गाँव चौलहदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, मुस्कान और कुणाल। रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय छावनी, अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू और परिवार के लोग। नकासा रोड सैद बदायूं से मसरूर खान, अमन अब्बासी, सोहेल अंसारी, भरत यादव, अनस मंसूरी, आबाद खान, रेखा कश्यप और परिवारजन। आप हैं शकील अहमद, वारिस अली खान, जावेद अली, अलशिफा खान, हमजा खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, आदर्श नगर, बठिंडा से। और ये खत हमारे पास आया विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज, दातागंज, बक्सेना, बदायूं से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक और इनके परिवार के सभी लोग। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी और नदीम इदरीसी। तो आइए सुनते हैं फिल्म पेंटर बाबू का ये गीत, महेंद्र कपूर वसा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: रमदान तक की विनोबा यात्रा, वार्ताकार हैं डॉक्टर राम बहादुर मिश्र।
2: भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनायक नैहर भावे अर्थात विनोबा भावे भारतीय समाज में एक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सर्वोदय और आध्यात्मिक जगत में भी उनका अत्यंत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा है, लेकिन विनोबा जी की विशेष पहचान भूदान उन्हें लिविंग लीजेंड बना देती है। भूदान से ग्रामदान तक की विनोबा भावे की यात्रा एक आंदोलन के रूप में भारतीय इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। विनोबा जी ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों और भूस्वामियों से अपनी भूमि का छठवां हिस्सा स्वेच्छा से भूमदान गरीबों को करने की अपील की। इसके तहत लाखों एकड़ जमीन एकत्रित कर गरीब और भूमिहीन किसानों को बांटी गई। भूदान के बाद उन्होंने पूरे गांव की भूमि को सामूहिक स्वामित्व में लाने के लिए ग्रामदान आंदोलन चलाया। 1950 के दशक में आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में नई चेतना जगाई। उनका मानना था कि संपत्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए उपयोगी होनी चाहिए। वे आत्मनिर्भरता और ग्राम विकास को देश की मजबूती का आधार मानते थे। अहिंसा उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनका मानना था कि सच्चा परिवर्तन केवल प्रेम और शांति से ही संभव है। इन्हीं विचारों

के आलोक में उनका भूदान आंदोलन सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचा। तेलंगाना से शुरू हुआ भूदान आंदोलन जब उत्तर प्रदेश पहुंचा तो उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। विनोबा जी ने उत्तर प्रदेश से नवंबर 1951 से सितंबर 1952 तक लगभग 10 महीने की ऐतिहासिक पदयात्रा की थी। तेलंगाना से यात्रा प्रारंभ करके विनोबा जी वर्धा पौना आश्रम होते हुए दिल्ली के लिए पैदल निकले। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने योजना आयोग से चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया और विमान भेजने की पेशकश की, लेकिन विनोबा जी ने कहा मैं आऊँगा लेकिन अपने समय पर और पैदल ही। दिल्ली से लौटने के बाद नवंबर 1951 में उत्तर प्रदेश ने औपचारिक रूप से भूदान यात्रा प्रारंभ की। उनका प्रवेश बुंदेलखंड के रास्ते हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित मंगरोठ उनकी पद यात्रा का क्रांतिकारी पड़ाव रहा। यहाँ के ग्रामीणों ने विनोबा जी के विचारों से प्रेरित होकर अलग अलग भूमि का टुकड़ा देने के बजाय पूरा का पूरा गांव ही दान कर दिया। ये भारत के इतिहास का पहला ग्राम दान गाँव बना, जहाँ भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व खत्म करके उसे पूरे समुदाय की साझा संपत्ति घोषित कर दिया गया। बुंदेलखंड के बाद विनोबा जी ने अवध क्षेत्र और गंगा जमुना के मैदानी भाग को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया। इस आंदोलन में मुख्य रूप से झांसी, कानपुर, लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि जनपद शामिल थे। इन क्षेत्रों में पदयात्रा करते हुए उन्होंने छोटे किसानों के हक में भूमि सुधार की नैतिक अपील की। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और काशी मार्ग अवध को पार करने के बाद उनकी पदयात्रा का अंतिम चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद के संगम पर हुआ। संगम के पास उन्होंने बुद्धिजीवियों और युवाओं को भूदान आंदोलन से जोड़ने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 महीनों की निरंतर पदयात्रा करने और लाखों एकड़ भूमिदान में प्राप्त करने के बाद सितंबर 1952 में विनोबा जी बिहार राज्य में पहुंचे। बिहार में उनकी यह यात्रा अगले 2 वर्षों अर्थात 1954 तक जारी रही। इस भूदान यात्रा में विनोबा जी ने पारस्परिक संवाद लोक भाषाओं में किया। यद्यपि वे एक असाधारण भाषाविद थे जिन्हें मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं पर पूरा अधिकार था, किंतु लोक भाषाओं के प्रति उनकी गहरी समझ थी। विशेष रूप से बुंदेली और अवधी लोक भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। रामचरितमानस की असंख्य चौपाइयाँ उन्हें कंठस्थ थी और अपनी सभाओं में जनमानस को इन्हीं चौपाइयों के माध्यम से जागरूक करते थे। अपनी प्रातः और सांध्यकालीन प्रार्थनाओं में रामधुन के साथ तुलसी की चौपाइयों को उद्धृत करते थे। प्रायः वे इन चौपाइयों का विशेष प्रयोग करते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जगपानी। विनोबा जी को अवध में विनोबा बाबा के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में विनोबा जी स्वयं कहते थे उन्हें बाबा नाम महाराष्ट्र नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र और तुलसी जी के साहित्य से मिलता। अवध की परंपरा में संतों और पूजनीय व्यक्तियों को बाबा कहने का चलन है, जैसे तुलसी बाबा। विनोबा जी लोक भाषा की ताकत को बखूबी समझते थे और लोक भाषा के पक्ष में तुलसी के रामचरित मानस को प्रस्तुत करते थे। विनोबा जी का मानना था कि ग्रामीण जनता से सीधे दिल का रिश्ता जोड़ने के लिए लोक भाषा ही सबसे सशक्त माध्यम। वे प्रायः बातचीत और भाषा में अवधि के मुहावरों, कहावतों और तुलसी की चौपाइयों का संदर्भ देते थे। वे मानते थे कि लोक कल्याण के लिए लोक भाषा सशक्त माध्यम है। विनोबा जी सभी भारतीय लोक भाषाओं और बोलियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मानते थे। उनका सुझाव था अवधी, ब्रजी, हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने के लिए देवनागरी को एक अतिरिक्त साध्य लोक नागरी के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि भाषाई दूरियां मिट सकें। विनोबा जी की विशेष पहचान भूदान आंदोलन से है, किंतु उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के दूसरे पक्ष भी कम मूल्यवान नहीं। महात्मा गांधी ने 1940 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा जी को पहला सत्याग्रही चुना। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सर्वोदय विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने भगवद गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया, साथ ही गीता, प्रवचन, स्वराज्य और तीसरी शक्ति जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। उन्हें समाज सेवा और भूदान आंदोलन के लिए वर्ष 1958 में प्रतिष्ठित रैमन

0: मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया और 1983 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वस्तुतः महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। हमें अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का पालन करना चाहिए, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, अपने समय और आसपास की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। हम संसाधन न दे पाएं तो समय, श्रम और ज्ञान से समाज की सेवा कर सकते हैं। मीरा भाईंदर जैसे शहरों में अगर हर नागरिक आचार्य विनोबा भावे जी की शिक्षाओं को अपनाए तो समाज में सहयोग, भाईचारा और विकास की नई मिसाइल काम हो सकती है। विनोबा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि बड़े परिवर्तन के लिए बड़े पद या शक्ति की नहीं अपितु सच्ची निष्ठा, त्याग और सेवा भावना की आवश्यकता होती है।
1: भूदान से ग्रामदान तक की विनोबा यात्रा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की ये वार्ता और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
1: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:10 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नितिन मुकेश की कबीर वाणी।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश से कबीर वाणी, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सोना महापात्रा की आवाज को आप सुन रहे हैं फिल्म फुकरे में। गले

सोना महापात्रा के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में

0: कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रिकमेंडेड,
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42

0: इस पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
2: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
3: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
4: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1 करोड़ 2 लाख स्वीडिश क्रोनर

0: यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग न्यायपालिका और अन्य 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

लता मंगेशकर की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गाना आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत आर डी बर्मन का था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुन।

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

0: बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।
1: खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही

उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं। और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राशि की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

0: अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।
1: मोहे लगे रे

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अभिनेता कहना उनके हुनर को छोटा कर देना है। कुछ चेहरे पर्दे पर आते हैं और किरदार बन जाते हैं, कुछ आवाजें कानों तक पहुंचती हैं और सीधे दिल में उतर जाती हैं, और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आंखें संवाद से पहले बहुत कुछ कह देती हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे ही बेमिसाल फनकार को, नाना पाटेकर को। साथियों, नाना पाटेकर एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई, जिनके संवादों में गुस्सा भी था, दर्द भी, व्यंग्य भी था और समाज के प्रति सवाल भी। तो आइए आज के अगले आधे घंटे तक सुनते हैं नाना पाटेकर की जिंदगी और इनके फिल्मी सफर से जुड़े कुछ किस्से और साथ ही साथ उन्हीं की फिल्मों के कुछ यादगार गीत भी।

0: साथियों, नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड़ जंजीरा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम है विश्वनाथ पाटेकर। साधारण परिवार से निकलकर अभिनय की दुनिया तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। यही वजह है कि बाद में जब उन्होंने पर्दे पर संघर्षरत, कुशल, टूटे हुए और व्यवस्था से लड़ते इंसान का किरदार निभाया, तो वो अनुभव अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं लगा, बल्कि जिंदगी का अनुभव महसूस हुआ।
1: जरा हमरी भी तो सुनो।

साथियों नाना पाटेकर ने थिएटर से अभिनय की बारीकियां सीखी। इसके बाद फिल्मों में उनका सफर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में उन्हें ऐसे किरदार मिले जिसमें उनकी प्रतिभा को पहचानने का मौका मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें उन भूमिकाओं से मिली जिनमें उन्होंने आम आदमी के गुस्से, बेबसी और संघर्ष को अपनी आवाज दी। उनकी अदाकारी की सबसे खासियत रही संवाद बोलने का अंदाज। वे संवाद बोलते नहीं थे बल्कि उसे जीते थे।

साथियों, अगर नाना पाटेकर के करियर की सबसे प्रभावशाली फिल्मों की बात हो तो क्रांतिवीर फिल्म का नाम जरूर आएगा। इस फिल्म में उनके किरदार सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, वो व्यवस्था से लड़ते आम आदमी की आवाज बन गया था। और इसी बीच आई फिल्म परिंदा ने भी नाना पाटेकर के करियर को एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया। उनकी दमदार अदाकारी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। और यहीं से हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर एक ऐसे अभिनेता के रूप में स्थापित हुए जिनसे दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं, अभिनय की उम्मीद करने लगे।

साथियों, नाना पाटेकर के अभिनय के दो बेहद ही संवेदनशील पहलू हुआ करते थे। कभी कभी वो बिना ज्यादा संवाद के भी दर्शकों के दिलों को छू लेते थे, और कभी ऊंची आवाज में बोलकर और कभी खामोश रहकर भी दर्शकों को बहुत कुछ कह जाते थे। और फिर उनके फिल्मी करियर में आया एक ऐसा दौर जब नाना पाटेकर ने दर्शकों को अपने हास्य अभिनय से भी खूब हंसाया। फिल्म वेलकम में उनका किरदार उदय शेट्टी आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उदय भाई का अंदाज, उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनका कॉमिक टाइमिंग सब कुछ यादगार बन गया। ये साबित हुआ एक बार फिर कि नाना

साथियों, नाना पाटेकर को उनके अभिनय के लिए फिल्मी जगत से कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका करियर ये बताता है कि लोकप्रियता और गंभीर अभिनय दोनों एक साथ हासिल किए जा सकते हैं।

साथियों, नाना पाटेकर की पहचान सिर्फ एक अभिनेता की ही नहीं थी, वे सामाजिक कार्यों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी जाने जाते थे। उनका व्यक्तित्व हमेशा ग्लैमर से अलग रहा। शायद यही कारण है कि दर्शकों को उनमें पर्दे का सितारा कम और एक जमीन से जुड़ा इंसान ज़्यादा दिखाई देता था।

और साथियों आज यानी 8 अक्टूबर 2026 को वो हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ कलाकार फिल्म खत्म होने के साथ पर्दे से उतर जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार अपने किरदारों के साथ हमेशा हमारे दिलों में रह जाते हैं और नाना पाटेकर भी उन्हीं फनकारों में से एक हैं।

साथियों, फिल्में खत्म हो जाती हैं, गीत खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्ची अदाकारी की याद कभी खत्म नहीं होती। और आज पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से नाना पाटेकर को विनम्र श्रद्धांजलि। मैं हूं आपकी मेजबान मीनू, आपके साथ इजाजत चाहती हूं कार्यक्रम समाप्ति की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत का। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रवीण कश्यप का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रवीण कश्यप का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। और इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा।

0: आपकी मदद किससे मांगूं?
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखा।